प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।

0: पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वन्निनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। प्रातः काल के इस पुण्य वेला में, सावन प्रभात के इस विशेष कार्यक्रम में, मॉरिस ऑफ सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन के तत्वावधान में आचार्य सकलानी का सादर अभिवादन। हम भगवान शिव की उपासना कर रहे हैं। श्रावण मास और अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया है। भगवान विश्वनाथ जिन्होंने कहा कि जया वृत महाविश्व जया नावृत के नचित जयोत्तर समस्तस्य जयांत्यंत निरुत्तरम। अपने विराट विश्व को जिन्होंने व्याप्त कर रखा है, किंतु आप किसी से भी व्याप्त नहीं हैं। आपकी जय हो हे शंभो, जय हो। आप सबसे उत्कृष्ट हैं, किंतु आपसे कोई श्रेष्ठ नहीं है। आपकी जय हो, जय हो। जयाद्भुत जया क्षुद्र जया क्षत जया व्यय जयामेव जया माय जया भव जया मल। आप अद्भुत हैं, आपकी जय हो। आप अक्षुद्र मतलब महान हैं, आपकी जय हो। आप निर्विकार हैं, आपकी जय हो। आप अविनाशी हैं, आपकी जय हो। अप्रमेय परमात्मन, आपकी जय हो। माया रहित महेश्वर, आपकी जय हो। अजन्मा शिव, आपकी जय हो। निर्मल शंकर, आपकी जय हो। महाभुज महासार महागुण महाकथ महाबल महामाय महारस महारथ। महाबाहो महास सार महागुण महती कीर्ति कथा से युक्त महाबली महामायावी महारसिक तथा महारथ, आपकी जय हो। नमः परम देवाय नमः परम हेतवे नमः शिवाय शांताय नमः शिवतराय ते। आप परम आराध्य को नमस्कार है, आप परम कारण को नमस्कार है, शांत शिव को नमस्कार है, और आप परम कल्याणमय प्रभु को नमस्कार है। त्वदधीनमिदं कृत्स्नं जगद्धि ससुरासुरं अतस्ताद्विहितामाज्ञां क्षमते कोतिवर्तितुं। देवताओं और असुरों सहित यह संपूर्ण जगत आपके अधीन है, अतः आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने में कौन समर्थ हो सकता है। अयम पुनर्जनो नित्य भवदेक समाश्रय भवानतोनुग्रयास्मै प्रार्थितं संप्रयच्छतु। हे सनातन देव, ये सेवक एकमात्र आपके ही आश्रित है, अतः आप इस पर अनुग्रह करके इसे इसकी और प्रार्थित वस्तु प्रदान करें। जयाम्बिके जगन्मातर जय सर्व जगन्मयी जयानविध कैश्वर्ये जयानुपम विग्रहे। अम्बिके जगन्माता, आपकी जय हो। सर्व जगन्मयी, आपकी जय हो। असीम ऐश्वर्यशालिनी, आपकी जय हो। ओम शांति शांति शांति।
1: श्रावण मास के संदर्भ में

नमस्कार। श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से इस श्रावण प्रभात कार्यक्रम में आचार्य सुरेश सुपाल मिश्र का अभिवादन। प्राणी मात्र की कल्याण कामना। सर्वत्र सुखिनः संतु सर्वे संतु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माम काश्चित् दुखवाग् भवेत्। इस विश्व में सब सुखी हो, सब निरोगी हो, सब कल्याण मंगल का दर्शन करें, कोई भी क्लेश मात्र दुख का भागी न हो। सर्वस्तन्तुरः दुर्गाणि सर्वेणि भद्राणि पश्यन्तु सर्वसद्बुद्धिमाप्नोति सर्वत्र सर्वत्र नन्दतु। कठिनाइयों से, विपत्तियों से सब त्राणि पाए, सब मंगलों का दर्शन करें, सब सद्बुद्धि को प्राप्त हों और सब सर्वदा सर्वत्र आनंद भाल करें। दुर्जनः व्यंजनो भूयात् संजन शांति माप्नुयात् शांतो मुंचे बंधुस्यो मुक्त चांत्यात विमोचयेत्। दुष्ट लोग जन जो जाए सजन शांति प्राप्त करे, शांत जन बंधन से मुक्त हो जाए और मुक्त जन दूसरों को बंधन से मुक्त करें।

0: सर्वेभ्यो सुभस्तभ्यो नित्यलोकां समस्ता सुखिन भवन्तु। प्रजा जनों का कल्याण हो, राजा लोग न्याय युक्त मार्ग से पृथ्वी पर शासन करें, गौओं एवं ब्राह्मणों का सर्वदा मंगल हो, संपूर्ण लोक सुखी हुए। इस प्रकार से ऐसे मनुष्य अपने कामना करें कि सबका कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिना, सबका सुख हो। ओम शांते शांते इति शुभम।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।
1: हरि ओम तत्सत् वर्णानाम अर्थ संघाणाम रसानाम छंदसामपि मंगला

गुरुचरणकमलेभ्यो नमः भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमः। ओम नमो भगवते सियाराम कृष्ण हरि नारायण। माँ सती के अपराध का वर्णन ना करते हुए भगवान ने केवल अपने संकल्प को अपने मन में रख दिया। तुलसीदास जी आगे बढ़ाते हुए कहते हैं,

शिव जी का रुख देखकर सती माता ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय यानी भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जलने लगा।

आशा। वृष केतु भगवान शिव ने सती को चिंता युक्त देखकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश पहुंचे।

0: फिर वहां शिव जी अपना प्रतिज्ञा को याद करके बरे के पैर के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बसही कैलाश तब अधिक सोचु मन माही, मरमु न को जान कछु जुग सम दिवस सराई। तब सती जी ने कैलाश पर रहने लगे, उनके मन में बड़ा दुख हुआ था, इस रहस्य को कोई भी नहीं जानता था, उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। आपकी ध्यान के लिए बहुत धन्यवाद। सत्यम शिवम सुंदरम, ओम शांति ही शांति ही शांति, ओम श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु, साधुवाद, जय श्री हरि।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
1: ओम कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेषतम समा एवं त्वयि नान्यतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। आदरणीय श्रोताओं नमस्ते। आर्यसभा मॉरिशस के पंडित जीवन महादेव की ओर से इस विशेष कार्यक्रम के अवसर पर आप सबों का हार्दिक स्वागत है। मनुष्य के शरीर को वेदों का क्षेत्र कहा गया है। एक जगह लिखा है, स्वे क्षेत्रे अनमीवा विराज, अर्थात अपने शरीर को निरोग रखे। शरीर के को क्षेत्र कहने

विशेष प्रयोजन है। ख्रीष्ट में कृषि कर्म होता रहता है, बोना काटना आदि चलते रहना चाहिए। इसी से इसको कुरुक्षेत्र भी कहते हैं। इस दृष्टि से वेद में संदेश है, कुर्वन् नैवेह कर्माणि, कर्म करते हुए ही कर्म की तीन गतियाँ हो सकती हैं, कर्म, विकर्म तथा अकर्म, न करने को अकर्म तथा उल्टे कर्म करने को विकर्म कहते हैं। शेष कर्म का अर्थ सत्कर्म या सुकर्म ही हुआ। कर्म अकर्म की विवेचना करना बहुत गहरा है। गीता में कहा गया कि कर्म किम कर्म मेति वाक्यो अपि मोहित, अर्थात कर्म क्या है अकर्म क्या है इस विषय में कवि लोग विद्वान लोग विमुग्ध हैं। इस मंत्र से पूर्व वाले मंत्र में कहा गया मा गृह कस्य स्विद्धनम्, अतः किसी के धन का लालच मत कर। पराये धन का लालच करना समस्त बुरे कर्मों का उपलक्षण है, अर्थात बुरे कर्म मत कर, इससे विकर्म का निषेध हो जाता है। समस्त कर्म और अकर्म के विवाद में कुर्वन् नैवेह कर्माणि जिजि विशेषतम से अकर्म का निषेध कर दिया गया है। शेष कर्म सुकर्म रह गए, इससे अर्थ हुआ मनुष्य इस संसार में संपूर्ण आयु सत्कर्म करता हुआ ही जीने की इच्छा करें। कहीं पर किसी ने कहा है लोकोयम कर्म बंधन, अर्थात यह संसार कर्मों का बंधन है, अर्थात कर्म बंधन के कारण है। इसका खंडन वेद करता हुआ कहता है एवं त्वयि नान्यते दोषि न कर्म लिप्यते नरे, ऐसा करने पर कर्म तुझे बांधेगा नहीं और कोई उपाय नहीं। जब कामना छोड़कर केवल कर्तव्य बुद्धि से भगवान की आज्ञा समझकर कर्म किए जाते हैं तब से कर्म बंधन के कारण नहीं बनते। इच्छा वासना के कारण कर्म बंधन के कारण नहीं बनते। ध्यान कीजिए। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।

पुनरेहि विद्वानुदयनं पथ आरोहणम् आक्रमणम् जीवतो जीवतो अयनम्। ओम शम। गहलोत राजपूत महासभा की ओर से प्रस्तुत मैं पंडिता आकाशवंती पियती इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वेद मास की शुभकामना है आप सभी को। यहाँ पर उक्त मंत्र में कहा गया है कि हे मानव, मार्ग से चढ़ाव को जानता हुआ और प्रोत्साहित किया हुआ तू फिर इस पथ पर आरोहण कर, तू आगे बढ़, क्योंकि उन्नति करना, आगे बढ़ना प्रत्येक जीव का, प्रत्येक मनुष्य का मार्ग है, प्रत्येक जीव मनुष्य का उद्देश्य और लक्ष्य है। श्रोतागण, इस मंत्र में शब्दार्थ ये होता है कि मंत्र में हारे, थके और निरुत्साही व्यक्ति के लिए एक दिव्य संदेश भी है। वो पहला संदेश इस मंत्र में है कि हे मानव, यदि तू प्रयत्न करके थक गया है तो क्या हुआ, तू हतोत्साह मत हो, उत्साह के घट रीते मत होने दे, आशा को अपने जीवन का संबल बनाकर फिर इस मार्ग पर आरोहण कर। दूसरा निर्देश यह है कि मार्ग की चढ़ाई को देखकर घबरा मत, सदा स्मरण रख कि तेरे लिए चढ़ाई का मार्ग ही नियत है, आशा और उत्साह से इस मार्ग पर आगे ही आगे बढ़ता जा, आगे बढ़ना उन्नति करना ही जीवन मार्ग है, पीछे हटना अवनति करना मृत्यु मार्ग है, पथ कठिन है तो क्या हुआ, परीक्षा तो कठिनाई में ही होती है। श्रोतागण, तीसरा निर्देश यह इस मंत्र में है कि निराश और हताश होने की आवश्यकता नहीं है, आगे बढ़ उन्नति कर, क्योंकि आगे बढ़ना और उन्नति करना प्रत्येक जीव का अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति की उन्नति अवश्य होगी, हाँ इसके लिए बल लगाने की, पुरुषार्थ करने की तथा निराशा और दुर्बलता को मार भगाने की आवश्यकता है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित्।

0: इद्धर्यो सचा सम्मिश्ल आवचो युजा इंद्रो वज्री हिरण्ययः।
1: जैसे वायु के आने जाने से वायु में विलक्षण गति उत्पन्न होती है और उस गति से संसार के पदार्थों में चलने फिरने और ठहरने की शक्ति आती है, जैसे उसी वायु के कारण जीभ में बोलने का सामर्थ्य उत्पन्न होता है, ठीक वैसे ही वज्र के समान तेजोमय न्यायकारी प्रतापी और दंड देने वाले राजा के न्याय से सब लोगों में शुभ गुणों का मेल होता है। परमात्मा एवं राजा के उत्तम न्याय से समाज से दोषों और बुराइयों का नाश होता है तथा मनुष्यों की वाणी में सत्यता का वास होता है। राजाओं का राजा परमात्मा सब पर ऐश्वर्य की वर्षा करता है।
0: ओम सहधानो योग आभुवत्सराय सपुरंध्याम गमत्वाजे भिरासनः।
1: मनुष्य सदैव परमात्मा पर अपनी आस्था व्यक्त करते हुए उसकी उपासना में तत्पर रहे। ईश्वर की भक्ति में सबका मार्ग प्रशस्त होता है। साथ ही अनुभवी पूर्ण ज्ञानी और पुरुषार्थी विद्वानों की संगति करनी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की बुद्धि और कार्य करने की कुशलता उत्तम बनती है। बुद्धि श्रेष्ठ होने से जीवन में अन्न बल धन ऐश्वर्य और आत्मिक उन्नति की वृद्धि होती है। धर्मात्मा विद्वान एवं पुरुषार्थी मनुष्यों के संघ से ग्राम नगर और राष्ट्र की उन्नति होती है।
0: ओम पृथ्वी शांतिरंतरिक्षम शांतिर्द्योः शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिः विश्वे मे देवाः शांति सर्वे मे देवाः शांति शांति शांतिभिः ताभिः शांतिभिः सर्वशांतिभिः शमयामोहम् यदिह घोरम यदिह क्रूरम यदिह पापम तच्छांतम तच्छितम सर्वमेव शमस्तु नः।
1: भूमि और अंतरिक्ष शांतिदायक हो, प्रकाशमान सूर्यादि लोक और जल सभी के लिए शांतिदायक और सुखकारी हो, सभी औषधियां अन्न सोमलता आदि और वनस्पति वट पीपल आदि वृक्ष शांति प्रदान करने वाले हो, विश्व के सभी देव सभी विद्वान और दिव्य शक्तियां सबके लिए कल्याणकारी हो, नकारात्मक पाप युक्त एवं क्रूरता का व्यवहार शांत हो, सभी सुख देने वाले कार्यों और साधनों के द्वारा सर्वत्र पूर्ण शांति स्थापित हो, धैर्य देने वाली शांति मन में स्थिर रहे, निर्दयता और पाप की भावना शांत हो। मनुष्यों को हमेशा ऐसा प्रयास करना चाहिए कि जिससे धरती और प्रकृति के सभी पदार्थ सबके लिए शांतिदायक हो।

0: आशिता आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पूनम, श्रोताओं को भी नमस्कार। आज शुक्रवार 21 अगस्त 2026 के पहले प्रातकालीन फ्लैश न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले स्थानीय खबरें। मॉरिशस ने पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति सुरक्षित करने के लिए भारत सरकार के साथ एक समझौता तय किया है। पोर्ट लुइस में कल हस्ताक्षरित ये सरकारी समझौता देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दीर्घकालिक सहयोग का ढांचा भी तैयार करता है। मॉरिशस और भारत के बीच कल हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के तहत पेट्रोलियम की कीमतों को लेकर भी बातचीत की गुंजाइश रखी गई है। व्यापार मंत्री माइकल सिक्वेन के अनुसार भू राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव होने पर दोनों पक्ष फिर से बातचीत कर सकती हैं, जबकि हर साल समझौते की शर्तों पर पुनर्विचार का भी अवसर रहेगा। और सऊदी अरब की दमम जेल में बंद मॉरिशस के नागरिक अनिशन एलन से मॉरिशस के राजदूत ने मुलाकात की। ड्रग मामले में हिरासत में लिए गए एलन की कानूनी स्थिति और जेल में उनकी परिस्थितियों की जानकारी ली गई, जबकि उनके वकील गामा वालाइडन ने उनकी बेगुनाही पर भरोसा जताया है। एबन में तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक नई प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक और इलेक्ट्रॉनिक्स से लैस इस प्रयोगशाला का उद्देश्य मॉरिशस के युवाओं को अपने विचारों को व्यावहारिक रूप देने और नए प्रोजेक्ट विकसित करने का अवसर देना है। मॉरिशस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ने रेजवी में मॉरिशस कल्चर ट्रिप .mu नामक एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य पर्यटकों के साथ साथ विद्यार्थियों और शिक्षकों को मॉरिशस के इतिहास, संस्कृति और विरासत को बेहतर ढंग से समझने का अवसर देना है। और रेजवी में आयोजित एक फील्ड डे के दौरान फागे ने आयन और जिंक से भरपूर जैव सुदृढ़ बीन्स की किस्म फेरीना को फिर से किसानों के सामने पेश किया। अब मुख्य चुनौती इस किस्म को अधिक संख्या में किसानों द्वारा अपनाने और बड़े पैमाने पर उत्पादन तक पहुंचाने की है, ताकि स्थानीय उत्पाद खाद्य उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस के ताज़ा मिसाइल हमलों में यूक्रेन की राजधानी कीव में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई इमारतों और अन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि जब तक देश के पास पर्याप्त एंटी बैलिस्टिक रक्षा प्रणाली नहीं होगी, तब तक रूस गंभीरता से शांति के बारे में नहीं सोचेगा। तो इसके साथ ये संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। बढ़ते हैं अब हम मौसम की हाल की ओर। मौसम का हाल, आम हालत। पूर्व से आने वाले कुछ बादल हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित करेंगे अगले 24 घंटों के लिए अनुमान है। सुबह के समय विशेषकर पूर्वी और सेंट्रल प्लेटो वाले इलाकों पर बादल घिराएंगे और थोड़ी वर्षा होगी। आंशिक तौर पर दोपहर बाद में विशेषकर पश्चिमी इलाकों में बादल घिराएंगे और रहकर बारिश होगी। शाम के समय आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी और प्रवाहरेखा के पास समुद्र सामान्य रहेगा तथा दक्षिण पश्चिम की ओर से 2 मीटर के जुआर उठेंगे। तापमान, अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा यानी सेंट्रल प्लेटो पर 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर अधिकतम तापमान 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्योदय सुबह 6:28 पर और सूर्यास्त शाम 5:58 पर।

यौमे जुम्मा मुबारक हो। इस वक्त हम ORM Free रेडियो से आपसे मुखातिब हैं और पेशे खिदमत है उर्दू प्रोग्राम सबाल खैर। निसार अख्तर आप तमाम लोगों का दिले बेकरां से इस्तकबाल करता है। सामईन, माहे रबीउल अव्वल अपनी तमाम तर रहमतों बरकतों के साथ हमारे दरमियान जलवागर है, वो माहे मुकद्दस जिस पर ज़माना नाज करता है, क्योंकि इसी महीने ने रहमत अलआलमीन ख़ातमुन्नबीन शाफ़िए महशर साकिए कौसर मोहसिन इंसानियत चरागे हिदायत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद मुबारक का शर्फ पाया। दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमारे दिलों को इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गहवारा बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन। आइए इस बज़्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाकायदा आगाज कुरान मजीद की तिलावत से करके अपने कुलूब इज़हान को मुनव्वर मुजल्ला फरमाते हैं।

किताबुल जनाइज़ में बाब मा जा फिस्सला अलल कब्र में ये हदीस पाक है। एक औरत थी जो हमेशा मस्जिद नबवी में झाड़ू दिया करती, उसका इंतकाल हो गया तो साहबे किराम ने उसको दफन किया और आपको न बताया। आपको मालूम हुआ तो फरमाया कि मुझे क्यों खबर न की। बोले हुजूर रोज़े से थे और कैलूला फरमा रहे थे, हमने तकलीफ़ देना गवारा न किया। इसी तरह एक और साहबी का इंतकाल हो गया तो साहबे किराम ने आप को खबर न की और कहा कि अंधेरी रात थी, हुजूर को जहमत होती, तकलीफ़ होती, आपको जो चीज़ महबूब होती तो चीज़ अच्छी लगती, तो आपकी मोहब्बत की वजह से सहाबा को भी वो चीज़ महबूब होती, वो उनको भी अच्छी लगती, वो उसको पसंद करते। कद्दू आपको बहुत ज़्यादा मरगूब था, पसंद था, इसलिए हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु कद्दू को बहुत ज़्यादा पसंद फरमाते। सो एक रोज़ कद्दू खा रहे थे तो ख़ुद ब खुद बोल उठे, ए दरख्त, इस बिना पर कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझसे मोहब्बत थी, तू मुझे किस कदर महबूब है। ये जामे तिर्मिज़ी किताबुल अतअमा में ये रिवायत है। आपकी मोहब्बत ने सहाबे किराम के नज़दीक आपकी हर चीज़ महबूब को महबूब बना दिया। आपका मामूल था कि हर काम की इब्तिदा दाहिने जानिब से फरमाते। एक बार हज़रत मैमूना के घर में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास आपके दाएं और हज़रत खालिद बिन वलीद बाएं बैठे थे। हज़रत मैमूना ने दूध लाई तो आपने पीकर अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया कि हक़ तो तुम्हारा है, लेकिन अगर तुम ईसार करो तो खालिद को दे सकते हो। बोले, मैं आपका पिया हुआ दूध किसी को नहीं दे सकता। ये तिर्मिज़ी शरीफ अबवाबुद दावात बाब मा यकूलु इज़ा अकल तुआमन में है। एक मर्तबा आपने पानी या दूध पीकर हज़रत उम्मे हानी को अता फरमाया। बोली, अगरचे मैं रोज़े से हूँ लेकिन आपका बचाया हुआ वापस करना पसंद नहीं करती। मुसनद इमाम अहमद बिन हम्बल में ये रिवायत है। एक बार एक सहाबी खिदमत मुबारक में हाज़िर हुए, आप खाना खा रहे थे, उनको भी शरीक करना चाहा, वो रोज़े से थे, इसलिए उनको अफसोस हुआ कि हाय, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना उन्होंने रोज़े की वजह से न खाया। ये सुनन इब्ने माजा किताबुल अतअमा बाब अर्ज़ तुआम में है। मोहब्बत की वजह से आपको रंज होता, परेशान होते तो तमाम सहाबा को रंज होता, वो परेशान हो जाते। आपको खुशी होती तो तमाम सहाबा इसमें शरीक होते।

0: आपने एक महीना के लिए अज़वाज मुतहरात से आलैदगी इख्तियार की, तो तमाम सहाबा ने मस्जिद में आकर गिरिया और जारी शुरू की, रोना शुरू किया। ये मुस्लिम शरीफ किताब रज़ा बाब फिल इला व एतज़ाल निसा में है। जिस मरज़ में आपका विसाल हुआ, आपने सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को इमाम बनाना चाहा, तो सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ की कि वो रकीकुल कल्ब आदमी हैं, नरम दिल हैं, जब वो आपको न देखेंगे तो ख़ुद रोएंगे और तमाम सहाबा भी। ये सुनन इब्ने माजा किताब सलाह में है, बाब मा जा फी सलात रसूलिल्लाह फी मरज़िही। हज़रत अमर रदी अल्लाह, अमर बिन जमूह रदी अल्लाह अन्हु एक फ़याज़ सहाबी थे, उनको आपसे इस क़दर मोहब्बत थी कि जब आप निकाह करते तो वो आपकी जानिब से दावत वलीमा करते। आप जब किसी गज़वा में तशरीफ़ ले जाते तो सहाबियात इंतहा मोहब्बत से आपकी वापसी और सलामती के लिए नज़रें मानती थी। एक बार आप किसी गज़वा से वापस तशरीफ़ लाए तो एक सहाबिया जारिये सौदा ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नज़र मानी थी अगर आप खुदा आपको सही व सालिम वापस लाएगा तो मैं आपके सामने दफ़ बजा बजा के गाऊंगी। अलगर्ज सहाबा के मोहब्बत के मुख्तलिफ अंदाज थे। आपके विसाल के बाद सहाबा को जब आपकी याद आती तो आंखों से आंसू निकल पड़ते। एक बार सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु के सामने चपातियाँ आईं, रोटियाँ, तो देखकर रो पड़े कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों से कभी ये चपाती न देखी थी। वो तंगदस्ती का ज़माना, वो फ़क्रे इख्तियारी का ज़माना सहाबा को जब याद आता तो खूब हुजूर की याद में रोया करते। अल्लाह पाक उनकी मोहब्बत का सदका हमें भी अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल-बलाग।
1: एमबीसी रेडियो 24 आवर्स अ डे। RM3 रेडियो।
2: सामईन अज़ीज़ वक़ार, निसार अख्तर की जानिब से एक बार फिर खुश आमदीद इस उर्दू महफिल सबा अल खैर में, जहां हम रबीउल अव्वल के चमकते महीने को इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चिरागों से रोशन कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी आप जामा मस्जिद पोटलवी के ख़तीब आला मुफ्ती मोहम्मद इसहाक कादरी रज़वी दामद बरकात उमालिया की ज़बानी एक बयान समात फरमा रहे थे। दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें मुफ्ती साहब की बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सामईन, आइए इश्क की मिठास लिए हुए ये खूबसूरत कलाम पेश कर रहे हैं, मुलायजा फरमाइए।

मुअज़्ज़ज़ सामईन, सैयदुल अंबिया हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात सरापा खैर व बरकत हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निगाह करम से बिगरी सवर जाती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े दुआएं कबूल होती हैं और आपके नाम नामी से घरों में सुकून उतरता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आकाए दो जहां दिलबरे जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतें सिर्फ उनके ज़माने तक महदूद न थीं, बल्कि आज भी हर आशिक उनके नाम से फैज़याब हो रहा है। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल ये सिलसिला ता क़यामत जारी रहेगा। इसीलिए आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, खाक हो जाएं अदू जल कर मगर हम तो रज़ा, खाक हो जाएं अदू जल कर मगर हम तो रज़ा।

सामईन कराम, हमारे आका और मौला जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न जमाल ऐसा बेमिसाल था कि हर सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ख्वाहिश होती कि हर वक्त सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर वाले चेहरे की ज़ियारत से मुस्तफीज होते रहें। इसी वजह से सहाबे कराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर के दीदार से अपनी आँखों को ठंडक और दिलों को राहत पहुँचाते। चेहरे अनवर की एक झलक उनके दिलों में हज़ारों मुसर्रतें बिखेर देती हैं।

मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, इसी नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारी आज की बज़्म सबाल खैर अख्तताम पज़ीर होती है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत, कामिल इताअत, हुस्न अखलाक और सुन्नतों पर ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सामईन, इन्हीं दुआया कलिमात के साथ अपने मेज़बान निसार अख्तर को इजाज़त दीजिए। आपसे रुख्सत होने का तो दिल नहीं करता, मगर क्या करें, यही दस्तूर है। पर वादा है कि अगले जुम्मे को फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह निगहबान।

शक्ति। प्रणाम श्रोताओं, भक्ति में शक्ति कार्यक्रम में आप सभी का अभिवादन है। कहा जाता है कि भक्ति में बहुत शक्ति है, इसीलिए हमारे सभी कुकर्म भी मिट जाते हैं भक्ति के मार्ग में। आइए भक्ति आस्था के साथ इस कार्यक्रम का आरंभ करते हैं गणेश वंदना से।

श्रोताओं, कहा जाता है कि जब मनुष्य के जीवन में अज्ञान का अंधकार छाने लगे, जब मन विचलित हो जाए और सही मार्ग दिखाई न दे, तब ईश्वर से सबसे बड़ी प्रार्थना होती है हमारे भीतर ज्ञान का प्रकाश जागृत हो। गायत्री मंत्र केवल शब्दों का उच्चारण नहीं, अपितु प्रकाश बुद्धि और सद्बुद्धि का की प्रार्थना है। इस मंत्र में हम सूर्य स्वरूप परम दिव्य शक्ति का ध्यान करते हुए प्रार्थना करते हैं कि हे परम प्रकाशमय प्रभु, हम आपके उस दिव्य तेज का ध्यान करते हैं, हमारी बुद्धि को सत्य ज्ञान और सत्मार्ग की ओर प्रेरित कीजिए। माँ गायत्री हमें क्या सिखाती है? जब परिस्थितियां हमारे अनुसार अनुकूल ना हो, तब धैर्य रखना चाहिए। जब रास्ते कठिन हो, जब मार्ग कठिन हो, तब विश्वास रखें। जब मन भ्रमित हो, तब सद्बुद्धि की प्रार्थना करें। और जब जीवन में सफलता मिले, तब अहंकार नहीं कृतज्ञता रखें। क्योंकि सच्ची भक्ति केवल यह मांगना नहीं कि मेरी इच्छा पूरी हो, सच्ची भक्ति तो यह कहना है कि हे प्रभु, मुझे इतनी बुद्धि दीजिए कि मैं सही और बुरे में अंतर समझ सकूं, इतनी शक्ति दीजिए कि सही मार्ग पर चल सकूं, और इतना विश्वास दीजिए कि कठिन समय में भी आपका हाथ ना छोड़ूं। आइए भक्ति के साथ आप भी हमारे साथ गायत्री मंत्र का जाप कीजिए।

श्रोताओं, जब मन परेशान हो तो हरी कहिए, जब रास्ता समझ ना आए तो हरी कहिए, जब खुशी मिले तो कृतज्ञता से हरी कहिए, और जब जीवन में कठिन समय आए तब भी विश्वास के

साथ हरी कहिए, क्योंकि भक्ति हमें यह सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, ईश्वर स्मरण मनुष्य को भीतर से संभालने की शक्ति अवश्य देता है।

0: भक्ति में शक्ति।
1: जब भी हम परमात्मा का नाम जपते हैं तो मन को अत्यंत प्रसन्नता मिलता है। कहा जाता है कि प्रभु के मंत्रों में, प्रभु के नामों में इतनी शांति है कि मन में बसे सभी विकार मिट ही जाते हैं। और इस पावन माह में, श्रावण माह के इस महीने में, जो भी पूरे तन मन से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है, उनके मन व विचार भी शुद्ध हो जाते हैं। आइए प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय।

श्रोताओं, भगवान शिव को शिव शंकर क्यों हम कहते हैं? शिव का अर्थ है कल्याणकारी, मंगलकारी और शुभ स्वरूप। वही शंकर का अर्थ है जो सबका कल्याण करें, जो सुख और शांति प्रदान करें। भगवान शिव को संसार शिव शंकर इसलिए कहते हैं क्योंकि वे केवल देवों के देव ही नहीं, अपितु करुणा, त्याग, तपस्या और कल्याण के प्रतीक माने जाते हैं। समुद्र मंथन से निकले विष को उन्होंने स्वयं धारण किया और संसार की रक्षा की। इसी कारण उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। शिव हमें सिखाते हैं कि विष परिस्थितियों का हो या जीवन के दुखों का,

उसे धैर्य और संयम से सहना चाहिए और अपने भीतर की शांति को बनाए रखना चाहिए। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। जहाँ शिव का स्मरण है वहाँ मन को शांति है, जहाँ शिव की भक्ति है वहाँ कल्याण की भावना भी है।

शक्ति में शक्ति। परम पिता परमात्मा ही हमारे सच्चे माता पिता हैं। माता पिता के रूप में हमें जो प्रेम ममता और संरक्षण मिलता है वही भी उसी परम शक्ति की ही देन है। जब संसार में कोई हमारा साथ ना दे तब भी परमात्मा हमारे भीतर आशा का दीप जलाए रखते हैं।

श्रोताओं कहते हैं माता रानी शक्ति का स्वरूप है, जिसने भी नाम धरा माता रानी का उनके मन के सभी विकार और दुख मिट ही जाते हैं। प्रेम से बोलिए जय माता दी।

श्रोताओं, इसी के साथ हम भक्ति में शक्ति कार्यक्रम के अंत तक आ पहुंचे हैं। आप सभी पर परमात्मा की कृपा बनी रहे, बस यही हम प्रार्थना करते हैं कि काल हर, हष्ट कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, रोग हर, बस प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।

0: check exactly 12 p.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है अशिता, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। वर्कर्स राइट्स एक्ट और एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस एक्ट में संशोधन का काम जारी है और इन बदलावों को साल के अंत तक पेश किए जाने की उम्मीद है। इस सिलसिले में कल नेशनल ट्राइपार्टाइट काउंसिल की बैठक हुई, जिसमें प्रभावित प्रस्तावित संशोधनों की शुरुआती रूपरेखा पर चर्चा आगे बढ़ाई गई। प्रस्तावित बदलावों में पीआरजीएफ के कामकाज की समीक्षा, स्वतंत्र अनुशासन समितियों की स्थापना और नियोक्ताओं के दबाव से ट्रेड यूनियनों को अधिक सुरक्षा देने जैसे मुद्दे शामिल हैं। हालांकि श्रम मंत्री गिजाउद्दीन ने स्पष्ट किया कि ये प्रक्रिया पिछले साल से ही शुरू हो चुकी थी और इसका आत्मा शांति की भूख हड़ताल से कोई संबंध नहीं है। खाद्य आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार ने एक व्यापक प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इस योजना में बीजों के उत्पादन, स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल नई किस्मों के विकास, उनकी बिक्री और किसानों के बीच जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। इसी पहल के तहत अब पेल बीन्स की एक नई किस्म की खेती और खपत को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ये किस्म फेरिना या नुआ 45 के नाम से जानी जाती है। इसे बेहतर उत्पादन और आयरन की अधिक मात्रा के लिए चुना गया है। सरकार इन बीजों पर 75% सब्सिडी दे रही है। सब्सिडी के बाद बीज एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड में 130 रुपये प्रति किलो की दर से बिक्री के लिए उपलब्ध है। मॉरीशस सब अपने पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। इस सिलसिले में भारत सरकार के साथ एक समझौता किया गया। इस समझौते पर हस्ताक्षर की आधिकारिक समारोह कल दोपहर पोर्ट लुइस में हुई, जिसमें प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम और भारत के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी मौजूद थे। सरकार से सरकार यानी कि B2B के बीच हुए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के बीच हुए इस समझौता ज्ञापन में मॉरीशस की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार करने का भी प्रावधान है। प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम ने कहा कि ये पहल एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण का हिस्सा है और इसका उद्देश्य देश की ऊर्जा जरूरतों को अधिक सुरक्षित बनाना है। वहीं भारत की पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ये समझौता दोनों देशों के बीच मौजूद विश्वास और मजबूत संबंधों को दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रुख करते हैं पाकिस्तान की ओर। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को शुक्रवार आज तड़के इस्लामाबाद के एक अस्पताल में चिकित्सकीय जांच के बाद वापस जेल भेज दिया गया। डॉक्टरों ने उन्हें चिकित्सकीय रूप से फिट घोषित किया है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्ला तरार के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आदेश दिया था कि स्वास्थ्य संबंधी शिकायतों के बाद 48 घंटे के भीतर इमरान खान को अस्पताल ले जाकर डॉक्टरों से उनकी जांच कराई जाए। ये अदालत की ओर से इमरान खान को मिली सबसे महत्वपूर्ण राहतों में से एक थी। उन्हें 2023 में भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल भेजा गया था। हालांकि इमरान खान इन मामलों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बता रहे हैं। अदालत के आदेश में उन्हें अस्पताल ले जाने के अलावा परिवार से मिलने की अनुमति देने की बात भी कही गई थी। कई महीनों से वह अपने परिवार से नहीं मिल पाए थे। मंगलवार

0: रात उनकी बहन आजमा खान ने जेल में उनसे मुलाकात की। सूचना मंत्री तरार के मुताबिक गुरुवार रात से शुक्रवार तड़के तक चली मेडिकल जांच के दौरान आजमा खान सभी चरणों में मौजूद रही। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो। चला आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: ना सफर खाना सफर
1: प्यार कर लेने ते फांसी चढ़ जाएगा। मैंने कहा था ना कुछ गाने ऐसे होते हैं जिसे सुनकर अजीब तो लगता है लेकिन ये गाने जो होते हैं ये गाने सुनकर मज़ा भी आता है। तो चलिए अभी आप सुन रहे थे मुकेश साहब को, खूबसूरत गीतों का सिलसिला जारी रखते हैं आपके अपने रेडियो मनोरंजन पर।
2: RM3 Radio.

ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन जो भी हुआ खूब हुआ। तो चलिए हम भी कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, और अच्छे अच्छे की बात चलती है तो अच्छा तब होता है ना जब हमारे सारे लिसनर्स हमारे साथ होते हैं। सुहाना सफर के हमारे सभी प्यारे प्यारे लिसनर्स का हम वेलकम करते हैं, स्वागत हम करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं और यहाँ पर हमारे साथ हमारे जो गाने हैं उनको गुनगुनाने के लिए आप तैयार हो गए हो। वैसे तो हमारे पास हर तरह के गाने हैं, कुछ ऐसे गाने हैं जिनकी फरमाइश आपने की है, कुछ ऐसे गाने हैं जो हमें बहुत प्यारे हैं। तो अभी हम और आप मिलकर इन सारे गीतों को एक साथ गुनगुनाने वाले हैं और झूमने वाले हैं। तो जहाँ से भी आप साथ दे रहे हैं आपका हम वेलकम करेंगे, और दुनिया के किसी भी कोने में आप हैं वहाँ से भी हम आपका वेलकम करेंगे। वो क्या है ना कि यहाँ पर हम जब प्रोग्राम शुरू करते हैं तो दुनिया भर से लोग हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए एकदम रेडी हो जाते हैं। तो चलिए हम उन्हीं खूबसूरत गीतों के सहारे आगे बढ़ेंगे और अपने इस कार्यक्रम को और भी खूबसूरत बनाने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए हमें चाहिए तो बस आपका साथ, आपका प्यार। तो आपका प्यार हमारे साथ है। चलिए इसी के साथ अभी जो अगला गाना होगा वो लेकर आए हैं हम।

रफी साहब की आवाज में जो कि आपका फेवरेट भी हो सकता है कहते हैं दिल ने प्यार किया है एक बेवफा से और पछता रहे हैं गाना होगा किसके लिए उत्तम के लिए रिया भूदन अनिल राम तीशा सन मिस्टर लव ज्योति चमन साथ में है लुलिता और वी हैव इंदिरा फ्रॉम मौसलमो सैंत औंद्रे और बिंता जी का स्वागत श्वेता आपका भी दिल

0: ना सफर हाँ ना सफर
1: ये वो पुराने गाने हैं जो अपने साथ प्यार ले आते हैं यादें ले आते हैं और ले आते हैं हमारे दोस्त हमारे साथ सफर को सुहाना बनाने के लिए श्वेता थैंक यू सो मच यहाँ पर हमारे साथ जो अगला गाना होगा वो गुनगुनाने के लिए रेडी हो रहे हैं राजा सी शंकर हमारे साथ प्रेमा जी हैं थैंक यू सो मच चलिए नेक्स्ट गाना दिवेश यज्ञ प्रेमा और वरुण के लिए होगा वहीं पे सुचिता कुलुम्मत हमारे साथ हैं थैंक यू सो मच साथ देने के लिए भरिंदर संसवा जो कि हैं जर्मनी से हेलो जी नमस्कार जी कैसे हैं प्रणाम नमस्कार किरण पुरी कैसे हैं कनाडा में अभी तो उनके सोने का टाइम है लेकिन फिर भी अभी जब तक मेरा प्रोग्राम ख़त्म नहीं होगा आधा घंटे पहले जाते कहते हाँ अब हो गया मेरा मन भर गया कभी कभी तो जाग भी जाते हैं आज वैसे भी फ्राइडे है चलिए देखते हैं कितने बजे तक हमारे साथ होंगे तो ऐसा करते हैं नेक्स्ट गाना हम डेडिकेट करते हैं गंगाराम फैमिली के लिए अशोक और सुकवंती के नाम संजय बुधवा जी नमस्कार स्वागत आपका एंड यहाँ पर जो नेक्स्ट गाना होगा इनफिनाइट वैसे आप लोग असली नाम डालते हैं तो मेरे लिए आसान हो जाता है यहाँ पर जैसे एस एन है हमारे साथ नजीमा है और प्रणाम प्रणाम प्रणाम कैसे हो राखी जी हमारे साथ हैं हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन किए हुए हैं और हमारे गाने को एंजॉय कर रहे हैं सो थैंक यू वैसे कल मैंने टाजन का गाना लगाया था और आपने हमारा गाना नहीं सुना गलत कर दिया आपने कोई बात नहीं वही रस्सी पकड़ के आज आप आ जाना हमारे प्रोग्राम में ठीक है वो गाना नहीं टाजन नहीं तो कोई और गाना तो सुनाई देंगे ही मैन सुपरमैन सब है हमारे प्रोग्राम में कोई ना कोई गाना चला देंगे सुल्ताना खंदाई नमस्कार स्वागत आपका सायरा दाहू हमारे साथ हैं चलिए गाना उनके लिए और सायरा बानू अब्दुल के नाम भी जी वीना हाय हाउ आर यू थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस यहाँ पर गुड मॉर्निंग विदिता जय श्री हे ब्यूटीफुल थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल गाने आपके लिए लेकर आए हैं लता जी का कोई प्यारा सा गाना ज़रूर सुल्ताना जी हम सुनाएंगे आपको भी बहुत सारे गाने हैं अभी अभी तो शुरुआत की है हमने बबीता जी नमस्कारम थैंक यू सो मच हाई ए जे थैंक यू जी वीना थैंक यू ए जे आपकी बहना बहुत अच्छी हैं बहुत हाँ अच्छी तो मैं हूँ लेकिन आई एम फीलिंग गुड ओके सुचिता कुलुमत आपके लिए अगला गाना होगा शकीला सलाम जी कैसे हैं आप और गाना यहाँ पर होगा फॉर रूसलबा वैसे हम नए गाने नहीं चलाते सॉरी फॉर दैट हाई साधना जी स्वागत है राधा सिपनर चलिए आपके लिए सिपचन फैमिली के लिए फॉर निधार्थ एंड कीनिता
2: आरएल फ्री रेडियो रेडियो रेडियो

चलिए इसी के साथ हम पृथ्वी के नाम गाना डेडिकेट करते हैं। कल उनके पापा आए थे एमबीसी, कहते हैं बहुत बहुत बहुत अच्छा लगा उनको, थैंक यू सो मच, दिल से बहुत बहुत थैंक यू। और इसी के साथ चलिए एजे कहते हैं, भाई हमारे यहाँ तो बारिश हो रही है और इतनी ठंड है, गाना भी कुछ ऐसा है।

0: सुहाना सफर।
1: वेल सुहाना सफर के हमारे सभी लिसनर्स, बताओ कैसे हो, क्या चल रहा है? आज फ्राइडे है, 12:32 हो रहे हैं, सबकी बत्ती सी बाहर है। हाँ, खुश तो ज़रूर लग रहे होंगे और खुश होना भी चाहिए। और जब फ्राइडे आता है तो फ्राइडे वाली फीलिंग जो होती है ना, मूड एकदम चेंज कर देता है। वैसे यहाँ पर हमारे जितने भी गाने हैं, लेट मी टेल यू कि फ्राइडे वाले मूड के हिसाब से ही हैं। कुछ रोमांटिक हैं, कुछ अभी 1 के बाद हम धमाका करते हैं यहाँ पे। नो वरी, डांस वंस सब होगा, मस्ती वस्ती सब होगी। वो भी तो लंच टाइम चल रहा है ना, इसीलिए हम नहीं चाहते कि कोई बिरयानी खा के कूदे इधर उधर। तो हम चाहते हैं कि आराम से पहले खाना खा लो, फिर उसके बाद झूमते हैं, कूदते हैं, क्या बात है। सरोज, सविता बधु, साथ में प्रतिमा, कृष्ण, नदुकित रामन, रामचरण फैमिली के लिए गाना होगा। वी हैव रवीना दर्शन, उनकी मामी स्वाति, निकित सिंह को हैप्पी बर्थडे सुराय फैमिली की ओर से, नीत, शिमला बिजाधर, ओम, दीप्ति, मीला रामा, सुबिता, नजीमा, नम्रता, कविता, कविराज, नाज, अब्दुल, जो कि फिजी से हमें देख रहे हैं हमारे टिकटॉक पे लाइव, थैंक यू सो मच। साहिल, जुबेर, अरुण अलियोर, जो कि हमारे साथ हैं, बे हिंदी 2007 टू 2010 की जो बैच है उनके नाम डेडिकेट करना चाहते हैं। वी हैव अवर लकी गर्ल हियर, हाय, थैंक यू टीना। ओके, वी हैव अ रिकी, हाय रिकी। सो यहाँ पर नलेश भोजराज हमारे साथ हैं, और साथ में डोली बर्टन, हाय, प्रणाम प्रणाम। किरण खजोना, आपका भी स्वागत करते हैं। एंड वी हैव पिंकी काले अच्छी, नमस्ते विमी, स्वागत। हेलो प्रिंसेस जी, कैसे हो? हाय रमजी, आपका वेलकम है। पाकीज़ा, क्या बात है, स्वागत है। हाय शवी, कैसे हो? देरा राम जी, आपका भी स्वागत है। और यहाँ पर नम्रता भी हमारे साथ, और वैसे यहाँ फिजी से काफ़ी सारे हमारे दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच सुवी, हमें बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आप हमारे साथ हैं। एंड साथ में यहाँ पर हमारे साथ हैं अहमद मुस्तफ़ा राम जोन, आपका हम वेलकम करते हैं। तारीफ करूं क्या इसकी जिसने तुम्हें बनाया? अच्छा, गाना है, चलो ठीक है। राधा सिपचंद, स्वागत। शारदा लखनौत, और साथ में है यहाँ पर विक्रम, थैंक यू विक्रम। वैसे आपको जूली फिल्म का गाना पसंद आया, राइट? अजवीर हमारे साथ हैं, अवीर हमारे साथ हैं, और हमारे साथ हैं जया निर्मला बाई। ओके जी, माला जी, आपका स्वागत करते हैं। और साथ में ये गाना होगा फॉर निज़ाम बहादुर, और साथ में गाना होगा हमारे दोस्त डॉली बर्टन के नाम।
2: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: फिल्म का नाम है बॉबी, और चलिए ये गाना डांस करने के मूड में हैं आप लोग, तो जो लेडीज़ हैं वो कर

सकती है क्योंकि इसमें अरुणा रानी ने जो छोटे छोटे हल्के हल्के मूवमेंट्स किए ना बड़े अच्छे थे है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, माया रामदोस जी का स्वागत एंड साथ में गाना होगा धनेश्वर देवदास जी के लिए जो बॉम्बू से साथ दे रहे हैं, उनके पोती हंसली के लिए और राकेश टोवाकल आपके लिए भी एंड हंसली थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।

0: ब्यूटीफुल गाना आपके लिए लेकर आए शैलेंद्र सिंह की आवाज में. बॉबी फिल्म से लिया गया था ये खूबसूरत सा गाना.
1: सुहाना सफर.
0: You're listening to सुहाना सफर वेदिता के साथ रेडियो मनोरंजन RM3 पर. यहाँ पर पूनम जालिम हमारे साथ है, सरेश साथ में है, कर्श जी रुबेन के लिए गाना होगा जो इस समय काम कर रहे हैं बैंक में, और साथ में अरुणा और विक्रम के लिए सिद्धिहल और तोड़ी फैमिली के नाम. वी ऑल्सो हैव रोहित, साथ में पार्वती, पूनम, खुशी सीचन, गेट वेल सून, विकास बातू, सी वसन, अर्जुन, रोशन, इंदिरा, प्रतिमा, श्रेष्ठा, रेना, and we have Jenny, Ankush, yes, this is Mauritius, and Fiji Island में काफ़ी सारे लोग हमें सुन रहे हैं, तो उनको कहेंगे वेलकम. ये सुन रहे हैं हमें हमारे TikTok लाइव पे, अनोरखी का हम वेलकम करते हैं, मालिनी आपका स्वागत करते हैं, और साथ में यहाँ पर बना पीछी आपको भी कहेंगे थैंक यू सो मच. प्रियाता जा हमारे साथ, आपका स्वागत है. कल्याणी जी, रंभा जी नमस्कार, विल्वो पर है, ठीक है जी, स्वागत है आपका. तनुषा नमस्कार, और साथ में यहाँ पर हमारे जो दोस्त हैं वो है, चलिए देखते हैं रेखा कैसी है. रेखा जी रेशमा के लिए, मधु प्रेमिला के लिए जो हमारे साथ है फ्रमाजुगी, एंड करुणा उनके लिए गाना होगा, उनके हस्बैंड क्लाहल वाइफ करुणा के नाम. चलिए सुनन का वेलकम करते हैं, और साथ में नेक्स्ट गाना जो होगा शर्मिला, टीना, तन्वी, वानिसा के नाम भी होगा. तो यहाँ पर हमारे साथ देख रहे हैं आप कितने सारे लोग जुड़े हुए हैं. शर्मिला चुनीलाल आपका भी हम स्वागत करते हैं, और साथ में भारती आपके लिए अगला गाना डेडिकेट करेंगे. देविका जी नमस्कार, आपका वेलकम है, और सभी हमारे गीतों को पसंद करने के लिए थैंक यू. प्रेमिला जी आपका भी वेलकम है, और कज हमारे साथ हैं, असली नाम तो लिखा नहीं लेकिन थैंक यू सो मच. वी हैव विनय जोगे सर जो साथ दे रहे हैं. विनय थैंक यू सो मच फॉर लविंग द सॉन्ग्स. एंड एक मैसेज आया है, आई एम वॉचिंग नॉट फ्रॉम मॉरिशस. तो कहाँ से आप देख रहे हैं हमें बताइएगा ज़रूर. हाय श्रेष्ठा, स्वागत है आपका, और नंदा मेकन का भी हम वेलकम करते हैं. यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, तो ऐसा करते हैं प्रसाद जी के लिए गाना होगा, और हरी जी आपके लिए भी. सरिता थापा नमस्कार, स्वागत है, और चलिए इसी के साथ गाना आपके लिए पेश है, फिल्म है ब्रह्मचारी. चलिए जो लोग हमारे टिकटॉक के साथ जुड़े हैं और हमारे लाइव के साथ भी जुड़े हैं तो मैं बताऊं, रेडियो पे भी सुन रहे हैं. साहिल ने कहा है कि टिकटॉक छोड़ रहा हूँ लेकिन रेडियो पे आपकी आवाज़ आ रही है.

0: बेमिसाल है तेरी तारीफ क्या करूं, हाय हाय क्या बात है। ऐसे ऐसे अगर कोई अभी तारीफ करने लगेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। चलो जी, तारीफ करते रहो आप और हम गाने गुनगुनाते रहेंगे आपके साथ, आप ही के अपने रेडियो मनोरंजन पर जो आप सुन रहे हैं अभी हमारे साथ।
1: सुहाना सफर।
0: तो चलिए, यहाँ पर यूके से काफ़ी सारे दोस्त हमें सुन रहे हैं, उनका वेलकम करते हैं। एंड साथ में यहाँ पर हमारे साथ हैं सरस्वती, राम राम आपको, सोविता प्रताप नमस्कार, लच्छम सिंह गोविंद जी नमस्कार, इंदिरा जी, रेवो रितेश, नेक्स्ट गाना आपके भाई अमर के लिए, आज उनका बर्थडे है। और साथ में यहाँ पर गाना जाएगा राजेश उगर के लिए जो इस समय साथ दे रहे हैं, थैंक यू सो मच सरस्वती। एंड ऑफ कोर्स गाना जाएगा परी के लिए और बिल्कुल जय तूफानी भी हमारे साथ है, उनके लिए भी गाना होगा। सविता नमस्कार, आपका स्वागत है। एंड हमारे साथ हैं प्रियंका फ्रॉम लावोंचुया, थैंक यू प्रियंका, वो हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती हैं, गाने सुनती हैं और पोस्ट ऑफिस में काम भी करती हैं तो चलिए उनके लिए। एंड वी हैव डियाना फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड शदीरा अवतार, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। चलिए, प्रसाद जी हैं फ्रॉम न्यूजीलैंड एंड क्रिश्चियस, ओके, एंड सुबी, थैंक यू वंस अगेन। साथ में यहाँ पर सीता पदारत, वानिसा एंड निशान भी हमारे साथ हैं, एंड मोका क्या बात है, निर्मला जी थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू हमारे साथ, हमारे इस प्रोग्राम के साथ जुड़ने के लिए। अब गाना कौन सा होगा लता जी के साथ, अगले गाने के साथ चलिए बढ़ते हैं। कहती हैं दिल बेकरार सा है और दिल में बहुत सारी बेचैनियां भी है। शर्मिली थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, रीता देवी नाम आपका, स्वागत है। और स्वागत है आपका अंजू पोतिया हमारे इस प्रोग्राम में।

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: ये है सुहाना सफर विदिता के साथ रेडियो मनोरंजन पर आप सुन रहे हैं RM3। बृंदा थैंक यू सो मच, रवि मैथिली श्रीपा आपका वेलकम करते हैं, अंबिका कनाय थैंक यू, हिना आपका स्वागत है, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए, और सरिता थापा आपका भी हम वेलकम करते हैं, और परी आप कैसी हैं, सब बढ़िया। सो रवि जो है हमें इटली से सुन रहे हैं, और यहाँ पर हमारे साथ हैं श्यामा माहिराली, गाना होगा शदीरा अवता के लिए जो कि है फ्रॉम साउथ अमेरिका। हमारे साथ हैं प्रभु देवा, सत्यम, जय तूफानी, आरती, धनेश एंड बृंदा, सबको गाने पसंद आ रहे हैं, सब झूम रहे हैं। अभी ये है कि हमारे पास अगला जो गाना है कुछ मूड को बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये भी धीरे धीरे करके हम लोग ना मूड को चेंज कर रहे हैं, और हमारा भी मन है कि हमारे जितने भी श्रोता हैं हमारे साथ जब गाना सुने तो अच्छे अच्छे मूड में हो, हमारे साथ गाने गाएं, गाने गुनगाएं। और जब गानों की बात चली है तो ये गाना कैसा रहेगा,

0: You're listening RM Free Radio.
1: चलिए हम इसी गाने के साथ बढ़ते हैं 1 बजे के समाचारों की ओर और हमारा अगला गाना जो होगा डेडिकेट करेंगी हबी साइलेश के लिए। साइलेश पैदब जिनका 4 अगस्त को बर्थडे था, रोहन को कहेंगे वेलकम और साथ में वीमा पेंचा लक्ष्मी सुदेवी वुदन कविता है फ्रॉम मिलान बबीता मणिप्रिया की तरफ से उनके बेस्टी मनीष के लिए। पेश है ये गाना सुनील भुवन आपके नाम हीना और साथ में ये गाना होगा अंबिका कनाय आपके लिए भी। वैसे ये गाना अनुष्का की तरफ से उनके बच्चे तन्वी और राघव के नाम भी डेडिकेट करेंगे और आप हैं फ्रॉम लव ऑन्चुआ। रीना का स्वागत है, रोहन रोशन को नमस्ते हैं और गाना होगा आपके लिए। शोभा मनरूप और अंबिका कुनाय जो कि साथ में काम कर रहे हैं, बो कुगाज टू यू। वनीषा की तरफ से बेटे कृष्णराज के लिए जिनका आज बर्थडे है आपके नाम।

0: एक बचा है। देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है आस्था, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार, एक बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। वर्कर्स राइट्स एक्ट और एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस एक्ट में बदलाव इस साल के अंत तक किए जाने की उम्मीद। इसी सिलसिले में कल नेशनल ट्राइपार्टाइट काउंसिल की बैठक लगी, जिसमें प्रस्तावित बदलावों के पहले मसौदे पर चर्चा आगे बढ़ी। इनमें पीआरजीएफ की भूमिका, स्वतंत्र अनुशासन समितियों और नियोक्ताओं के बदलाव से श्रमिक संगठनों की सुरक्षा को मजबूत करने जैसे मुद्दे शामिल हैं। श्रम मंत्री जाउतीम ने साफ किया कि इस पर काम पिछले साल ही शुरू हो गया था और इसका आत्मा शांतो की भूख हड़ताल से कोई संबंध नहीं है। मॉरिशस में पेट्रोलियम सामानों की आपूर्ति को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच 5 साल का समझौता तय हुआ। इसके तहत पेट्रोल, डीजल, जहाजों और विमानों के लिए ईंधन की आपूर्ति की जाएगी। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम का कहना है कि इसका उद्देश्य देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना है। मॉरिशस अपने सभी पेट्रोलियम सामान विदेशों से मंगाता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दामों के उतार चढ़ाव, भू राजनीतिक तनाव और समुद्री रास्तों में रुकावट का असर देश पर पड़ सकता है। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत के साथ इस विषय पर बातचीत सितंबर 2025 में उनकी नई दिल्ली यात्रा के दौरान शुरू की गई थी, यानी मध्य पूर्व के हाल के संकट के काफी पहले। इस समझौते में दामों पर फिर से गौर किए जाने का भी प्रावधान है। व्यापार मंत्री माइकल सिक्विन का कहना है कि भू राजनीतिक स्थिति बदलने पर दोनों पक्ष दामों पर फिर से बातचीत कर सकेंगे। ये साझेदारी पेट्रोलियम सामानों तक सीमित नहीं है। सऊदी अरब की जेल में नशीले पदार्थों से जुड़े एक मामले में बंद गानिशन एलन से रविवार को मॉरिशस के राजदूत रियाद हालमट ने मुलाकात की। ये मुलाकात दूतावास की ओर से दी जा रही सहायता के तहत हुई, ताकि उनकी जेल की परिस्थितियों का भी जायजा लिया जा सके। वहीं उनके वकील गमावान आयलदेन का कहना है कि जरूरी मदद की अब भी कमी है और वे लगातार प्रयास कर रही हैं। वे अपने मुवक्किल को बेगुनाह बताते हैं और उनका कहना है कि उन्हें फंसाया गया है। एबन में युवाओं के लिए नई टेक्निकों से जुड़ी एक प्रयोगशाला शुरू की गई है। यहाँ एआई, रोबोटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स पर काम करने की सुविधा होगी। उद्देश्य है कि युवा केवल किताबी जानकारी तक सीमित न रहें, बल्कि अपने विचारों को आजमाएं और नई परियोजनाएं तैयार करें। विदेश स्तर पर दुनिया के मौसम पर एल नीनो का बड़ा असर पड़ने के संकेत मिल रहे हैं। प्रशांत महासागर में बन रहा एल नीनो अब तक के सबसे शक्तिशाली में से एक हो सकता है। समुद्र का तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा बढ़ चुका है और आने वाले महीनों में ये अंतर 3 डिग्री तक पहुंच सकता है। इसका असर बारिश, गर्मी और तूफानों पर पड़ सकता है। इसके साथ ये समाचार समाप्त हुए, बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। क्लियर फोन नंबर 1 फिनिक्स में 87 साल की बीबी आयशा हुसैन बाकस, की मृत्यु हो गई है। वे इंतकाल कर गई हैं। पैदाइश नाम रुमालदा, वो लोग उन्हें आयशा के नाम से अधिक जानते थे और उनका जनाजा आज दिन के 12:30 बजे उठाया गया। रॉयल रोड फोंडुसाक में 73 साल के 73 साल के लक्ष्मी प्रसाद हीरा की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल शनिवार को दिन के 11 बजे उनके बेटे अमित हीरा के मकान फोंडुसाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फोंडुसाक की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।

0: ब्यूटीफुल सा गाना आपके लिए सुरेश वाडकर लता जी की आवाजों में। और चलिए इसी के साथ अगला गाना किसके नाम डेडिकेट करें, पहले स्वागत तो कर ले हम आपका।
1: सुहाना सफर।
0: चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे सेकंड आवर में आपका वेलकम है। 21 अगस्त शुक्रवार का ये दिन है, दिन के 1:11 हुए हैं। वेदिता आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है आपके लिए यहाँ रेडियो मनोरंजन पर, वाइफ सीता के लिए। और ये हैं ट्रिनिदाद से देव भोला जी, और गाना होगा वास्तव के लिए निशा भवानी फ्रॉम सूरीनाम। वी हैव रवन सेवापति, साथ में सीता, संजना, नीलम्बा, पूजा की तरफ से उनके मॉम राजवनी के लिए, साथ में ऋषि राम प्रसाद, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, राधा, फरहा, वीना, जीवन महादेव, राज, केनी एंड संगीता, रामनाथ, अफीजा, आफरीन, अंजलि, सारा, मीनाक्षी, आनंद, जीवन सर, जू, गीता, शिव, सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आपने कहा है बॉनजियोर्नो, ओके, थैंक यू सो मच, गुड आफ्टरनून गीता जी। कविता आपके लिए गाना होगा, और साथ में कविता, मोहन, रेखा, अंबिका, प्रेमिला और सबीना के नाम। तो यहाँ पर गाना होगा आपके लिए योगेश बुजारत आरती की तरफ से, हाय ऋषि, कैसे हो ब्रो, ऑल गुड, रोश, थैंक यू सो मच, और माला जी नमस्कार। चलिए तो इसी के साथ अगला गाना नंदा बालुआ के नाम और हमारी प्यारी सी क्वीन के लिए, प्रियम हमारे साथ हैं, उनके हस्बैंड सचिन, बेटी श्रीना और बेटे श्रेयान के लिए।
2: RM3 रेडियो
0: प्रिया ने अभी अभी ज्वाइन किया है, तो प्रिया वेलकम है, स्वागत है आपका।

दोस्तों तुम सबको ये शाम मुबारक हो। 1:18 करुणा बोला, सानुन के बेटे मिथिल, माला, तरुण राम, संजना, अंजू, मीनू और सिस्टर आरती, सलोनी, दादी माँ माया, और साथ में ये गाना होगा आपके लिए। दादी माँ जो है उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और नानी है या दादी है आई डोंट नो, लेकिन आपने लिखा है ग्रैंड मदर माया दानू के लिए, ये है वेद की तरफ से। एंड ऑल्सो ये गाना जाएगा उदेश शाह बीहू के लिए, प्रिया सी बालक, और हमारे साथ हैं कोको जो हमें ज्वाइन कर चुकी है, राज बाजनौत के लिए गाना होगा, और साथ में यहाँ पर जितने भी लोग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में काम कर रहे हैं उन सभी स्टाफ के लिए गाना होगा। वी हैव वै देही नमस्कार अंजू राम, और साथ में ये गाना होगा आपके लिए हस्बैंड फिरोज जबूजिया के लिए उनकी वाइफ नशरीन की तरफ से, और यही गाना होगा आपके लिए। थैंक यू सो मच पूजा हमारे गीतों को एंजॉय करने के लिए। चलिए दिल में दर्द जगाते हैं थोड़ा सा प्यार से, इस प्रोग्राम को आगे ले चलते हैं रफी साहब की आवाज़ में, वही खूबसूरत जादू भरा ये गाना कर्ज फॉर्म से लिया गया है। एंजॉय करें और हमें अपने मैसेज भेजते रहें। ये गाना हम डेडिकेट करते हैं किरण पुरी के लिए, और साथ में जी जी लाल, नरेंद्र कुमार, नंदी, काला राम, कारीगर जो

आपकी वैंकूवर कनाडा में इस समय हमारे साथ हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं, भले वही वहाँ पे दो बजे हैं लेकिन फिर भी उनका साथ हमेशा रहा है और उम्मीद करती हूँ हमेशा रहेगा। तो चलिए इसी के साथ थैंक यू एंड ये गाना आपके लिए।

चलिए गाना हम सिमी रामदत्त के लिए, शांता सुकालिंगम, शिवरानी, राज बाजनत, शवीना, नेहा, नीलिमा, विजय, राधन, संजू और कुमी के नाम डेडिकेट करते हैं। सीता जो ट्रिनिडाद से हमें सुन रही है उनके लिए भी, एंड वी हैव यश जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच।

0: सुहाना सफर सुहाना सफर।
1: नहीं सच में मजा तो आ ही गया, आप इतने अच्छे हो ना, हमारे जितने भी लिसनर्स हैं इतने ज्यादा अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं। किरण जी अभी भी हमारे साथ हैं, कहते दो तो बज गए कब के, अभी तो सोने का टाइम है, लेकिन फिर भी नहीं सोना, जाओ नहीं सोना, क्योंकि हमें प्रोग्राम सुनना है और प्रोग्राम के साथ जुड़ना है। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट गाना मालिनी विश्राम बीबो देवी का, मीनाक्षी प्रीति मयूरी राज श्रीवा दाऊ रेशमा पूरन के नाम होगा, और वहीं पर हमारा ये खूबसूरत सा गाना जो है आ रहा है आपके लिए, फिल्म का नाम है मैं तेरे लिए। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम लोग पुराने गाने चलाते हैं, नए गाने नहीं चलाते, हमारे गाने जो हैं सिर्फ बॉलीवुड के होते हैं। सो थैंक यू सो मच एक बार फिर से हमारे साथ, अभी भी हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं आप, रेडियो मनोरंजन RM3 जिसका बहुत जल्द हम सेलिब्रेशन करेंगे एक साल का। तो इस एक साल में जितना भी प्यार आपने हमें दिया उसके लिए थैंक यू। गीतों का सफर जारी है।

गाना है बहुत बहुत बहुत ही खूबसूरत से गाना हमारे सभी प्यारे लिसनर्स के लिए सुहाना सफर तो चलिए देखते हैं कौन है हमारे साथ आयशा आई भी और चली भी गई आती जाती रहती हैं वो जैसे टाइम मिलता है संध्या सिल्वो करिश कहते हैं उनके भाभी का आज बर्थडे है तो उनकी भाभी के लिए गाना होगा और उषा भिंदा हमारे साथ हैं सुनीता एंड परी यहाँ पर कहते हैं आपको देखा था SBICC में ओके थैंक यू निशिनी माँ हेलो नमस्कार संजनी राम राम आपको विश्वनाथ प्रयाग नमस्कार अभी अभी जुड़े हैं आप हमारे साथ और मैंने बोला ना वो आती ही चली जाती है थैंक यू सो मच आयशा एंड वी हैव नेक्स्ट गाना फॉर हस्बैंड धर्मेंद्र बेटे जेविन और ये है ज्ञानी ऑफ मिडलैंड्स वहीं पर हमारे साथ अली बाबा आ गए हैं वैसे अली बाबा आपके चार्जेस छोड़ के साथ मत आना आना तो बस ये बताना कि कहाँ पे आना है और खजाना कहाँ है RM3 Radio.

0: सुहाना सफर। वही लास्ट में जो हंसे थे ना उसको सुनकर हमारी भी हंसी आ गई। चलिए सीला निशी अनीता और फिजी में जितने भी दोस्त हमारे हमें टिकटॉक के साथ जुड़े हुए हैं थैंक यू एंड वेलकम। साथ में रागिनी वी हैव बैब्स हाई फैमिली फ्लैक्स सुन रही हैं विनेश यश जो कि है फ्रॉम लिवरपूल हेलो एंड अंजनी जी आपका हम स्वागत करते हैं नमस्ते। कुबेर प्रहलाद सिंह जी का भी वेलकम करते हैं। कुबेर जी जहां होते हैं वहां सब खुश होते हैं। चलिए देवी हमारे साथ श्री उली से हैं और जय श्री राम लोगन वी हैव निशा वन देवी
1: और साथ में यहां पर नेक्स्ट गाना जो होगा हम हैंसले के नाम डेडिकेट करेंगे और कहते हैं मज़ा ही आ गया भाई प्रोग्राम सुन के। और सुन यहाँ पर पेगबिया से साथ दे रहे हैं और वंदिता वंदिता ने गाना मांगा था चलो वंदिता के लिए। और यहाँ पर रेशमा मधु के लिए गाना डेडिकेट कर रहे हैं और बाय रोहित आपको कहेंगे थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहे हमारे गाने एंजॉय करते रहे अभी आपको काम पर जाना है सो बुक वॉश टू यू थैंक यू सो मच।

0: सुहाना सफर सुहाना
1: सफर। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट गाना जो होगा ऋतिक जयसनाजी, राजीव राम, नदीम और हुदने के नाम डेडिकेट करेंगे। साथ दे रहे हैं आप लोग हमारे, और यही गाना हम जो है डेडिकेट करेंगे आप सभी लिसनर्स के लिए जो हमारे साथ हैं। वैसे नाजिया हसन का गाना आएगा, लेकिन वो अभी नहीं आएगा। वो गाना हम डेडिकेट करेंगे आपके लिए 2 बजे के बाद, ठीक है? यहाँ पे मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम हो रही है। ओके, चलो ठीक है। गाना होगा आपके लिए, एंड थैंक यू सो मच नाजी। हेलो सिद्दीक जी, कैसे हो आप? संगीता सुखारी आपका वेलकम करते हैं प्रोग्राम में, और जितने भी लोग इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए अगले गाने के साथ आगे बढ़ते हैं। अब मिलते हैं हम 2 बजे के समाचारों के बाद। आपके डेडिकेशंस आपके मैसेजेस के साथ नंबर आपको बताई हैं, इट्स 5250600, या तो फिर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारी टिकटॉक लाइव पर। और वीना जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और अगले आवर में गाने थोड़े 80s के होंगे।

0: 94.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3
1: घड़ी मिलाते चलिए इस समय दिन के 2 बजे हैं।

0: सुनते हैं देश विदेश की खबरें आस्था से। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार। दो बजे की समाचारों में स्वागत है आप सभी का। पेनल्टी पॉइंट सिस्टम को लागू हुए 6 महीने हो चुके हैं। 31 जनवरी से 31 जुलाई 2026 तक के आंकड़ों में तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना और सीट बेल्ट नहीं लगाना आम यातायात उल्लंघनों में शामिल रहे हैं। इन 6 महीनों के आंकड़े सड़कों पर नियमों के पालन और वाहन चालकों के व्यवहार की मौजूदा तस्वीर भी सामने रखते हैं। वर्कर्स राइट्स एक्ट और एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस एक्ट में बदलाव इस साल के अंत तक किए जाने की उम्मीद। इसी सिलसिले में कल नेशनल ट्राइपार्टाइट काउंसिल की बैठक लगी, जिसमें प्रस्तावित बदलावों के पहले मसौदे पर चर्चाएं आगे बढ़ी। इनमें पीओजीएफ की भूमिका, स्वतंत्र अनुशासन समितियां और नियोक्ता के दबाव से श्रमिक संगठनों की सुरक्षा को मजबूत करने जैसे मुद्दे शामिल हैं। श्रम मंत्री गिजाउद्दीन ने साफ किया कि इस पर काम पिछले साल भी शुरू हो गया था और इसका आत्मा शांतो की भूख हड़ताल से कोई संबंध नहीं है। देश में खाद्य आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए सरकार स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। इसी के तहत बीज उत्पादन, स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल नई किस्मों के विकास, उनकी बिक्री और किसानों को जानकारी देने पर जोर है। फेरिना या न्यूआ 45 नाम की सेम की किस्म को अच्छी पैदावार और आयरन की अधिक मात्रा के कारण चुना गया है। सरकार इसके बीज पर 75% की सहायता दे रही है। इसके बीज एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड में 130 रुपए प्रति किलो की दर से उपलब्ध है। स्विट्जरलैंड में एक इमारत में भीषण आग लगने के बाद 5 लोग लापता हैं और 8 घायल हुए। इमारत में एक रेस्टोरेंट और रहने के लिए अपार्टमेंट्स थे और आग में ये पूरी तरह तबाह हो गए। शुरुआती जांच के मुताबिक आग दूसरी मंजिल पर लगी। सीढ़ियां गिर जाने के कारण करीब 100 दमकल कर्मियों को आग बुझाने में काफ़ी मुश्किलें हुई और क्रेन की मदद से छत को खोलना पड़ा। 14 लोग इमारत से सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहे हैं। इसी के साथ ही समाचार समाप्त हुए। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। Route des Pamplemousses, la croisée vallée des prêtres pour lui-même, porte lui-même, 60 salle qui est 60 years old, qui est Durga Lachuman qui m'a dit que Durga Lachuman qui m'a dit que c'est un kerti, Kaldin qui est 2 bajé, un kebhaye, Vikram Lachuman qui m'a dit que porte lui, vallée des prêtres porte lui, c'est Utakaran Tim Sanskar qui est laissé pas brûler, qui chumchan pumi le jaegi, cremation tomorrow at 2 pm. Shrok Milou Bes Parivar qui prati Hamari Gheri Sahanupouti.
2: You're listening to RM3 Radio Mana.

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: चलिए शोभा जी के लिए गाना, उनकी बेटी और पूरन फैमिली के लिए वी रोबिनोट पांडे हंजू सना और प्रीता जैनोत रेशमा नक्षदी जी हमारे साथ हैं, इजमा गोखु विभा मनीषा नीलम जाविद एंड आरती श्याम और बेबी जैन के नाम।

0: मेरी याद आएगी आती रहेगी। चलिए यहाँ पर ज्योति संगीत नौशाद मीमी की तरफ से उनके शेफ राजेश के लिए गाना होगा।
1: RM3 Radio.

सुहाना सफर सुहाना सफर। चलिए जी, यहाँ पर परी कहती है कि इस गाने में टीना मुनीब जी का जो डांस था वह क्या बात है। थैंक यू सो मच हमारे गीतों को एंजॉय करने के लिए। थैंक यू फॉर लविंग द सॉन्ग्स। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट गाना होगा आपके लिए होगा, किसी ने कहा भोजपुरी गाना वो तो नहीं लगाते, यहाँ पर बॉलीवुड के गाने चलते हैं। सॉरी मीरा, हाय थैंक यू सो मच मीरा। कविता राम ध्यान, थैंक यू। दिवेश बिकिया, ओ मेरी जान कैसे हो, वेलकम स्वागतम स्वागतम, क्या बात है भाई, आपने तो कमाल कर दिया। और दिवेश जी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस हमारे इस प्रोग्राम में, होप आप हमारे गीतों का मजा ले रहे हैं। एंड चलिए यहाँ पर दीप्ति जी एक बार फिर थैंक यू। विरन कुमारी एंड वी हैव अ राज, हाय राज, नाम तो सुना ही होगा। हाँ जी, यहाँ पर बहुत सारे राज हैं हमारे इस प्रोग्राम में जो राज कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम में, थैंक यू। और यहाँ श्यामा जी कहती हैं नमस्ते, तो चलिए उनका हम भी स्वागत करते हैं हंसते हंसते। और ब्यूटीफुल सा गाना था, अब मैं सोच रही हूँ कि अब क्या ही सुनाऊँ मैं आपको। एक गाना है मेरा फेवरेट गाना है, अगर आपको पसंद आए तो। ये गाना हम सुबल सुशील कुमार के नाम डेडिकेट करते हैं।

हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। चलिए जी, हमारे प्रोग्राम के साथ भी बहुत सारे लोगों को प्यार हो जाता है। अगला गाना जो है हम जितेन दुलवा के नाम डेडिकेट करना चाहेंगे, और यहाँ पर चलो जी, कुछ लोगों ने गाने की भी फरमाइश की है, हम कोशिश करेंगे। परी कहते भाई हमारा टेंशन तो दूर हो गया। एंड साथ ही साथ यहाँ पर राज आपके लिए, महेश, रीना दुकारन, और कहते हैं कि रिमिक्स गाने हर भाई, यहाँ पे रिमिक्स गाने कौन चला रहे हैं, लगता है कि आपको पुराने गाने आपको पता नहीं कौन से होते हैं। कोई बात नहीं, चलो यहाँ पर हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनको थैंक यू। एंड अश्विन रामबन, कैसे हो जी? ऐसा करते हैं अगला गाना अश्विन जी आपके नाम डेडिकेट करते हैं, और साथ में यही गाना आ जाएगा फॉर प्रीति। एंड जिन लोगों को अमिताभ बच्चन बहुत ज़्यादा पसंद है मेरी तरह, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू। एंड यास्मीन पीरबक्स भी हमारे साथ हैं, रुकैया सुदन जो कि गजवी में हैं, और यहाँ पर हम नेपाली गाना नहीं चलाते, सिर्फ हिंदी गाने चलते हैं, हम सॉरी रोहित। सलीमा कैसी हो जी आपके लिए, और समीरा के लिए, एंड बाकी जो लोग हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं, हमारे टिकटॉक लाइव के साथ जुड़े हुए हैं, आपको भी हम थैंक यू कहना चाहेंगे हमारे साथ, हमारे गीतों के साथ एंजॉय करने के लिए और गुनगुनाने के लिए।

हम भी आपसे यही कहेंगे कि हमेशा आपके साथ रहेंगे और ठहरने को तो यही बोलते हैं हम आपको, जहां भी हैं बस वक्त ठहर जाए और यूं ही हमारा म्यूजिक के साथ सफर पूरा हो जाए। और ये गाना हम सिस्टर स्वीटी के नाम डेडिकेट करते हैं अमृता सुमारू के लिए। एंड साथ ही साथ यहाँ पर हमारे साथ है स्वीटी युवना और यही गाना डेडिकेट करते हैं हम आपके लिए वाइब्स। थैंक यू सो मच सुमेश सिंह, आपका वेलकम है। और कहते हैं बस हमारी एनर्जी बूस्ट हो रहा है घर के कामकाज को करने के लिए, थैंक यू सो मच। दीप्ति जी कहती हैं 12 बजे से अब तक के जितने भी गाने चले कमाल के हैं, थैंक यू। थैंक यू कवि फॉर जॉइनिंग अस। हाय क्रूश, हाय वैदेही, आपका वेलकम है। सूर्या थैंक यू सो मच, लाइव हमारा देख रहे हैं फ्रॉम फिजी। वी हैव विशाल हरिदास, आशुतोष एंड साथ में है राजेश माया, थैंक यू।

कहते हैं कि एक ढूंढो मिलते हैं हजारों, हमने भी एक दो दोस्त ढूंढे थे लेकिन यहाँ इतने हजारों दोस्त हैं जो हमारे टिकटॉक के साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं हमारा प्रोग्राम रेडियो मनोरंजन आर्यन 3 पे चल रहा है। तो चलिए यहाँ पर कहते हैं कि नेक्स्ट गाना जो है प्रतिमा और रूही के नाम डेडिकेट करें लैला मदारन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मदन पांचू आपका एक बार फिर से स्वागत है। दीप्ति जी उम्मीद है कि आपको हमारे सारे गाने अच्छे लगे होंगे, स्वागत करती हूँ मैं आपका और धन्यवाद कहना चाहूँगी आप सभी हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स का जो हमारे साथ हैं 12 बजे से।

का जवाब हाथ से, बात का जवाब बात से, प्रीत का जवाब प्रीत से, और गीत का जवाब गीत से।

चलिए इसी के साथ समय हो गया है अब हमारे प्रोग्राम के अगले गाने का जो हमें लेके जा रहा है 3 बजे के समाचारों की ओर और जैसे प्रॉमिस किया था हमने चलिए नेक्स्ट गाना चांदनी नीता क्वीन सी विलाशा के लिए और विराज के लिए भी जो साथ दे रही हैं और अभी तो हमारे जाने का टाइम हो गया है एंड चलो किरण जी एक बार फिर थैंक यू सो मच अश्विन जी थैंक यू वंस अगेन हमारे साथ जुड़े रहे आप दीप्ति

परी, साहिल, अनिल जी, थैंक यू. एंड अब मिलेंगे हम आपसे मंडे को. अश्विनी रामफल, आपका भी हम स्वागत करते हैं. थैंक यू सो मच. बस गुनगुनाते चलिए, झूमते रहिए. फ्राइडे आज, मस्ती कीजिए.

0: एग्जैक्टली 3 पीएम देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है आस्था, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार, सुबह 3 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। पेनल्टी पॉइंट सिस्टम को लागू हुए 6 महीने हो चुके हैं। 31 जनवरी से 31 जुलाई 2026 तक के आंकड़ों में तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना और सीट बेल्ट नहीं लगाना आम यातायात उल्लंघनों में शामिल रहे हैं। इन 6 महीनों के आंकड़े सड़कों पर नियमों के पालन और वाहन चालकों के व्यवहार की मौजूदा तस्वीर भी सामने रखते हैं। वर्कर्स राइट एक्ट और एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस एक्ट में बदलाव इस साल के अंत तक किए जाने की उम्मीद है। इस सिलसिले में नेशनल ट्राइपार्टाइट बैठक की बैठक लगी। इसमें प्रस्तावित बदलावों के पहले मसौदे पर चर्चाएं आगे बढ़ी। इनमें पीआरजीएफ की भूमिका, स्वतंत्र अनुशासन समितियों और नियोक्ताओं के दबाव से श्रमिक संगठनों की सुरक्षा

0: को मजबूत करने जैसे मुद्दे शामिल रहे। श्रम मंत्री रिजाउद्दीन ने साफ किया कि इस पर काम पिछले साल ही शुरू हो गया था और इसका आत्मा शांतु की भूख हड़ताल से कोई संबंध नहीं है। देश में खाद्य आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए सरकार स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। इसी के तहत बीज उत्पादन, स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल नई किस्मों के विकास, उनकी बिक्री और किसानों को जानकारी देने पर जोर है। फेगिना या नुआ 45 नाम की सेम की किस्म को अच्छी पैदावार और आयरन की अधिक मात्रा के कारण चुना गया है। सरकार इसके बीज पर 75% की सहायता प्रदान कर रही है। इसके बीज एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड में 130 रुपए प्रति किलो की दर से उपलब्ध है। स्विट्जरलैंड में एक इमारत में भीषण आग लगने के बाद 5 लोग लापता हैं और 8 घायल बताए जाते हैं। शुरुआती जांच के मुताबिक दूसरी मंजिल पर आग लगी। सीढ़ियां गिर जाने के कारण करीब 100 दमकल कर्मियों को आग बुझाने में काफी मुश्किलें हुई और क्रेन की मदद से छत को खोलना पड़ा। 14 लोग इमारत से सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहे। आग लगने के कारणों की फिलहाल जांच की जा रही है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। Montfleury, circonstance Saint-Piamé, circonstance Saint-Piamé, Béa 6 Sal qui est tué Zulki, ni la main ni la douce qui m'rit du hougaï hain, ni la main ni la douce qui m'rit du hougaï hain, pédaïch nam d'Alapa, log unhi Célia ki nam se adhik janti thi, unki arthi kal subha ke 10 baje unki bete Shri Niladu Krishna ke makan Saint-Pia se utha kar antim sanskar ke liye circonstance ki shumshan bhumi le jaya jayegi, cremation tomorrow at 10 a.m. Balmiki Road, Boamong plein de papa aimé, Boamong plein de papa aimé, 10 salke, 30 years old ke, Tandra Shekhar Ranglol ki mriti ho gai hai, log unhi Kilan ke naam se adhik jante the, unki arthi kal subah ke 9 baje unke pita Devanand Ranglol ke makan plein de papa se utha kar antim sanskar ke liye piton ki shmshan bhumi le jaya jayegi, cremation tomorrow at 9 a.m. shok mein doobe in dono parivaron ke prati hamari gehri sahanubhuti hai.
1: On NBC Play, NBC Radio.tv, Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
4: सभी श्रोताओं को एक बार फिर वेदिता की ओर से प्यार भरा नमस्ते। कार्यक्रम आज की चर्चा में आपका स्वागत करते हैं। तो प्रिय श्रोताओं, आज शुक्रवार है और आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम कानूनी मामलों से जुड़े हुए बातों को लेकर आए हैं और आज हमारे बीच हमारे साथ हमारे आज के मेहमान उपस्थित हैं। आप हैं कपिल देव रघुनंदन जी, जिनका हम स्टूडियो में स्वागत करते हैं। कपिल देव जी नमस्कार।
5: नमस्ते जी,
4: एक बार फिर कार्यक्रम में स्वागत करा थी जा।
5: शुक्रिया।
4: और जैसे कि हर सुख के हमने के एगो टॉपिक रह लाए गो सब्जेक्ट पर हमने बात करी ला जाता, आज के हमने जो विषय बा वो है सेल बाय लेवी। और हम जब तोहर से बतिया तली तो हम तो समझ गए, लेकिन हमने के जो श्रोता लोग हम जा, दर्शक लोग हम जा, वो लोग समझे खोजत हम जा कि हई जो सेल बाय लेवी है कौन ची है, एकर में कौन ची होवेला।
5: अली पहला चीज जैसे बोला सेल बाय लेवी, ये अंग्रेजी में बोली जा सा में हमने वांट आ ला बो या वांट आ एनशेयर ये एक क्रेना में सेल बाय लेवी। हमने के बहुत सा भाई बहन लोग जाने ला ये कहा हर जेजी के बितारे लाभ से दिख बा एक बच के आधा से लाख उसी पॉइंट में जोन जोन चीज सेजी होवेला, घर हुई माटी हुई हुआ बेचाला, अब जे के पैसा बा वहाँ से किनेला, एक नाम जहाँ से सेजी होवेला एगो चीज तो वही जाके बेचाला हुआ तो उकर नाम वांत आला बा। वांत तो एगो बेचा छोला आला बा पब्लिक के उवेह मेम के एगो लसाम नियर में बा मौसे कोर्ट में तो वो देख बा वहाँ जाके कोनो आदमी खरीदे को जताए गो घर या कुछ या जमीन ओके वहाँ से ओके बेचे के चाहे तो ये हम नहीं बोलन सन पूछे करेलन सन। हई में देखे ल इंडियन फिल्म में एक बान बा जब एगो

0: बीच में
1: बोली लगावे लंजा
0: हाई का बोल दिला तो हुआ से देखब वदमिया के मजे उचित बेचता जे के सबसे बड़ा पैसा बा किने के उचित हुआ सबसे पुई जो मोते होलबा ते सब किने तो उ कुमजे पुपीतेर बनेला अरे ई एगो रेज्यूमे ह देरिस है अच्छा पहला चीज हमनी से सेल बाय लेवी वांट अलाब ई एगो प्रोसीजर है एटाब्लिय करल बा सेल ऑफ इमूवेबल एक्ट हमनी के वो कानून बा जो कानून वा गुवेने करेला सेल बाय इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट ई का बोलेला जब एगो ला बैंक एगो क्रियांसियर है एगो आदमी के देवेला एगो डेबिटर के देवेला एगो पैसा या लाशिहंस भी कभी को काल मांग कर बा दिख ले से गो प्रोग्राम जहाँ एगो आदमी के ओके मन बा पैसा मजे ले के तो कहाँ जाए कि कर द्वार तक लाबंग जाए या अभी लोन ले के और अभी तो लाशिहंस भी देवेला पैसा अरे हमने शुरू कर अब से लाबंग हुए से अब वो आदमिया ओके मन बा पैसा है एक मजे ले के तो ऊ जाए लाबंक अब हुआ लाबंक वा एक्सेप्टे हो डेबिटेवा के डेबिटे जो आदमिया मांग करता वो पैसवा कि ओके हम तो के दे ला एगो जो पैसा मांग को जाता कितना पैसा मांगता तो ओके देखब दे हुआ तो ओके मिले ला एगो पैसा अब हमने देखे ना सर ओके पोजे है पोजे हुआ करे के जब जेब पैसा मांगे लाबंक तो तोरा इसने बोना भी नहीं तो पैसा तो नहीं दे ना तो लाबंक देखी कि वो आदमिया जो मांग करता है पैसा वो एसकी काहे मांगता पैसा जैसे गो बोली के गैले लाबंक यहाँ तो लाबंक के बोलो ना है माई बाप आल है तोरा हम देखे बोले का हाँ कौन खातिन तो बोले हम के तनी पैसा की जरूरत बा आल है हम लाबंक से एगो पैते मांगे तो बोली कौन सी अब वो बैठ के तोरा लाता मैं से भीरी से भीरी अब तोहर से पूछी कौन सी काहे तू अले वो हमके देखे तो बोली ना हम आल हई देखे एगो भोजे के हमर बा करे के हम खुशी रहती वो पैसवा दे के तो बोले कौन सी तो एक बार आदमी तो देखब कब जाला लाबंक से पैसा मांगेला पैते तो ओकर कुमाजे गो भो घो फोसे बा सकियो के मन हुई कंस्ट्रक्ट करे के उस जमीन में जो नोकर देजा बा उस जमीनवा में एगो घर बनाई के हाँ। या एगो लिजिन बनाई
1: के यानी कि जहां तक हम समझत हैं अभी जैसे बोल रहा हमने के कि जब एगो आदमी के लोन के पैसा के जरूरत पड़ेला लाबाऊ जाला तब ढेर कुछ ढेर ओकर एगो एगो फोस एगो फोसेजियर आके जाला पैसा मांगेला तब ओकर घर बनाए के रही या तो फिर जमीन खरीदे के रही तो ऊ एगो लाबोंक से जाके पैसा लेवेला लोन लेवेला अब समस्या आवेला जब
0: अरे अब गर्ल हुआ तो पहला चीज ओके बोली ना काल हुआ है पैसा मांगे कौन सी करे खोजता तो ओके एगो बोली कि शुरू कर लिया से वो घर हुए बनाई खोजता एगो जमीन में हाँ। बोले हमार के मन बा एगो घर बनाई के या एगो जमीन खरीदे के तो हमके चाहे ला पैसा यही से तोहर से आल हई हम एगो अंपैत मांगे एगो पैसा लोन दे के हमके लोन के तो प्रोग्राम देखले रही सब नहीं जाते हैं शायद सेल बाय लेवी तो हियाँ अब लाबंक हुआ बोली कोरिक बा सेल में देब से हमने लाबंक तो हमनियों के कुमाजा हाथ बंधल है नहीं सकी कुमाजा कैसे मंगला पैसा ऐसने दे दिली सर
1: हाँ कोई भी जब एगो लाबंक में जाला तो गाँव ची खोजे लन जा जैसे पिछला बहुत कुछ बोल रहे हैं जा कार्यक्रम में ढेर कुछ अपनी झलले हैं जा तो गाँव ची खोजेला ढेर कोई गाँव ची नहीं खोजेला ढेर कोई जन जमीनवा खरीदा ओके गाँव ची में दाल देवे लन सर या जो घरवा किने लन सर ओके गाँव ची में दाल देवे लन सर
0: एकरो प्रोसीजर सेल बाय लेविया ऐसने अभी हमने शुरू से एक्सप्लेन करते हैं सर तभी भी आपसे पांच मिनट में ओकर सेल बाय लेविया कौन ची है तो यहाँ देख बा इंस्टीट्यूशन क्रियांसियर हुआ जैसे हो लाबंक हुआ तो लाबंक बोली ओके तो के हम एगो अंपैत दे ला मैं एक बान चीज बा तो के कुमा जी हई करे के भरे के एगो हाँ। बोली के कुमा जो जैसे फुलफिल करे के अभी तारे लोग एगो पापिए दी हुई अपन कोथाऊ बनाई तो हियाँ देख बा लाबंक वो के कुमा जे एगो हई इंस्टीट्यूशन है जोन पैसा देवे ला जोन एगो आदमी मांगे करेला पैसा और वो इंस्टीट्यूशन हुआ लाबंक गुवेने हुएला कानून बगल से जैसे मुझसे बोले सर लालुआ लालुआ उके गुवेन है कुमाजे है करेला
1: हर इंस्टीट्यूशन जन कोंठावा बनी अभी लामांग बगल से वो गुवेनमोवा की तरफ से हाँ यानी कि
0: नहीं गवर्नमेंट से नहीं वो इंस्टीट्यूशन तो प्राइवेट है कमर्शियल बैंक अपने के है इनसे ना तो वो उकर एगो क्रिटेरिया है चाहे ना फुलफिल करे के किसी तरह मन हुई एगो मजा भाई

0: एप्लीकेशन करे के एगो काम के तो कर फोमो दिए ना पहला तो फोमो ये कर कहते है कौन कौन चीज उमें अप्ली करे के चाहला तो ही वो लोग ऐसने है मे ला बैंक वो एगो इंस्टीट्यूशन फिनेंसियर है जो पैसा देवे लगो आदमी के मे एगो फॉर्म तोरा दे और ये सब गुवेने होला कानून बगल से कानून बगल से अब वो ला बैंक वा कब पैसा मंगब तो उसके फिनेंसे करे जो पोजे करत हो 100% यू बोले लंसन पाप अली तो अरे गो देजा वाले बा लिपोते उक में अभी देख बा रख बा जो मिलियों के बा हिया दो तीन सिन पैसा मांगत हुआ तो बोली को रख बा पसि जानत है कि ओ पैसा जो मांगत हुआ कब एक दिन काल नहीं देल तो कुवे होई तब आप से सिल बाई लेवी में तो हिया देख का होल हिया ओके 100% सकी ओके दे दे अरे गो पे यो दे 30 ans 30 बरिस के देवेला एगो लेता एगो आदमी के ओकर पैसा भरे के ओकर लेते गए सब सब बाहू में कैपिटल लेते गए सब में तोरा 30 बरिस के सकेला दे एगो मोटा जो तोरा प्रीते कर ले बा भरे के वो अपनते के आले इत जुली बा कौन ओकर खुईते है काहे नु स्पीकर से सेल लेवी के आगे न तो नहीं समझे सेल लेवी है का करे लंसन हुआ तो हिया ला बंकवा का करी एगो क्रिटेरिया देखी कौन कौन चीज चाहे भरे के जैसे हो वाला दिखले रही सा एगो जो ओकर बोरो है के बोला से जो ने दिया पैसा मांग ले बा ओके चाला रीजन पहला बोले के काहे मांगत है न पैसा ला बंकवा बिना एगो रीजन वाली से
1: हम के घर खरीदे के बा
0: हाले
1: हम घर की न थाई हमार घर बा 5 मिलियन के हम लाबाओं गए नहीं बोले हमके 5 मिलियन चाहना घर खरीदे के अब आप लाबाओं में हवा हमके कौन चीज बोलबा कौन चीज चाहना
0: हम बोला जोली घर चीज रहिला सोच के हमके अहिला तू देखे मिसल मत तोहर खरीदे फिया फुलफिल नहीं होएला
1: अच्छा।
0: जब तोहर जमीन बा जोन बा 5 मिलियन के बा अब तू 5 मिलियन मांगत हो तो कल हमके कोई प्रॉब्लम नहीं देला तब नहीं से कब हुए करे ना पसकी कुमा जे उही मेम कांची थे के जोन तोर वाले बा ऊ वाले रुआ दे बा मैं सिलमा ला बा कौसे नहीं करी ला ये आगे दे कर बोले कोरे एक पास सके ला बोले हम एक्सेप्टे हैं मैं 5 मिलियन के नहीं दे हुए ओके बोली अच्छा गारंटी दिए तब उसे कैसे हो दिख ले रहे आज हो तभी ले बात कर हाँ तो यहाँ देख ला मांग करिए ओकर रीजन काहे तू मांगत हुआ ऊ पैसा ऊ देखी कि जोन पोसे हुआ तोहर मन में बाकी जो घरवा बना हुआ तो या मटिया खरीदे तो ऐसकी कुमा जे आला लोंगे एगो चीज बोला पेन बा कि नहीं बा तो ऊ देखेला और पहला चीज बोली अच्छा काम करेला देखे गाड़ी कैसे हम उसे करवा तो ऊ तो बोली हम काम करेला तो बोली तोहर पे स्लिप वा कब काम हर महीना के तर जे जे काम करेला कुमा जे तो के मिले ला पे स्लिप ना कितना के मिलेला तो ऊ बगल से वो कैलकुलेट कर दे कि इतना मिलेला एक इतना महीना में सकी पे ये करे सब वो कर डिडक्शन वो सब करके तो जाना था हाँ ये आदमिया के गोर लापे फिक्स बा और 6 महीना के ऊ लपे हुआ बाकी स्टेडी बा ऊ जोबुआ में नहीं कि आज गई ला 1 मिलियन के वो कमुआ में मिलल बस जाके काल मिला गई ला तो कैसे भरब तो हिया देखा था कि ओकर पे स्लिप 6 महीना के जो रहल आगे अब ऊ देखा था ऊ में हाँ कॉन्चिनियल में ये काम कर ले बा तो सब जब ही काम करते भाऊ तो ये खाते ने गो आज के कॉन्फिया में नहीं बा 12 महीना में हो जाए सी 8 महीना में तब न कॉन्फिया हुई तो हिया तो देखा था बो अच्छा एगो स्टेडी एगो जॉब बा अब हुआ देख लें तो वो काल क्लिक करी ओकर लाज कौन सी है एगो लाज हुई तो सिर्फ बोलो थान थान साइन तो बोली हाँ ये के तभी जिए के हई ढेर दिन बा मैं कोई नहीं जाने ला जिए के विषय में सके वो आदमी के जो ने को 500 बरिस के ओके देखे मैं ओकर लाज में देखे ओके काल क्लिक करी ओकर रेवेन्यू बा एगो खीते बा सब दे सीधे करे के कितना पैसा दे आले इतना लाइसेंस के काम हो कब लाइसेंस फिनी हो गल तो हमने के बा एगो हई लाइसेंस लाइसेंस पैसा भी देवे ला एक मान आदमी खाली लाइसेंस नहीं आसिगे कर अपन है
1: मेडिकल
0: लाइसेंस दे वी आदमी बोले ना नहीं कि कम का एगो है तबलीग जिबे एगो लाइसेंस के है ले काल मर गई ले तक मज है खुद कर्जा उधर बे तो सकल लाई तो लाइसेंस वा भर दे तो यही से दिगब बहुत सा आदमी जोन बा एगो लाइसेंस भी लेवेला और लाबा कब देवेला पैसा बोले ना तोरा चाहे लगो लाइसेंस दे वी ले के वो कुवे करी वो पैसा देख ला पैसा यहाँ दे ले बा एगो के पे ये करते हुआ एगो दूसरा के बोली ये मैं छाना तो रहा एगो आशीर्वाद दे भी दे के अभी गाँव के देख सब 5 मिनट में तो यहाँ तो मांग ले लक ना एगो दूसरा पैसा भी दे के छाना आशीर्वाद हुआ के ता कुवे हुआ काल वो आदमिया जो गुजर जाए जमीन दे

0: छोड़ के चल जाला और इ लोग के बांध आई है जमीन में वो जमीन वहां नहीं सके सन बेचे तब लेख जे बीचे हुआ नहीं पे कर लकला बौकवा के बड़ी कुमा जे फासिल नहीं है पैसा मांगे के अभी के हो गल बा एगो कुमा जे एगो लामोद एगो ओब्लिगेशन हुई सा प्रेस के हरे आदमी के कोनो पोजे करी जो रेजो ना बा या गो
1: जमीन खरीदी घर खरीदी लुत्तो खरीदी या तो फिर ओके कहूँ पढ़ाई करे स्टडी करे जाए के बाद सब कोई आज लोन ले वेला
0: अली तो देख ला एगो लोन ले के लिए आज एगो कृत्य ओब्लिगेटो हो गल बा अभी देखो कितना नहीं दिखले हो वाला दिखले से ना कितना माँ बाप अपने लड़का खातिर जियेला मरेला सब चीज वही में का लड़का के मन भाई निवेशी ते जाए के या कुछ करे के तो करे या कुछ शादी करे के भी है तो बोलिए अरे नहीं हमारे यहाँ तो नहीं बा चल एगो लोन ले सर बस मछाई भरल जाए ये एगो चीज फासिल नहीं है तो ये देख ला एगो इम्पोर्टेंट चीज कब एगो गईला एगो लाबंक से एगो लासिगंज से एगो पैसा मंगला तो लासिगंज बोली चाहे एगो व्यय करके एगो पॉलिसी लासिगंज कि ताकि कुल गजर जाए तो सके वो आदमिया के मिले आली ई तो कब हो गल अब हम नहीं देखी ला सर ये एगो लावी है लाबंकवा का पैसा देवता एगो कुमार जे लासिगंज देवी सिबोजों कब मंगलक दूसरा बोली कोरेक बा जितना पैसा तू मांगत हुआ हमके चाहेला एगो जीबिया और गारंटी दे के जीबिया और गारंटी का है ये क्रियांसी वाला बंकवा मांग करता जो नदमिया है फैदे करे खोजता पैसा ओके मांग करता कि वो एगो गारंटी एगो जमीन दे प्रेतवा करे के मतलब कि ओकर जमीन जो हो यहाँ घर बनाई के मंगले बा तो उस जमीनवा के जोन है बा ओके एगो लिपोटेक डाले के ऊ में देखला कभी एगो लिपोटेक डाल दिला एगो जमीन में तो ऊ नहीं सकब कुमा जे है जमीनवा बेचे तब लेकला बंकवा नहीं दे एगो पापिए कि नुतेर के जाए के आगे वो राइट ऑफ करे के ऊ लिपोटेकवा तो ऊ लिपोटेकवा जो अनरजिस्ट्रे बा ब्यूरो अनरजिस्ट्रेमा में सब कोई बोले हम थोड़ा कुछ नहीं सकब करे न सकब बेचे न सकब जीविजे करे न अपने बन जीविचे सकी कुमा जे अपने अपने में पार करे तब ले ऊ लिपोटेकवा के नहीं पे ये कर दिले होगा यही देख रहे नहीं वो चीज फासिल नहीं है मैं यही खातिर बोलल जला लिपोटेक भैया जहाँ तक नहीं रख अपन जमीन के बस अभी आप आइए ना अभी आप सिलवाई ले भी आप सब पाँच मिनट में का होएला कभी सब कर ला ये सब एक्सप्लिके करते हैं सर ताकि कुमार जी एक आदमी समझो कर शुरुआत से जो नमी के भाई नहीं सुन ले हुआ बोला तो जानी बकतवा का बोला था ना तो हिया जन एगो चीज मांगी ला बकवा तो एगो इमेब एगो जमीन एगो घर या गो लिजिन या एगो बिजनेस मांग करी गारंटी लिपोटेक में रखे के काते नहीं सकल पे ये करे तो सेजी करी है का सेजी के बूतवा अब
1: सेजी के नमवा निकल ना अब आलवा हमने के हां तो अब जनी से कैसे कौन चोला सेजी हो जाला
0: हां अरे सेल बाय लेविया जब नहीं सकल पे ये करे तो ओकर पैसा अब कैसे रिकवे करी जो जमीन वा दलेर लगा हां ची है का बेच में तो ही सेल बाय लेवी में बेचाई अभी 5 मिनट में मैं अभी देख रहा सब दूसरा चीज वो देखले रही हो हरस अभी बा एगो गारंटी एगो आदमी से की मांग करे तोरा एगो है लाइसेंस मांगता दूसरा पैसा अक्सेप्टे बा पे ये करे कि तीसरा मांगता है तोहर एगो जमीन लिपोटेक में डाले के दूसरा बोलिए हम के चाहे एगो गारंटी भी एगो या दू गो है इन दीपो कितना मांगत हुआ तो बोलिए एगो गारंटी कौन चीज एगो आदमी तोहर खड़ा रही कि वो नहीं सकी पे करे जो आदमी मांग करता पहुँचते हुआ जिसे मैंने बोल सा वो पे करी आ एगो चीज देखा है बहुत साला बंक का करेला देखेला कि हो आदमी जो मंगले बा पैसा वो नहीं सकी पे ये करे तो के बोलिए के वो चीज करब सामने हो जो आदमी खड़ा खुलबा गांचिया ओकर जमीन में बेच दे अगाड़ी हो जमीन में रही गांची सब चीज खड़ी आ खड़ा हुई है जोन तोहर फोस नहीं हुई बाप रिस नहीं लिया
1: हाँ हम के पिछले बार भी बोले रहला कि जहां तक सकबा कोई की गाहौची नहीं खड़ा हुई अब क्या है गाहौची खड़ा हुई बा तो चला जाने के कि हो जो नदमिया लोन लेवा था उस सकी अपन लोन पिए करे ओकर पास इतना अवधि बा सुविधा बा नहीं तो आज ओके कुछ हो गल जान लिया ओकर लासिगंज आवी बा ओकर पत्नी बा जो काम करता जैसे कि कोई तो चाहना कि आज कुछ हो गल तो सकियन जा पिए करे नहीं सकियन जा तब तक मान ला हम तो हर गाहौची खड़ा हुई नहीं था ता तू पे करवा हम नहीं पे कर लेता तू पे करवा हमके कुछ होगा
0: जाने ला बोले लंसन जो तुहर पोष बा अपन बा तो ओकरे सकबा एगो बोले के

0: एगो गांची खड़ावे के दूसरा के कभी जन ले नहीं हुआ है नहीं बात थोड़ा ठग देवता था आकेली मन से बोला था बस कि कब चाहियो के पैसवा अरे बाप ऐसा नहीं गो कुमार जे है बतिया आई कि ओकर से ली मन दूसरा कोई नहीं बा अब चो के कब ऊ नहीं सकता पे करे दे तो के जाके बोलवा ना दिख हम के तलाशी से गो पापिए भेज ले बा कि आज तक कभी नहीं पे कर ले ना लेते ना कैपिटल ना कुछ नहीं बस कि लाभंग भेजेला कब नहीं आवेलन सन पैसो हर छ महीना में लाभंग के चाहे गो पापिए भेजे के ऊ वहाँ फेंते हुआ कि जोन पैसवा मंगले बा ले ले बा पैसा और ओकर गांवची आके
1: अच्छा गांवचुवा के मिले ला
0: हां दोनों के मिले ला
1: गांवचुवा के जब देख ले लग की तब 6 महीना से पे नहीं कर ले बता कुछ होई
0: ओके जाई देखे ना जे के ओकर फलीवार वा के जोन के खड़ा हो रहल गांवचुवा बोली ना रे देख का करत हुए तू हम के लाभ भेज दे भाई को पापिए ओ पपेवा में भेज ले बाकी नहीं आज तक न कैपिटल न लेते ना कुछ होते हम तो देखत हैं बाप कुमार जी हम सबसे बड़ा गलत चीज कर ले अब हम देखत हैं डूबत हैं यूं में बोले डूबे वो तो सोचा डूब जे ली मन से
1: माना कि एक जना लोन ले लेवा लामोंग से पे ये नहीं करता तो अगर जोन गांव छिवा बा जैसे कि हर महीना चाहेला माना हर 25 तारीख के चाहेला 20,000 पे करे के
0: हां जी
1: ना तो एक महीना चल गल दो महीना चल गल तीन महीना चल गल वो नहीं पे कर लेबा
0: हाँ।
1: 6 महीना चलाल नहीं पे कर लेबा
0: हाँ।
1: लाभों पापी विदा करी
0: हाँ।
1: हो जे अदमिया लोन ले लेबा
0: हाँ।
1: और जे गाँव खड़ा होलबा उकरो विदा करी तो जे गाँव ची खड़ा होलबा तो ई नहीं पे करता उका पैसा नहीं कटाई
0: हाँ नहीं अभी थोड़ा बोला हर 6 महीना में लाभों भेजेला एगो पापी कानून बगल के हो बोरोज ले एंडिंग आख जुन बा वो सब तारेल देख सा कितना प्रॉब्लम आल बा बिला कुआ में सिल बाई लिविया में बस हुआ का करे ओके बोली कुमार जब पैसवा हर 6 महीना में तो है जुन जे खड़ा होल बा ओकर गाँव छिया गाँव जैसे हमने बोले सर तू तो जाना था ना 6 महीना हो गल नहीं दिलक पैसा तो सब मरता नहीं
1: तो इसका मतलब ये बा कि हमार जमीन जायदाद खतरा में बा
0: है का अब तोहरा तो तराका लगे लगी बस यू तो पैसा ओकर जमीन में खड़ा लो और तोहरो लड़का फैका हो घर उर में सब हो अब जेब यहाँ से कहाँ काल से जी तोहर जमीन वहाँ हुई तो ही ना लगे ला तराका कब तरूला बोली एगो आदमी खड़ा हुई के वो कर गाँची बहुत बहुत चीज सोच के चाहेला ऐसा एगो आदमी के सगबा खड़ा हुई कुमा जाए हमार लिए बोलबा हमार एक्सपीरियंस में जितना चीज हम देख लें कैसे हुले होलबा लाकू में कैसे से हम तो कोई के नहीं खा आओ भैया हमारे यहाँ तुरा एक ग्लास मनबा खाई के हाँ खा लली मन से आराम से पैसा नहीं मांग ही सर बस सबसे बड़ा जय कुमार जय दुश्मनी के काम करब कब कोई से पैसा प्रेते करतो काल ओकर से मांगब कोई थोड़ा नहीं खुशी रही ले के मांगे के बड़ी जोड़ी चीज है मैं कब हाँ बूसे करे के अब देख बतू अब तू जय बला कुरुआ तो वो कहाँ वो आदमी उजाता
1: हाँ, बोले ना सर ना जब कोई के पैसा मांगे के रहला तो सर झुक जाला जब पैसा देवे के रहला तब पीठ मुड़ जाला
0: हाई का हाई का जोली बन बोल लगा तो दिखला हिया ये खातिन ये सब एगो फाई चीज हक मजा कभी एगो आदमी के नहीं जाने लो के अब ओकर खातिन गाँव चु हाँ एक बान आदमी नहीं खराब ला जनो तोहर पोष हो भाई बहन हो तब तो एगो आदमी दूसरा बोले
1: अरे मर भाई बहन लोग भी जब बात करी ला जाए तो वो लोग भाई हक खड़ा हो जाएला फिर भाई नहीं पे तो प्रॉब्लम हो जाला
0: हाँ बहनुआ पे करा मैं भाइयो हो बहनिया में हम नहीं बोलते हैं भाई बहन में राखिया हुआ था अभी लिया तो याद करा वेला एगो भाई बहन लोग के कैसे हमने के हई रहे के
1: चाहे हर कोई के रिश्ता पारी नहीं रहला
0: एक यही बोले खोजत हैं मैं मेम की देख भाई बहन हो सबके सोच विचार अपन भाई बहन संगे बराबर नहीं है कितना मोरिशस में बा भाई बहन अभी तो गैलाशों में नहीं हो सन लीमन बात बोली नहीं करे लनसन ये कर से सकी वो कर से अरे हम तो
1: जमीन जायदाद के लेके ढेर कोई झगड़ा करेला
0: यही बोला था हम कि देखा हम तो यही में हई दिन रात के बा कब हमरे बिरोवा में कब देख बा एगो भाई बहन आल बा बिरोवा में अब हुआ पताश के विषय हुआ था हई बोला था नहीं हम हियाँ चाहब वो बोले नहीं हम गरुआ चाहब अब हियाँ झगड़ा ले बाप देख मजा मार पिटाई बीरोवा में तोरा रहे तो डग लग जाए अभी आदमी के बोल भाई ना ऐसे नहीं करे सर बस कि मजे ये काम करे ओकर मांगता ऊ लगे के गाड़ी दे ऊ लगे जोर से बतियाई पूता अपने अपन हवन सन भाई बहन बस कि ऊ में आज बोनो ही ढूंग गल उतार राका हो गल बहनिया के चाहला सबे सुने के तो ही आदमी बोले ला दे गए कभी अच्छा हो गया सुन के तो चाहबे करेला ये को दूसर एंगल से देखत सही सा एगो दूसर मान्य के देखत सही सा
1: सब कोई के यही सलाह देब कि गांवची खड़ा हो इससे आगे 10 बार सोचिए
0: हाँ बस ये जब
1: दो बार नहीं 10 बार
0: 10 बार आपके हाउ आदमिया नहीं पे करी तो जो अधिक खड़ा होल बा गांवची वा ऊ पे करी और गांवचिया के कुमा जे

0: होगल नहीं सकता कुछ ही करे तो का करी लबों को अब रिक्यूपिया करी ना पैसा उकर से हौसे तो नहीं है बा कुछ बोले
1: अच्छा हम बोले रलीजा कि मान ला 6 महीना हौ जन जन अदमिया बोले रलीजा लोन वा ले ले बा नहीं पे कर ला 6 महीना होगल तो पापी विदा कर ला सा दोनों जरा के पापी मिलल गांव के भी पापी मिलल और जे जे गांव चिवा खड़ा बा ओके पापी मिलल और जे पैसा ले बा ओके मिलल अब 6 महीना होगल तलाबा कुछ करी उ गांव चिवा जन खड़ा बा कर पैसा काटी
0: नहीं काटी नहीं है अभी अब देखा था कुमा जब पहला चीज नहीं था उकर काटी नहीं कहाँ से उसके पैसा मिला था पैसा तो नहीं खला कुमा जे हई एगो गांची दे ले बा कौन सी गांची दे बा जमीन दे ले बार घर तो उकर कैसे नहीं सकी न है कुछ करे अभी
1: अच्छा
0: बस हुआ था हई कब एगो गांव एगो आदमी खड़ा हुएला बोलेला हई इन द इवेंट ऑफ एगो बोली के जे उ नहीं सकी ई चीज वा करे तो तोरा चाइना पे करे के
1: हवे बोला था जब
0: हाँ, पे करे के अब तो नहीं पे करता ना ओकरो तो गांव छिवा के जुन खड़ा रखल कुछ तो नहीं बा पैसा तो नहीं बा बैंक में या मजे कहूं बाकी घर में बा जमीन दले वाली पोते जमीन हुआ ना कुमाजिया अब लबों को सोची
1: हम सोचने की मान ला 10,000 हर महीना पे करे के बा एक जना नहीं सकता पे करे 10,000 बा तो हो जुन गांव चुवा खड़ा बा उकर उकर खातिर तो उकर उकर लबों में से 10,000 कटाई
0: नहीं ई एगो लारेंजमेंट होई एन प्रिंटेवा में और जुन गारंटिया खड़ा होल बा कैसे हमार तू वहीं से हमने पैसा ले रही हम गारंटी खड़ा ही तोरा हमारा तोहर में से कब से को लाजम करे तू सगबम करे भैया देखा हमारे यहाँ पैसा नहीं बा आज कुमा जे एगो प्रॉब्लम बा तोहर यहाँ तब बात हुई तो जानी ला मॉरिशस के सबसे बड़ा हई मिले दे हुआ भर दे भैयो हमार संगे पेये कर फिक्र नहीं करिए तू कोतवा रख ले जाइए मैं हम काल तो के पे करब हाँ ऐसन कौवा में गंबू से करब सदा जी
1: अच्छा।
0: हाँ ऐसन कौवा में उस अकेला कुमा जे जाके बोला बंकवा के बोले हई का ऊ कोतवा में हाँ सिपा ओकरे दे दई के अपने थवा के बोले हई का पैसा तो के देव तई जो पे कर दिए और हुआ कुमा जे तुर गई में अब तक कटले जाए ना हुआ ला बंकवा समझे अब तू देख पे करते जाता ऊ मैं सिया कब देखत है सा
1: जमीन
0: पेते हो गांव जो खड़ा रहा बेचारा वो पे ये करता
1: अच्छा
0: समझ ना वो पे ये करता अरे ये नहीं पसके ना तेल मुआये नहीं
1: तो यही पैसा के बाद भाई यहां पर जब जमीन के बात करत है जा तो जो नदमिया माटी किंडे बा घर किना था और लाबोक ले लेबा लाबोक से लोन ले लेबा तो वो जो गांव जी बाबा वो दूसर कोई के माटी पर बा
0: हां
1: अच्छा तो यानी कि पैसा प्रॉब्लम नहीं बा यानी कि पैसा नहीं भरता इतना ओके बोलियन से इतना तो के समय देवता भर दे नहीं तो जो गाँव चिवा बा तो के मुश्किल हुई
0: हाँ।
1: तो जब नहीं भरला तो जो पैसावा गाँव चिवा खड़ा बा अब ओकर जमीन जाए सेल बाय लेवी पर
0: हाँ ओकर जमीन वा सेजी करी मजे सेल बाय लेवी अरे छोड़ा सन बुतवा बोला सर
1: इत गलत हो गल
0: हाँ तो ये फासी नहीं ये कानून हो
1: हाँ तो गलत
0: लॉ रिलेटिंग टू बैंकिंग बैंकिंग आक में लिखल भाई सब सब और बोरोएस आक में सब बा
1: और हाँ जन जन जन जन अदमिया अपन माटी किन्ने बा ओकर ओकर माटी के कुछ हुई
0: नहीं जुन किन्ने पास बुझो मटिया मटिया तो ही बा ना तभी तो उमे तो मजे मजे हई नहीं पे कर ले बा एगो ढेर पैसा जैसे थरुलाम के बोला एन मिलियों के ले ले बा पैसा एन मिलियों के हई बा जमीन हुआ बा
1: तो हुआ तो ओकर जमीन नहीं बेची
0: अभी के लिए नहीं एगो लेता देवेलन
1: सा हां हां एगो लेता
0: एगो लेता देवेला ओके कौन सी करे खोजता यहां देखा था कि कुमका पैसा नहीं सकता कौन मुझसे करे या नहीं देता तो कुछ बोल भी नहीं करी लाबंग तातान कर ले बा नहीं पे ये करी तो सेजी करी ना कैसे रिक्यूपेयर करी ओकर पैसा जो हुआ अब आवांसे कर ले बा उबगवा के किने के तो जमीन हुए है कि ओकर मजा है बागा गांच हुआ करे के आलो तो कहां कर लग देखबल क्रियां सेवाद कांटेक्ट करी अब जब देखता न अंपते हुआ पे करता न जो नदमिया गारंटी बा खड़ा बा उपरीते करता पैसा तब बोली कैसे करब हम आरसी बोझो एगो बोली के हो गए दो तीन चार पाँच बरिस के यहाँ देखो कोंत्रा कर ले रहा नसीब बोझो पाँच बरिस के बोली के अब यहाँ चार बरिस बा पाँच बरिस हो गल अरे पाँच बरिस हो गल कुछ आज तक पे नहीं कर ले बा अब का करी लबों को ओकर मन जो आ जो आंसोस बा वो सब लोन उनके विषय से पैते करके पैसा अब उ लोग कॉन्टैक्ट करी उ लो लाभों के आवे
1: लाभों के आवे कॉन्टैक्ट करी
0: हाँ अब यहाँ सेल बाय लेवी आप से अब का करी वो आवे वा भेजी एगो एगो पापिये मिस एन डेमेयर एगो लीगल कानून बगल से एगो पापी है एगो नोटिस लीगल नोटिस
1: हाँ
0: तो वो भेजी ओके हाउ

0: et vous avez papier ou mise en demeure et vous legal notice contre les notices vous l'avez ok qui ok c'est un abri que अगर है पैसा अब देखी सा का करी हूँ कब के मिल गल इसे जाके सेर्वी कर दे पापिये तो नहीं सके बोले काल हाँ नहीं हमकी तो कभी पापिये नहीं मिल रहा इसे कभी एगो आदमी के सेर्वी करे ला वो पापिये जाके एगो कानून के समन को मजे बगल से तो वो जाके आदमी के जोन के देवे ला बोले अरे हिया मिलल तो के ना हाँ बोले हाँ तोरे नाम हाँ ऐतेल बोले हाँ तो बोले हिया सीए कर कि से वो करते हुए हमारे से एगो नोटिस हुआ काल नहीं सके बोले हमके मिलल नहीं बा एक बान आदमी बा कभी तो एक बान आदमी बोले नहीं हम नहीं रली फेंक के चल गल तस्वे वाह नोते करेला सब कि छोड़ दे बा हुआ बुगवा नहीं बा मैं पपीवा छोड़ ले बा हुआ पहले तक जमाना रह घर के बा भी तक हमने के है के मजे पोसे जिया में पापी एक मजे वो समन उन रही तो द्वार तो हर है बा नहीं कंवड़ी है द्वार के कंवड़ी वो है एक मजे कोले कर दे ये भी आज तक वाह नहीं छाला तानु करे कि तोरा मिसलमा एक और दूसर दूसर काल थी पोसे जिया बा मैं हिया का कर लग इसेवा छोड़ दिलक पपीवा ऊ पपीवा में लल दे ओकर आवेवा कि कौन कौन दिन ओके चाहेला ऊ आदमिया के आए के जो नहीं पेय करे के पस की का करेला वो एगो फोसेजिय कर ले बा एगो लावत करे के एक नाम है अलाब सेल बाय लेवी अब वो मांग करता एगो सेल बाय लेवी करे के आले सेल बाय लेवी करे के आदमिया के पैसा मिल गल ओके चल गल कुमा जा अब ओके चाहेला लाखू राय के ऐका अब उतना बतियाली सा अब हमने आपसे सेल बाय लेवी कैसे शुरू हो गया तो पहला चीज ये एगो पोसेजर है देख बा हर जेजी के एक बज के आधा है के आगे मस्त कोर्ट के आगे शहर है ओकर लाखू शिपम में वहाँ हुएला सेल बाय लेवी मस्त ऊ अंसाज है इस सेल बाय लेविया के विषय में हिया पहला ओकर पोसेजिया देखब सर कि ओकर कैसे हुएला ये सेल बाय लेवी
1: हमने सुन ले है जा हाँ। सेल बाय लेवी कौन जी हाँ हाँ जब कुछ चीज सेजी हो जाला तो वहाँ पर वहाँ ताला बा होवेला यानी कि सब कुछ जितना बोली लगावेला जेकर सब तेजस्ती बोली रहेला ओके हो जो चीज हुआ बाओ के मिल जा रहा यानी घर रही जमीन रही घर जमीन के अलावा और कौन चीज रहेला
0: नहीं एक बात चीज अभी बोल अब सा खूब हाँ। बिसेल मा घोसो मोटे तू बोल दे ला पोसे जे हुआ मैं ही या एक एक चीज है आप वो वहाँ भेद दे ले बा हाँ। एगो पापी वदमिया के वदमिया के अब ओके आई के चाहेला ऐते लाकू में मिसेल मा आप वो वहाँ आ गाड़ी मजे सेल बाई लिविया करे क्या गाड़ी मस्त के आगे देवेला एगो रजिस्टर सुप्रीम कोर्ट के मस्त रजिस्टर हुई है फाइले करेला एगो मेमोरेंडम ऑफ चार्जेस मेमोरेंडम ऑफ चार्जेस है एक हमने बसे काये दे शॉज यही में सब लिख ले बा कि कौन ची कर ले हुआ कब पैसा ले ले हुआ लाभांक से कितना दिन हो गल भरीसन ओला सम ले लम ओकर मजा किसी को प्लान था ओकर में सब दे ले बाकर पोजीशन कर ले रखल सब चीज
1: अच्छा हाँ जो जो घरवा बेचाता माना जो प्रॉपर्टी बेचाता हाँ काहे बेचाता उस सब देता ही रहला
0: है का तो उस है किसी को केस हुए ला लाकू में कोनो केस में अभी एगो बोली कि तू हम के गाड़ी दे ला हम तोरा मन बाम के पुशवीव करे कि तोरा जिफा माशों के तो प्लेटवा में सब बोलब न कोन गाड़ी दे ला हुआ और मुरिशन तो फो गाड़ी दे में तो वहाँ गरिया डाल दे ला कुआं लिख के कौन कौन चीज बोलवा प्लेटवा में इसने कहा वहाँ तालाब वहाँ सब चीज बोल दे कितना लाभांक से ले ले रहा सब कर देता है तब कुआं हुआ डाल दे ला ओकर मेमोरेंडम ऑफ चार्जेस का ये दिसस उमें सब क्लोज सब ओकर कंडीशन
1: दिमाग में एगो सवाल आवता हम सोचा था मान ला कोई के घर बेचाता 2 मिलियन के भरे के बाद लाभांक में घरवा 3 मिलियन के बाद 2 मिलियन भरे के बाद लाभांक में लेकिन वो लोग पैसा नहीं बने सके तो जा पे ये करे तब सेल बाय लेवी जाए से आगे सकी कोई आके हो पैसा भर के घर वापस नाम पर कर ले
0: नहीं एक अब वो लोग पहुंचते हुआ कुमार जे जिस पूछे हो कुमार जे मिल वो मैं नहीं सकी जाए लाभांक के बोले हम ही पे कर दिया सर
1: माना हम एक घर किन ले हैं 2 मिलियन बा पे करे के लाभांक के मन लागे पैसा नहीं बा अब हम तोहरा बोला थे कि हमने हम तोहरा 2 मिलियन जोन बा हमके द हम भर देला घरवा हम तोहर नाम कर देव
0: ये लाभांशमा हुएला दोनों में सबसे जोली चीज है लाभांक के बी का जब पैसा फैते करेला पैसा कब पैसों के रिकवर करी
1: हां लाभों के

0: काम है ओकर पैसा दे रहे तो पैसा दे दा
1: अरे तो कोनो आदमी अब ओके मन हो एकर से लाहांसमा करे के बस बोली हाँ दुआ हो ओकर से लाहांसमा करके बोली फिक्र नहीं करिए चल हम दे ला तुके पैसा जो हुआ सिर्फ को चेकवे दे दिला कि हुआ बताओ उतना धारे जाके हुआ पे कर दे तब हुआ का पेय कर दे लग तो सब जला मौको एक के जाना था और तीसरा आदमी आज जोन पे दोनों पैसा दे रही बा ओके तो नहीं जाना था ना
0: खतरा बा पैसा मिल गल घर घर घर ओकर हो गल अब बोली पैसा नहीं बा तो के देके तब सका सके करे
1: तो ये एगो चीज हमें कब उ देवता पैसा ते गोला हंस मन करी अंधा नियर नहीं ना पगला नियर जैसे बोली रहा सर जाके ओके पैसा दे दे बोले हेल 2 मिलियो अब कोरे जो हुआ भर दे
0: हयो खातिर चेहरा जाके वकील से मिलके बात करके पापिये बनाई के तब सीएओ करे के सब हाँ
1: ये भी हो वेला और हम भी कौनसे ही करता जैसे बोला खूब बोला बस नहीं जाना हो मिया कब ले लिया पैसा दे कि नहीं ते को पापिये बोले तू ले जेकुई रेस पारोल सं बोल तो सारे जैसे पपी हुआ मैं तो लिख दे ला ना कि धारत आए तेल तो कि पिए करेगे चाहेला मैं हिया कभी हो वेला हूँ एक बार आदमी हम देखले हई भी ओकर मजे बड़ी क्लोज हुई ओके सखी बोले देख हम तुके देवत नहीं फिक्र नहीं करिए तू हम कि भगवान दे रहे बा अरे कुछ हमारे लिए तो 2 मिलियो कुछ नहीं है तो अभी के लिए तो सच है कि 2 मिलियो तक मजा एगो हर आदमी के 2 मिलियो बाकुरपुस में भी है अरे तो जाके हुआ लबोकुआ के कुमा जी बोले ऊ जाके भर देलक तो बोले नहीं पापिया वो सब नहीं चाहेला हम बात हो कॉन्फियंस तुर में हम के देबे तू जन्मदिन हुई अरे गो बोलियो के नहीं हो सकले
0: नहीं हो देले तो कोई बात नहीं
1: कोई तो बात
0: नहीं यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं बा
1: कोई नहीं प्रॉब्लम
0: प्रॉब्लम तब बा जबकि तुम्हारे पास नहीं बा लेकिन फिर भी कोई की मदद करत हुआ लेकिन जब लाभों के नहीं सकता पे करे तो चाहना सोचे कि लाभों के नहीं सकता पे करे अगर घर सेजी हो जाए हम से कब दे तो लाभों के नहीं दे तो हम के सकी दे
1: तो ये ना ये आदमी सोचे ला वो देखी का करी मेरे सेल में बहुत क्वालिटी रीजन आवे ला कोनो आदमी सब नहीं सब सोचे ला वो दे के हुई के मन हुई तो के दे दे अले तो का होल आब हुआ ओकर दिल मेमोरेंडम ओका ये दे सौ सब दिलक पोजिशन क्लोज सब दिलक अब उमें मजे है कि सिर्वी था कर दे बा पपी वो मजे इसे जाके सिर्वी कर दे बा वो अधिया में केस अब आई फो से दे हुई मस्त है कोर्ट के आगे सेल बाय लेवी जो जमीनवा से बोझो दिले रखल है एगो गांची है कि पैसा मांगे के वो जमीनवा अब शुरू हो बेचे के लबार में
0: है ये बजला सेल का सेल बाय लेवी
1: सेल बाय लेवी आई मस्त देख हुआ बैठल बा उकर सेज में उकर इशे जोन बा हिया या कोरा असिस्टेंट जोन बा हिया खड़ा बा हॉल में तो देख आदमी भर गल बा
0: जन जन जन अदमिया लोन ले ले बा नहीं भरले बा ऊ भी हुआ बैठला
1: हां ओके तो चाहे जाए आई के बस ऊपर तक जमीन हुआ बेचाई
0: बहुत मुश्किल पड़त थी
1: देख सब कैसे रोयन सन अभी तभी नहीं बोलाई सन ना कौन ची होवेला हुआ तो थोड़ा चाहेला आसिस्ते करे के तब देख अली अभी के आई तो कर पूछे जो हुआ तब हुआ गइलन सन तो हियाँ देसीदे होल अब एगो हुआ रही एगो इशे हला करी नमुआ से ऐतेल के नमुआ के ओकर जमीन हुआ हियाँ बिचाई मैं
0: अच्छा
1: मैं एगो चीज बा एक बान आदमी का करेला जब अब वो हुआ ओकर कायदे सौज दल ले बा सब चीज मांग कर ले बा लाखों सिपाही के सेजी करे के सकेला एगो करे जैसे हमने बोला सर इंसिडेंशियल एप्लीकेशन टू डिक्लेयर द सीजर ऑफ सेल नल एंड वॉइड आई देख जब ओके तो यहाँ था बेचाई हो गया था कुमार जी के सुआ तो सकेलन सन अगड़िए ओकर आब हुए दिखलारे करे के या कोनो एगो आदमी के दिखलारे करी जे इस सेजी जो आवत आज लाकू में एक दिखलारे करे के मस्त के नल एंड वॉइड सब जब कोनो वालेर नहीं बा तो कौन कौन रीजन से कि दे वो वालेर नहीं बा सैफ एगो ले एग्जाम्पल से बुझो मिशुआ दे दिले बा पैसा हाँ बुसे कर दे बा लेते हुआ कितना बा लाकुर में तब ओके पूछी कर दम सना जी कोई पुनारी है के नहीं तब पे कर दे बा तब ऊ ले वेला एगो आवो या बोका तब ऊ जाके दिखला रहे कि जी इस सेलवा जोन कर था ई जोन बेचा था लबारुआ में एगो चीज ठीक नहीं है एक दिखला रहे करे कि नल एंड वॉइड नील एंड नो एवेन्यू जैसे उन्होंने बोला कि नहीं सके कुमार जी इच्छे जुआ बेचे तब मस्त है सुनेला मस्त है सुनेला ई एगो चीज कुमार जी जोन बोला था बाव कर पेब कि नहीं बा ऊ डिसी दे करेला ऊ एगो रूलिंग देवेला कि इच्छे जुआ सच है नल एंड वॉइड बा सच

0: के पुनारियन के उलबों को ओके पुष्पीव कर लख तब सकेला एगो रूलिंग दे तो ये जो हो तो अम्प्लस कैंसिल हो जाए ओकर जमीनों नहीं बेचाए ये एक में कभी होवेला जब हुआ कब कुमा जदमी पूछे करेला एगो पूछे करी कुमा जग पैसवा से बुझो दे हो पी थ्वा हो पी खातू इसे मोहते हुए ले जला अरे तब हमेशा मिलेला हाईएस्ट बीदा के जो सबसे ज्यादा कुमा जे है बीट कर ले बा तो ओके मिलेला और सब आदमी बोले रन सन अब जे ओ जे हाईएस्ट बीदा वक मजे कर ले बा एगो चीज आल बा तो सकेला सी बोसो ओके बोला एगो जमीन कुमा जे 10 मिलियन तक आल मिसेलमा एगो जमीन वो बा 20 मिलियन के तो सकी एगो दूसरा आदमी अब का करे वो कुमा जब बोले एगो इंसिडेंटल एप्लीकेशन करी बोले के कि नहीं ऊख सकल जाएला एगो आउटबिडिंग हमने इसे बोली ला सा किरियोल में ओके आउटबिडिंग करे के ओके कुमा जब आज के लिए नहीं हुई वो बस उलो के मन बा मोटे हुई के एक बार आदमी सोचे रहा इतने में गल बाबू माँ से हाँ होला मैं कभी देख बा एगो आउटबिडिंग सकी करे जो आदमियाओं के मन रहल किने के नहीं सकल किने तो बोले कैसे अब एगो सीमा करब तो इसे लुआ हुआ रहेला ना तो चल हम मांगब कर हम पूछे करब ओकर से ज्यादा तो यहाँ एगो आउटबिडिंग करे सकी तो उ बहुएला आस्ते हुआ जो ओके मनबा किने के जो खरीजे खोजता उ जमीनवा के उ एगो प्री उत ऑफ दे एगो आउटबिडिंग ही एगो ऑफ
1: मान लो अगर फ्री बात जिस मिलियन के ता जो 11 मिलियन बोल लग 12 मिलियन सके बोले
0: अरे ई भी है अब यहां से ओ के छोड़ दे ला सा हां ओ मोते करे को जाता है कब लाबा अरे मैं भी देखो सब कर पूछे जो का कैसे चलेला अभी यहां ओ कर है में तो यहां सकी बोले कि नहीं हम एगो कुमा जे है आउटबिडिंग कर एकर पुईवा में गलबासी बुझो 2 मिलियन में नहीं हम एक्सेप्ट है 3 मिलियन से बा कितना दे के ऊपर आज मोते करे के तो नॉर्मलमा का हुएला सिबुजो ये सब नहीं बा आउटबिडिंग कुछ नहीं बा इंसिडेंटल एप्लीकेशन कुछ नहीं बा ओ जिने ऐसने जाता तब हुआ रहेला एगो इसी इसी वा एगो कोर्ट ऑफिसर है लाकुर के अब वो कर हाइप मजे बोलेला एन मिलियन तैसे करियो कर कपार होने देखी तसे की गोदमी बोले एन मिलियन दे तब यहाँ एक और ना हो बिडिंग हुए भाड़ा उनसे तो हम मोटे कर ले हवी दे एक मज़े तो तीन हला में जब एगो देखा था कुमार जस बोल दे आज से बोलो बोल दो मिलियन अब कोई हिन्ने देखा था होने देखा था दे मिलियन दे सिपा दे मिलियन तो कोई नहीं कुछ बोला था तो सावे जा का कुमार जा एन कुछ देखो थोड़ा कुछ कर लग एक रे नमक खिए मजा हला करी कि ऐतेल कब देखता कोई है नहीं बोला तो एगो आदमिया जो बोले रखल कि दे मिलियन हाँ तो बोले ओके ई जमीनवा तोर है नाम में अब तो के मजे मिली तोर नाम में मजे ई है बा बिजिंगवा मिल बा तो के मजे पोपी तेर बन बे ई में तब ओके बोली आओ यहाँ आगे सब आदमी बैठल बा आई यहाँ आगे ओके बोली हे देखिए एगो दुखी माँ बा हमारा आगे हाँ सीए कर मतलब सीए करी कि वो आदमिया कि ई कि नहीं उस जमीन वहाँ अभी तो यहाँ तो लाकुर में बा पोसे जो तो नहीं बोला ना ओके पोपितेर बने के तसिल में वो ही बोले ला वो डॉक्यूमेंट सीए करेला ऑन प्रेजेंस वो कोर्ट ऑफिसर हुआ के ऑफिसर दे लाकू जैसे हमने बोला सा वो सीए करता कि ई जमीन हुआ ओकर नाम में ई गलबा अब जब ई हो गलबा तो का करी वो है सब ओके फिनी हो गलबा मजो कर नाम में हो गलबा मौसेबा ओके एडजुटिकेट करता ओकर नाम में दे दिला उस जमीन हुआ कि अब से ई जमीन हुआ ओ करबा तब हियाँ देखबा उस जिज्म हुआ और फावे हुए ला लबों को आके एक तो मिलल बा हाँ ओकर प्रोपिएटर सही बनी ना मैं जिजमा ओकर फावे ला बंकुआ के जोन कुमाजे पूछ हई करलक अपन पैसवा जोन दे ले रहल उ मांग कर ले रखल याद बार तेरवा देख ले ओकर कायदे स जाने ला ओकर कंडीशन देवे ला मस्त के तो उ न मांगे ला कि ई जमीनवा बेचाई के कैसे मिल जाए एगो जिजमा हो जाए ओ जिरेक नहीं हो ला प्रोपिएटर वा आदमी हाँ सीए कर ले बा ओके आतान करे के चाहेला एगो देले दिवेंते अंजू इका है बस के ओके आतान पंगार एगो लापेल बा नहीं देखला तीन कार केस मजिस्ट्रा में आवेला मजिस्ट्रा बोले हाँ कुपाब हम तो के पांच बरिस के बन करत हैं तो सकेला हाथ उठा के बोले नहीं हम लापेल करब तब लापेल कैसे करी तो बन नहीं हुई ना बन नहीं हुई तो कि बोली वो अफ कौन जिशो बोली फूने करे के कोशिश सब नहीं देखा था हमने,

0: dans mes seulement il y a ou jugement ou effective nahi hoela en place ou on dirait et la police ok ou taque taque ban kar de हां जी कुछ नहीं बोला था मैं ओके एक बार एक डिले दे 21 जू ओके विद इन 21 जू आ ओके चाहे लगवा वो एडवोकेट देख के ऊपर ग्राउंड ऑफ अपील फाइल करे के लकुरुआ हिया अनमन हिया इसने है अब वो एक डिले मांगता कि देख हम के कुमा जे इस जमीन वा के हम नहीं एक्सेप्ट है 21 जू द अली एगो बोली के लापेल नहीं कर लग जब लापेल नहीं कर लग ओकर कुमा जे रिजल्टा ई है जब ओके मिलल और जोन दिन से जुजमवा मिलल लाबों को आके सी बोजों आद मिलल जुजम आज से शुरू होई सब पैसा जुनबा ओके कुमा जे धारी केला ओकर कुमा जे डिडक्शन करी ओकर आवे आवोका के ओकर फीस पे ये करी कितना ओकर लेंतिरे बा ये सब सब निकाला देखो पापिये में डिडक्शन करी के सब कब ओकर कैपिटल ओकर लेंतिरे ओकर आवे आवोका के और सब जो ओकर कोसु सब ले लल बा कितना लगल बा ओकर ओकर कमीशन सब सब बाऊ में डाल के कब ओके कुमा जे गनी सिबोजों को सोम डाली अब इस सिबोजों मिशेवा के मेरल एन मिलियन यहाँ ओकर को 700,000 सब डिपॉन्स में होल बा ई में तो 300,000 हुआ रहेला तब उ 300,000 हुआ ओके मिली है प्रॉफिटर हुआ के तो देख ला एन मिलियन में से ला बैंकवा सब जोन जोनों के धारत रहल है एम्प्रंटे हुआ ओके कुमा जे ओके देख चला ना उ ही में काटी ला बैंकवा एन वर्चु उ जुजमेंट हुआ ओकर लेंतिरे ओकर फ्रे ओकर कैपिटल आ वो एवोका के कोस जिसे हमने बोल सा अब प्लीज जोन लकुरुओ में घर हल ओकर कोस सब गन के तब डिडेक्ट करी जोन पैसा उधार तल उ दिन से तब ओके जोन ला डिफरेंस वा रही रिमेनिंग बैलेंस पे ये करी जोन अदमिया पैसा मांग ले रहा तो देख ला यहाँ से जमीन तक चल गल
1: हाँ जमीन तक चल गल
0: घर उड़ रही तो वो भी बिला गल तो देख ला यहाँ एगो चीज बहुत इम्पोर्टेंट चीज है एक रे नाम है सेल बाय लेवी अली जुली चीज है सब तो सुन ली सर सेल बाय लेवी कैसे मस्त के आगे होएला अब एकर सेन मतलब हुआ गई ला लकुरुआ में कौन
1: चीज होएला की के रहेला
0: देख का होएला ये एको इम्पोर्टेंट यही सबसे बड़ा कब एगो आदमी में जो प्रॉब्लम हो जाला तो देख ला वत एगो जमीन कब हुएला बहुत सा आदमी एगो डिस्ट्रेस में बा
1: तो हर घर जाता बिचाता तो हर लगे बेघर हो गईला और तो हर आँख के सामने ही सब हुआ था
0: अरे ये तो कुरेक बा कब तुहर सामने अब रोई बा तू तो नहीं रोब आंसू आ नहीं बोले अंसन आंखों बगल से नहीं गिर रहा दिल से कहाँ से वो आंसू गिरा था उमें रोआ था बस कि हर आदमी ओकर मिजेर उही जाने ला कैसे वो घर हुआ या मटिया बनैले बा या कैसे कर ले बा शायद काम कर ले हो दिन रात न सीखलो न मजे बोल लेता में वो काम करके रमासे कर ले बा कैसे हमने कि भाई बहन लोग बा माँ बाप लोग रहन सन कान काट के घई कंधा में हो लाद कामियों में ले जाके मूल्य में दिन रात कुही में अपन जाके अपन जिंदगी बिताई लन सन अब सोचो 5 मिनट के उ जमीनवा के पैसवा जोन से किन ले रहन सन उ लोग अब तू कुमा जे उ जमीनवा के है देखत हुआ उ जमीनवा अब जाता कुमा जे है लाभ में जहाँ सब कोई कुमा जे है सोचता कि है देख अजी एक इज्जत के दिन मुरिशिया भी ऐसा तोरा बोली ये नहीं जाने फलना के काम है काहुल जमीनवा बोले नहीं बोले ना बार में चल गल बोले अजी को एक शर्म की बात को मजब ऊ के बोला हंसा था बस ओकर वासे हुआ के देखा था ऐसा सिचुएशन में बा आप देख बा जोन अदमिया हुआ बा रोवा था चियार के जोर से हल्ला करके लकुरुआ में
1: सब हुए ला हुआ पर
0: ये तो बोला था ही ना आ तोरा सिलबाई ले बिया के ने बोली देनी मिनी तो अब ये कुछ सेन देख क्या करते हैं सा अब हुआ देख बा तो को मजब अब रोवा था कुनो तो लिस्टो में मारा था हल्ला करके हे भैया कोनो के तो शायद ओके हे मानजिक्षो देवत हुई रोवत हैं हल्ला करता आर मांग भी करत हुई शायद कभी तक बांध देखी रहा सर जीज के आगे जालन सन वी मजिस कवा के जीज सीप्लिए करे लन सन अरे माय बाप नहीं बेच हमर जमीन हम क्या आर थोड़ा सन लेता दे तो जीज हुआ तो मजिस कवा बोली इतना तो लेता तो के दे ले रही लोग नहीं पे कर ले अब हम के बोलते जाके पे कर बे कहाँ से अन बेचू अब भी नहीं सकले पे ये करे तो कब सकबे आने ये इससे चलता है ऊ ही जीजुआ

0: magistrawa kap kiswa wata ego vakilai okara avu ya avocat jona dmia ke kuma je apti jwa bechata saki bole monsieur ziz chama madame ziz amigo bad ba bole ke bole hay dmia ke hamu kar vakil hain hum mangat hain ego leta dekhla nom de loi u bakat wala kurwa meal बहुत परिश्रम देख लें किसी से हम देख लें किसे हमू तो पची रही में ना तो देख बहु हुआ कैसे वो कुआ कभी को मांग कर लग हम स्वाब के दे दिलक एगो पुष्पन मैट हम जैसे बोला सर उस सिलवा नहीं हो किस पुष्पन हो गल मैं हिया था ओकर देखा था कोई नहीं बा आवो का वो कुछ नहीं बा अपने तब अपने तक कहाँ से कि जो उनके स्वाबा ओकर दिल में हाल स्प्रीके करके कोवें करके मजिशवा के कि देखा ये ऐसे हिस्सा फेर है ऐसे सुनी तो एगो था बस की काहे हर जेजी के तांत केस लेक आवेला जो उन केस बाल ला कुरुआ में हर जेजी के सोचो तांत केस और बीस गो केस बा प्रोफोमा आले विनी के दूसर हलाके हला कर अब सकेला गो दस गो या गो पंद्रह गो वो बेचायू दिन हुआ ये देख रहा है गो को कुमाजे एक बार ज़ाफ़े कॉम्प्लिके नहीं है कितना कि यहाँ कुमाजे अभी चीज चलेला उल्लकुरुआ में तब यहाँ दिग्बा अब उस चीज हुआ हुआ बेचाई कितना हल्ला करी कितना सिप्लिए करी बोले भगवान देखा हम के कुमाजे से प्रभु में से निकाल दा अब वो कर कुमाजे है जो है हुआ प्ले दे कर था कि यही घर हुआ बा यही ओकर जमीन बा और कुछ नहीं बा तो यहाँ देख लो जितना जितना चीज होल बा लकुरुआ में बहुत सा कुमाजिया एगो देथस में एगो कुमाजिया साग में चला था दूसरा दूसरा बगल यहाँ तो बेचारी रोआ था या बेचारा रोआ था उकर घर कुमाजला बार में कुमाजा सीजुल बा वहाँ बड़का मिशी ब्लॉ हमारे नहीं है कुछ सिंपल ले ले बा कुछ सिंपल ले ले बा खावात ले ले ले बा बड़का फिल्म हाथ में ले ले बार एगो कहीं पापिए उतन होते करता कितना परिवा जाता जब परिवा हुआ मोते हुआ था वो नोते करता तो वो एक दिन अगाड़ी या दो दिन अगाड़ी एक बान बाई से जानेलन से नहीं घर वापस ही को लालिस मिलेला है मौसे कोच से है समय नुआ कौन कौन घर बेचा था या कौन कौन जमीन से जीवला तो कुनो तम यही में ओकर जिंदगी है जाला एक आदमी के बहुत हम जाने ला ऊबा कोतवा हम मौसे कोटवा में है हर जे जिए के जाते नहीं तो दिखिला एगो मिशे रहल वो जहाँ माटी सेजी होए बापा तो उमे लबरुआ के दिन हुआ वो हुआ पैसा हुआ मोरिसस में एगो ऊ आर मन एगो मुनी लंडर रहला मुनी लंडर ऊ पैसा देवे ला मकवा नहीं ऊ बकतवा रहल एगो एगो तोरा गवर्नमेंट देवे एगो ऑथोराइजेशन एगो पापिये देवे एगो सर्टिफिकेट नियर मुनी लंडिंग ऑर्डिनेंस बगल से कि सबत हु कुमा जे पैसा देवे तो ऊ करी तो सिलमा जाने की आदमिया पे ये नहीं कर लेबा कर पूछे जे तो सब हो गलबा ई जमीनवा जाने ला तो ऊ जमीनवा अब आई बेचाई तो ऊ का कर ले रहल तो जाके हुआ देखे तो ऊ के नहीं देखा नहीं तो मर गल अभी देखे अच्छा जो जीता बा वो खूब ले ले दुए गो आदमी बा खूब कुछ सिमून पेन ले ले बा ओके नहीं यहाँ ऊ घरवा की नहीं खोजी पसी ऊ पूछे करी ऊ जाने ला कर वाले मटिया के पसी चल गरल एक दिन से बाद दो दिन अगड़िए ऊ घरवा के देखे कौन लेता में बा ऐसे एगो बो लेता में बा कि ओकर पैसवा जो डिपोसे कर ले बा वो बा कि नहीं वो बा तो ई देखत हुआ बड़ी बड़ी एपोत हाँ तो कोनो आदमी दूसर के माले में अपने है भी सोएला अपने को मजे है धनवान हो जाला एक बान आदमी से
1: अगर पार पैसा बा उसे कता किने किन के से कता बेचे या तो ओकर एगो बिजनेस हो जाला
0: हां तो ई एगो कहानी कैसे सेल हुएला कोनो आदमी हुआ बेचारा या बेचारी गरीब हो जाला सब चीज बिला जाला और कोनो तो देखो हुआ से किनेला बस पैसा वेला
1: जो एक साथ हमने आज के कार्यक्रम जो बा आज की चर्चा यहाँ समाप्त हुआ था कपिल रघुनंदन जी तोरा बहुत बहुत धन्यवाद हमने के श्रोता लोग के काफी जानकारी मिलल तो एक और कार्यक्रम के संगे अगले शुक्रवार के फिर मिलब जा भूलिया नहीं आप देखते हो इस समय कार्यक्रम आज की चर्चा आ गया था नमस्ते, नमस्ते।

0: 94.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।
1: घड़ी मिला लीजिए, इस समय शाम के ठीक 4 बजे हैं।
2: नमस्कार, 4 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। समुद्र की लहरें कितनी ऊंची हैं और समुद्र की स्थिति कैसी है, अब इसकी जानकारी तुरंत मिल सकेगी। भारत सरकार की ओर से दिए गए वेव गेज यानी समुद्री लहरों को मापने वाले उपकरण से मिलने वाले आंकड़ों के लिए एक नया डिजिटल मंच तैयार किया गया है। ये उपकरण एक साल से अधिक समय से काम कर रहा है। इससे समुद्री लहरों में होने वाले बदलाव को समझने और समुद्र से जुड़े खतरों के लिए बेहतर तैयारी करने में मदद मिलेगी। पेनल्टी पॉइंट्स सिस्टम को लागू हुए 6 महीने हो चुके हैं। 31 जनवरी से 31 जुलाई 2026 तक के आंकड़ों में तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना और सीट बेल्ट नहीं लगाना आम यातायात उल्लंघनों में शामिल हैं। इन 6 महीनों के आंकड़े सड़कों पर नियमों के पालन और वाहन चालकों के व्यवहार की मौजूदा तस्वीर भी सामने रखते हैं। देश में खाद्य आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए सरकार स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। इसके तहत

0: बीज उत्पादन स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल नई किस्मों के विकास उनकी बिक्री और किसानों को जानकारी देने पर जोर है। फेरिना यानुआ 45 नाम की सेम की किस्म को अच्छी पैदावार और आयरन की अधिक मात्रा के कारण चुना गया है। सरकार इसके बीज पर 75% की सहायता दे रही है। इसके बीज एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड में 130 रुपए प्रति किलो की दर से उपलब्ध है। कैंसर के खिलाफ लड़ाई में एक नई उम्मीद मर्क एंड को और मॉडर्ना की ओर से तैयार इंटीस्मेरान नाम के एक खास टीके ने त्वचा के कैंसर को दोबारा होने से रोकने के अच्छे नतीजे दिखाए हैं। 1000 से अधिक मरीजों पर इसका परीक्षण किया गया। शरीर के रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने वाले इलाज के साथ दिए जाने वाले इस टीके ने कैंसर के दूसरे हिस्सों में फैलने के खतरे को भी काफी कम कर दिया है। इसी के साथ ये समाचार समाप्त हुए। हम आपसे मिलेंगे ठीक 6 बजे एक पूरे समाचार बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

की चिट्ठी मिली, की चिट्ठी मिली, आपकी चिट्ठी मिली कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। 21 अगस्त आज की तारीख है, शुक्रवार की शाम है और इस समय स्टूडियो की घड़ी में बिल्कुल शाम के 4:11 हो चुके हैं। रेडियो मनोरंजन के लहरों पर मैं हूं रत्ना, आप पहुंची हूं आज के इस हसीन कार्यक्रम को लेकर और इस लाजवाब कार्यक्रम में हम रहेंगे आपके साथ शाम के 5 तक। जीने के सहारे मिल गए, बिल्कुल जीने के इशारे मिल गए, बिछड़ने पर किनारे दूर से नजर आने लगे और इसी के साथ जिंदगी के इस सफर में हसीन लगते हैं वो पल जो कभी हाथों से फिसल जाते हैं। चलिए इसी प्यारे से गीत के साथ हमने की है एक बहुत ही मज़ेदार शुरुआत और इस कार्यक्रम में आपके प्यार भरे ख़त, आपके प्यार भरे मैसेजेस आते रहे हैं और हम बस आपसे मांग करते हैं कि ज़रूर अपनी बातों को इस कार्यक्रम में आप शामिल करिए। 4028070 नंबर है हमारे रेडियो मनोरंजन का और साथ ही साथ मैसेज के लिए 5250620 के साथ इस कार्यक्रम में आप भाग ले सकते हैं। और बेशक ज़रूरी नहीं कि आप अपने नाम को डिस्क्लोज करें, इस कार्यक्रम में अपने दिल की बात ज़रूर रख सकते हैं। और यहाँ पर आज की एक जो चिट्ठी आई है बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही दिल को छू जाने वाली और दिल में एक अलग सा दर्द पैदा करती है ये चिट्ठी, ये ज़िंदगी का सफ़र। और चलिए इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में हम पहले तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने ये ख़त हम तक पहुंचाया है, ये मैसेज हम तक पहुंचाया है। तो ज़रूर आज के इस कार्यक्रम में हम आपकी चिट्ठी को शामिल करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम में अगर आप हमें सुन रहे हैं देन थैंक यू अगेन, बिकॉज़ मैं समझती हूँ कि ऐसी एक बात नेशनल रेडियो पर किसी के साथ शेयर करना, you need a heart to do that. भाई हम तो कुछ यही जोड़ेंगे कि कुछ पल कुछ घड़ियां और बस जिंदगी का ये सफर यूं ही खत्म हो जाता है। दोस्तों जब हमारा सामना होता है जिंदगी के एक ऐसे अनुभव में, एक ऐसे अनुभव के साथ, तब जिंदगी की अहमियत हमें समझ में आती है। आज हमारे साथ किसी ने अपने जिंदगी के ऐसे ही एक अनुभव को शेयर किया है जो सच में दिल में एक चुभन सी पैदा करता है। हाय रत्ना, मैं आपके इस प्रोग्राम से बहुत इंस्पायर होता हूँ। कभी कभी इस प्रोग्राम को सुनकर ये एहसास होता है कि दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो तरह तरह के प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। आज मैं भी कुछ हिम्मत जुटा पाया हूँ अपनी एक लाइफ सिचुएशन, अपनी समस्या को आपके साथ शेयर करने के लिए। मैंने पूरी ज़िंदगी एक प्लेबॉय जैसी ज़िंदगी बिताई है, लड़कियों से दोस्ती करना और फिर दोस्ती तोड़ देना। पर सच कहूँ तो जवानी के जोश में कभी नहीं सोचा कि किसी के जज्बातों के साथ खेलने की कीमत बहुत भारी पड़ सकती है। कुछ दिनों से मेरी तबीयत को लेकर बहुत सारी समस्याएं होने लगी, बहुत तकलीफ हुई। तब जाकर मैंने डॉक्टर को दिखाया, फाइनली डॉक्टर ने कहा कैंसर। अभी रिपोर्ट्स आने में देर है पर मेरी आँखों के सामने एक अंधेरा सा छा गया है। कहाँ जाऊँ, किससे कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक चीज़ तो समझ में आ गई कि जिस जिंदगी को हम मजाक में उड़ा रहे थे, हर पल में शेर की तरह दहाड़ते थे, ऐसे जीते थे जैसे कभी नहीं मरेंगे, पर आज जब जिंदगी का ये पहलू देखना पड़ रहा है तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमने अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। सेहत के जाने के बाद ही पता चला कि मैंने क्या गवाया है। अब पता नहीं आगे मेरे नसीब में क्या लिखा है। जो चीज़ हमारे हाथ से छूट जाती है तब जाकर उसका एहसास होता है कि हमने क्या गवाया है। दोस्त आज के इस कार्यक्रम में आपने बहुत कम शब्दों में बहुत बहुत ही बड़ी, बहुत ही गहरी बात लिखी है। हालांकि आपने अपने ख़त को पूरा नहीं किया पर मैं समझती हूँ कि ये लाइफ की एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आप खड़े हैं। हम आपको जज नहीं करेंगे क्योंकि ज़िंदगी में आगे क्या होना है ये कोई नहीं जानता।

कई बार कहते हैं ना कि आज के सिचुएशन, आज के जिंदगी में हम कई बार हम अपनी जिंदगी की कोई भी सिचुएशन या कोई भी ऐसी समस्या को किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि लोग हमें जज करना शुरू करते हैं कि हाँ तुमने शायद ऐसा किया इसीलिए आज तुम अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हो एंड ऑल दैट। बट हम आपको जज नहीं करेंगे डियर, क्योंकि मैं समझती हूँ कि अभी आप जहाँ पर खड़े हैं यू नीड अ लॉट एंड लॉट्स ऑफ सपोर्ट। और मैं हमेशा यही कहूँगी कि ज़िंदगी में जो होना है जैसा होना है वैसा ही होता है, क्यों होता है कब होने वाला है क्या होगा इन सारी चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें इसी से गुजरना है। एंड आई एम टेलिंग यू कि आज ये तो आपकी एक सिचुएशन है, पर मैं सच में कहूँ तो सोसाइटी में आज ऐसे कई सारे लोग हैं जो बहुत ही सिमिलर सिचुएशन से जूझ रहे हैं। हो सकता है कि आपकी कंडीशन से भी बहुत ज़्यादा कंडीशन, बहुत ख़राब कंडीशन में ये ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं। उनको जज करने के बजाय, उनको डांटने के बजाय या उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करने के बजाय, जस्ट ट्राई टू होल्ड देयर हैंड्स, बी विद देम। और मैं समझती हूँ कि ऐसे सिचुएशन में आपके फैमिली का आपके साथ होना, आपके प्रियजनों का आपके साथ होना, आपके जो हित मित्र हैं, आपके जो आपके वेल विशेज हैं, वो अगर आपके साथ खड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर की जो शक्ति है वो थोड़ी और बढ़ जाती है। जिंदगी ने आपके लिए क्या सजो के रखा है, क्या रिजर्व करके रखा है, ये नहीं जानते। बट वॉट एवर कम्स माई डियर फ्रेंड, आप अपनी हिम्मत मत हारिएगा, क्योंकि ये जिंदगी हसीन है, खूबसूरत है, और इस जिंदगी में बिल्कुल जिंदगी उन्हीं के सामने मुस्कुराती है जो मुश्किलों को बिल्कुल डट कर उसका मुकाबला करते हैं। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन।

आपके चिट्ठी मिली कार्यक्रम और इस सफ़र में हमारे बहुत सारे श्रोता बहुत ही प्यार से भाग लेते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें, अनुभव, नेगेटिव पॉजिटिव सारी बातें कहते हैं, हमारे साथ शेयर करते हैं और कुछ बातें सच में हमारे ज़िंदगी को एक अलग मोड़ देती है, कुछ नया सोचने के लिए हमें मजबूर करती है। और जैसे यहाँ पर हमारे साथ एक और हमारे श्रोता ने एक बहुत अच्छी बात शेयर की है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। वे लिखते हैं कि हमें बहुत अच्छा लगा जब आप इस चिट्ठियों को पढ़ती हैं, लेकिन कुछ चिट्ठियां ऐसी होती हैं जो सच में हमें बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाती है। जैसे कि इस चिट्ठी को हमने सुना और ये चिट्ठी एक ऐसे नवयुवक की है जो बहुत ही संघर्ष कर रहा है इस समय अपने सेहत को लगकर। पर यहाँ पर मेरे जीवन के अनुभव के अनुसार एक छोटी सी कहानी मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। और ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने बहुत ही तपस्या की भगवान की। और वे लिखते हैं कि यहाँ पर भगवान की जब तपस्या की तो भगवान सच में उसे प्रकट भी हुए और भगवान ने कहा, मांग, तेरी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, मांग, तुझे क्या चाहिए। तो व्यक्ति ने कहा कि भगवान मुझे ढेर सारा पैसा दे दो, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं शोहरत कमाना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुझे, भगवान ने तूने मुझे पूछ कर मुझे प्रसन्न किया है तो मैं ज़रूर तेरी इस मन्नत को पूरा करूँगा, परंतु पैसे के बदले में मैं तुझसे एक चीज़ लूँगा जिसका तू बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं

करता, मतलब जो तू बहुत ध्यान नहीं देता ऐसी एक चीज मैं लेना चाहूंगा। तो वो इंसान थोड़ा हिचकिचाया और उस इंसान ने कहा कि भगवान मेरे पास एक छोटी सी गाड़ी है जो मैं अब शायद इस्तेमाल नहीं करूँगा, आप वो रख लें। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं, गाड़ी तो मैं नहीं चाहूँगा, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, पर मैं एक ऐसी चीज़ चाहता हूँ जिसका तू ख्याल नहीं करता। तो उस इंसान ने दोबारा से सोचा कि वो कौन सी चीज़ है जिसका वो बिल्कुल ख्याल नहीं करता। तो उसने अपने घर की कुछ ऐसी टूटी फूटी चीज़ों का भी नाम लिया, जोड़ना शुरू किया, पर वो उन सारी चीज़ों को भी भगवान ने नकार दिया। भगवान ने कहा नहीं नहीं, ऐसी कोई चीज़ जिसका सच में तू बिल्कुल तेरे सामने होते हुए भी तू उन सारी चीज़ों को तो देखता ही रहता है, पर जो एक ऐसी चीज़ है जिसका तू बिल्कुल ख्याल नहीं करता, वो चीज़ मैं तुझसे लेना चाहूँगा। तो वो इंसान परेशान हो गया, कहने लगा भगवान जी मुझे तो दिखाई नहीं दे रही है वो चीज़ जो आपको शायद दिखाई दे रही होगी, आप ही मांग लीजिए, मैं देने को तैयार हूँ। बोला सोच लो, एक बार मांग ली फिर मैं वापस नहीं दूंगा। कहा आप कह रहे हो कि जो चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता ऐसी ही चीज़ मांगेंगे ना, तो मांग लीजिए भगवान जी। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुझे इतना पैसा दूंगा, इतना पैसा दूंगा कि मतलब तुझे रखने तक को इतना दिक्कत हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी कि कहाँ रखूँ, इतना पैसा दूंगा, पर बस रिटर्न में मैं तेरी सेहत ले लूँगा। कहा भगवान जी नहीं चाहिए, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मेरी सेहत ही नहीं रही तो मैं इस पैसों का क्या करूँगा। भगवान ने कहा सोच लो। बोला हाँ हाँ सोच लिया भगवान जी, सेहत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस छोटी सी कहानी जो हमारे एक श्रोता ने हमारे साथ शेयर की है, थैंक यू सो मच, क्योंकि ये एक ऐसी कहानी है जो हमारे ज़िंदगी में सच में हमें बहुत ज़्यादा सोचने पर मजबूर करती है कि अगर हम बिल्कुल आज के ज़िंदगी में आप देख लीजिए कि हम कितना पैसों के पीछे दौड़ते हैं, कितना कमाते हैं। बिल्कुल हमारी ज़िंदगी बनानी है, हमें अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है, हमें वो सारी सुख सुविधाएं चाहिए जिसके लिए हमें मेहनत तो करनी ही है, और पैसे नहीं कमाएंगे तो ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन ऐसे में जो सबसे अहम चीज़ है हमारी सेहत, उसे हम बिल्कुल भूल जाते हैं, सेहत को हम अहमियत ही नहीं देते। कई बार न खाने का ठिकाना होता है, न ठीक से नींद पूरी कर पाते हैं, न व्यायाम के लिए समय निकाल पाते हैं, न अपने मन को कभी शांत करने के लिए हम समय निकाल पाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि हम अपने समय को लेकर, हम अपने परिवार के साथ, जो हमारे सबसे सबसे अहम है, हमारी दुनिया है, इनके लिए भी हम समय नहीं निकाल पाते। और जब तक हमें इस बात का एहसास होता है तब तक तो दुनिया पलट जाती है। आपकी चिट्ठी मिली कार्यक्रम को जारी रखते हैं रेडियो मनोरंजन की लहरों पर शाम के 5 बजे तक।

0: चलिए अगर घर की ओर बढ़ रहे हैं तो मन को खुश रखते हुए हेल्दी मन से आप घर की ओर बढ़ें और बिल्कुल तनाव को काम पर ही छोड़ दें, तनाव को घर पर ना ले जाएं, क्योंकि कई बार हम कहते हैं ना कि हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को इतना ज़्यादा मिंगल कर देते हैं, इतना ज़्यादा मिक्सअप कर देते हैं कि जानते ही नहीं कि क्या कहाँ क्यों कर रहे हैं, एंड देन फाइनली वी लैंड अप एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ों के साथ। बट एनीवेज आज के इस कार्यक्रम में आप हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत ही प्यार से आपका हम फिर से स्वागत करते हैं।
1: Continuous
0: जी हाँ, रेडियो मनोरंजन पर आपकी चिट्ठी मिली कार्यक्रम में। चलिए, हमारे वैसे तो बहुत सारे श्रोता यहाँ पर मैसेजेस भेज रहे हैं। प्यारी सी शोभा जी वाकवा से कहती हैं, जान है तो जहान है। मानती जी भी कह रही हैं कि सच में सेहत ना हो तो सब व्यर्थ है। और यहाँ पर हमारे साथ एक ऐसी श्रोता जुड़ चुकी है जो हमेशा अपनी चुलबुली आवाज़ के साथ अपने प्यारे से अंदाज में हमारे इस कार्यक्रम में हमेशा भाग लेना बहुत पसंद करती हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। हेलो,
2: हेलो, नमस्ते रत्ना जी, और आपकी चिट्ठी सुनने वाले समस्त श्रोताओं को आशा जानू की ओर से प्यार भरा नमस्कार।
0: थैंक यू आशा जी, हमेशा साथ देती हैं और आज के इस कार्यक्रम में आप भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं और बिल्कुल जानना चाहेंगे कि आप क्या क्या आइडियाज रखती हैं और आज की जो चिट्ठी हमने पढ़ी है उस पर आपके क्या विचार हैं।
2: जी हाँ, तो रत्ना जी, जिन श्रोता ने अभी आपके यहाँ ये ब्यूटीफुल स्टोरी पहुंचाई है उनको कहूंगी दिल से धन्यवाद
0: जी।
2: सच में जो सेहत है ना, अगर मैं ये कहूंगी कि दुनिया के सारे धन दौलत हीरे जवाहरात मोती एक तरफ और सेहत एक तरफ,
0: बिल्कुल,
2: अगर जो यह जो ईश्वर ने जो हमें यह अनमोल वरदान दिया है यह मानव जीवन, अगर इस मानव जीवन में यदि सेहती हमारी अच्छी न हो, हम हेल्दी न हो, तो सोचिए पलंग हो नींद नहीं, खाते को भरपूर पकवान हो पर भूख अगर न हो, अगर भूख यानी कि मिटाने के लिए अगर आपको मेडिसिन की जरूरत पड़ रही है
0: तो यानी खाने से ज्यादा आप दवाइयों का उपयोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे जिंदगी पर एक अत्याचार है, बहुत ही बड़ा अत्याचार है। और सच में देखा जाए तो ये हम नहीं कहते ही, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि पैसे कमाना बहुत आवश्यक है क्योंकि आज का जो जीवन है वो बहुत ज्यादा कठिन हो गया है, लेकिन हमारे सेहत को हमें पहली प्राथमिकता देनी है।
2: पहले हमें प्रमुखता देनी है सेहत को,

0: लगता कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करके काम कर रहे हैं, तो हमें ऐसे भी होने चाहिए कि अगर हम सोने जाएं तो नींद के लिए भी हमें दवाई की जरूरत न हो, हमें अच्छी नींद आए, खाने के लिए यानी कि मन में संतुष्टि हो, मन में शांति हो। और अगर हम ये कहेंगे नहीं हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ये जो हमारी चाहत की जो भूख है ना, ये कभी मिटने के तो नाम नहीं लेगी। पर अगर हम इस चाहत की जो अभिलाषाओं के चक्कर के पीछे हम भागेंगे, तो जो हमारे जो जीने की जो कला है, जो जीने के सही तरीका है, उसे हम खो देंगे। और जो खुशी होनी चाहिए वो उस खुशी को हम पा नहीं सकेंगे।
1: बिल्कुल सही।
0: जो है थोड़ा है, थोड़े ही में हम
1: खुश रहना बहुत आवश्यक है।
0: आवश्यक
1: बिल्कुल
0: है,
1: बिल्कुल।
0: और जो पहले तिथि आपने पढ़ी है उनके लिए मैं बस एक मैसेज ये देना चाहूंगी रचना
1: जी।
0: कि देखे मन में अगर विश्वास हो, आपकी अंतर आत्मा में अगर विश्वास हो कि अब से आपकी लाइफ बेहतर होगी, तो यही विश्वास आपको जिंदगी की राहों में सही दिशा देगी और आप कभी निराशा न होगी।
1: बिल्कुल। कई बार हमको हम कहते हैं ना, कई बार ये जो छोटी छोटी उलझने आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, समस्या आती है, ये कहीं ना कहीं हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि कहीं कुछ गलत हो रहा है, बस अब सुधर जाओ, क्योंकि अब अगर नहीं सुधरे तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किलें बढ़ेंगी। और इसी को लेकर, सेहत को लेकर कभी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं करना चाहिए। आशा जी बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम में साथ देने के लिए। आपको भी कहेंगे,
0: हाँ जी, सभी श्रोताओं को भी कहूंगी, आप इतना प्यार से सबकी चिट्ठियों को पढ़ती हैं, सभी अपने मैसेज आप तक पहुंचाते हैं। ये एक जरिया है जो हम अनेकों गमों को सुनकर भी हमें एक एक यानी कि एक विश्वास होता है कि नहीं, हम सोचते हैं कि हम ही दुखी हैं, हमसे बढ़कर और भी लोग हैं जो दुखी हैं। बस ईश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ हमें साहस दे, बुद्धि दे, हम ताकि असली ही मार्ग पर चले।
1: बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच आशा जी। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। और बिल्कुल आशा जी हमारे साथ जुड़ी। और चलिए, यहाँ पर हमारे साथ कई सारे ऐसे श्रोता हैं, यहाँ एक और श्रोता है लाइन पर, आइए उनको भी मौका देते हैं। हेलो।
2: हाँ मृगनयनी, नमस्ते।
1: नमस्ते शावा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको आज हमने सीधा ऑन एयर ही ले लिया है। थैंक यू सो मच मृगनयनी करके जो आप बोलती है, सच में बहुत बहुत
2: बहुत प्यार से मैं मृगनयनी बोलती हूँ,
1: मैं जानती हूँ,
2: आपको पता है।
1: हाँ जी हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम में आपने भी हमारे साथ जुड़ने का बिल्कुल एक जरिया ढूंढा। और बिल्कुल हमें अच्छा लगता है जब हमारे श्रोता हमेशा हमारे साथ जुड़ते हैं, कुछ अपनी बातें शेयर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज क्या कहना चाहेंगी आप?
2: मैं ये कहूंगी कि जो प्रस्तुत करता है ना, आपकी चिट्ठी मिली, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप दूसरों के दुखों में शामिल होती है और बांटती है हमारे साथ।
1: बिल्कुल। और हाँ, पता है श्यामा जी, मैं हमेशा ऐसा समझती हूँ कि जब कोई मुश्किल से गुजर रहा है, वो क्यों मुश्किल से गुजर रहा है ये जानने के बजाय अगर हम उनकी थोड़ी सी सहायता कर दें, उनके चोट पर अगर थोड़ा सा मलहम ही लगा दें, थोड़ी सी उनकी राहत हो, थोड़ी सी उनकी तकलीफ कम हो, अगर उनकी कही हुई बात अगर हम आपको पहुँचा सकते हैं और आपकी अगर दुआएँ या आपकी जो प्रार्थनाएँ हैं कुछ उनके काम आ जाए, उनके लिए भी एक तरह से एक ऊर्जा प्रकट करे और वो भी कहीं ना कहीं उनके लिए उनके सेहत में कोई सुधार आ जाए, तो इससे बड़ा और कोई रास्ता नहीं हो सकता, मैं समझती हूँ।
2: तो हम ये कहेंगे रत्ना जी,
1: हाँ जी,
2: कि सभी लोग सुखी नहीं होते हैं।
1: बिल्कुल।
2: हाँ, सभी लोग बराबर नहीं होते, सभी लोग सुखी नहीं होते हैं, कितने के जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है ना। तो मैं ये कहूँगी कि सेहत से बढ़कर और कोई धन नहीं है, रोग तो एक बहाना है।
1: बिल्कुल।
2: हाँ, होने को कोई टाल नहीं सकता है। धन दौलत रहते हुए भी हम सेहत नहीं खरीद सकते हैं।
1: बिल्कुल।
2: केवल उसकी सेवा कर सके, उस पर ध्यान देना चाहिए, खान पान पर ध्यान देना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि अगर भगवान ने हमें दर्द दिया है तो वही दवा देंगे ना।
1: सही बात, सही बात।
2: हाँ, वही हमें रास्ता बताएंगे और हमें अपने जो हमारी जो अपनी सहन शक्ति है उसे तीव्र करनी है।
1: सही।
2: हाँ, आपको हर हाल में जीना है और भगवान पर भरोसा करना है, हिम्मत नहीं हारना चाहिए, होने को कोई नहीं टाल सकता है, जो होनी हो तो वो तो हो के रहेगा।

0: एक बहाना है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: इतना ही कहूंगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्यामा जी आपके विचारों के लिए।
0: मृगनयनी, बहुत खुश हुई तुमसे बात करके,
1: बहुत अच्छा लगा।
0: सभी को तो मैं मृगनयनी नहीं कह सकती हूँ ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आप भी हमारे दिल की कली है, बहुत ही प्यार से हमेशा हमें खुश करती है अच्छी बातें कहकर। बहुत बहुत धन्यवाद श्यामा जी।
0: हाँ जी, धन्यवाद।
1: शुभ दिन आपको।
0: शुभ दिन आपको भी।
1: चलिए, आप लोगों का प्यार हमेशा बरसता रहता है। यहाँ पर मानती जी भी हमारे साथ नोएल फोन से जुड़ चुकी हैं, और हमेशा की तरह आशा जी अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ जुड़ी थी। और बिल्कुल, जब हम मुश्किल का दौर बिल्कुल हमारे जीवन में एक तरह से ये एक ऐसा समय है जहाँ पर हमें सच में हम इतने निराधार हो जाते हैं, तब जाकर हमें लगता है कि ऐसे समय में अपनों का साथ हो, अपनों की बातें हों जो हमें कंफर्ट कर सके, हमें सहारा दे सके, हमें राहत दे सके। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी भी कोशिश यही है कि हम बातों से, कुछ ऐसे विचारों से आपकी इस समस्या को हम कुछ कम कर सके। और आप इतनी हिम्मत दिखाते हैं, क्योंकि जब कहते हैं ना कि हम पर पीड़ा पड़ती है, हम पर मुसीबतें आती है, तो हम कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा अपने मन को भीतर ही भीतर दबा देते हैं कि हम किसी से ये बात नहीं शेयर करना चाहते। पर जो हिम्मत दिखाते हैं, जो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं, सराहनीय है आपकी हिम्मत। और आपकी चिट्ठी मिली कार्यक्रम, ये आप ही लोगों का कार्यक्रम है जहाँ पर आपके खतों, आपके फ़ोन कॉल्स, आपके मैसेजेस के द्वारा आपकी बातों को हम इस मंच में शामिल करते हैं।

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: आपकी चिट्ठी मिली और यहाँ पर हमारे साथ एक और श्रोता हैं जो अपनी दिल की बात कहना चाहते हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। हेलो
2: हेलो रचना जी।
1: नमस्ते नमस्ते सोहन जी, मनोज सोहन जी जो लेस्पेरांस।
2: मनोज सोहन लेस्पेरांस रेबुसे से
1: आपका स्वागत करते हैं। मनोज जी आप कैसे हैं?
2: मैं बढ़िया हूँ, आप सुनाइए, आप ठीक हो?
1: बिल्कुल बढ़िया। बताए बताए सुनाए, क्या कहना चाहते हैं आज के इस कार्यक्रम में?
2: हाँ तो भले से हम बात नहीं करते हैं लेकिन दिल से आपको शो एंजॉय करते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। बस यही
2: हर फ्राइडे को।
1: थैंक यू सो मच, आप दिल से साथ निभाते हैं ये भी बहुत ही बड़ी बात है। और है। बिल्कुल आज के इस कार्यक्रम में अपने कुछ विचार रखना चाहेंगे भाई जी?
2: तो विचार तो ये है कि पहले मैं सब लोगों को कहूंगा परम परम परम महाशांति। इसका बोल क्या है कि आंसू निकलता है आंखें से और दिल रोता है अंदर से। पता होता है किसी को नहीं, सिर्फ पता है उसी को।
1: बिल्कुल।
2: और दूसरा बात, ये जो परम परम शांति मैंने कहा तो ये परम शांति के अंत क्या है कि देखिए शरीर तो छोड़ जाता है लेकिन जो हमारा आत्मा है वो मरता नहीं, वो छोड़ देता है शरीर के लेकिन वो मरता नहीं। तो इसमें मनुष्य को क्या करना चाहिए? सब सावधान रहना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए, अच्छे सोच विचार करना चाहिए, अच्छे सुनना चाहिए। जैसे कि महात्मा गांधी ने कहा कि अच्छे से देखो, अच्छा चीज देखो,
1: अच्छा सुनो, अच्छा बोलो, बिल्कुल,
2: और अच्छा बोलो, ठीक है ना?
1: बिल्कुल।
2: तो मतलब ये है कि अगर दुख और सुख धरती पर नहीं होगी तो दुनिया नहीं चलेगी।
1: सही,
2: ठीक है ना? तो लेकिन बात ये है, कोई बहुत धनवान है, कोई गरीब है, कोई बहुत गरीब है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? दुनिया छोड़ देना चाहिए मुफ्त में?
1: नहीं।
2: अगर अपन अपने कर्म के अनुसार जब धरती पर आए हुए हैं तो ये एक संघर्ष है।
1: बिल्कुल।
2: लड़ना चाहिए।
1: बिल्कुल।
2: जीने के लिए बुरा काम नहीं करना चाहिए। तो कौन है? भगवान को याद करो।
1: बिल्कुल, ईश्वर को याद करो। और मैं समझती हूँ, अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ उदय जी भी जुड़े थे, वे भी कह रहे थे कि हमें ईश्वर ने एक चीज दी है, वो है बुद्धि। और कई बार कहते हैं ना कि मनुष्य एक ऐसा ही प्राणी है जो सोच सकता है, जो बोल सकता है, जो समझकर अपने कार्य कर सकता है। तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं वो हर एक इंसान में है, नेगेटिव और पॉजिटिव सोचने की क्षमता, क्या सही है क्या सही नहीं है। हाँ जी, लेकिन कहते हैं ना कई बार हम
2: मनुष्य को ये सोचना चाहिए

0: जी
1: कि 84 लाख करोड़ में हम लोगों को शरीर मिला है, तो आपका शरीर को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे रखना चाहिए,
0: बिल्कुल ये हमें सोचना है,
1: ये सोचना चाहिए।
0: सही कहा।
1: और ऊपर वाला ईश्वर ने जब आपको 84 लाख करोड़ में भेजा है तो सब खुदी से आपको भेजा है, सब कुछ है आपके पास।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो लेकिन हम कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं,
1: हाँ,
0: ये हम पर निर्भर करता है। वैसे सोहन जी आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि पता है ये हर शब्द जो आप बोल रहे हैं वो बहुत आवश्यक है हर इंसान को ये समझने के लिए कि क्या करना है क्या नहीं करना
1: तो
0: है।
1: मैं ये कहूँगा हर मनुष्य जो धरती पर है,
0: हाँ,
1: रोज शाम सुबह परम परम परम महाशांति बोलिए आपके आत्मा के शांति के लिए।
0: बिल्कुल सही,
1: क्योंकि हमारा आत्मा में रिकॉर्डिंग है, जो गलत कर रहे हैं जो बुरा कर रहे हैं वो सब रिकॉर्ड कर रहा है, वो अगले ना अगले कोई ना कोई जन्म
0: कहीं ना कहीं किसी ना किसी समय पर आपको उससे गुजरना होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सोहन जी, और मैं पूरी तरह से सहमत हूँ आप जो भी कह रहे हैं।
1: तो मैं कहूँगा बहुत बहुत धन्यवाद।
0: हाँ जी आपको भी,
1: लोग आपने हमारा लाइन दिया बात करने के लिए, मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत धन्यवाद।
1: और जितने लोग सुना सबके धन्यवाद, और हम सबके कहेंगे कि उस ईश्वर में विश्वास करो और परम परम शांति बोलते चलो,
0: हाँ,
1: और मीठा बुलाल हंसते रहो, हंसाते रहो।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल हमारे जितने भी श्रोता जुड़ते हैं कुछ ऐसी बातें लेकर आते हैं जो हमारे ज़िंदगी पर बीत चुकी है, उन सारी चीज़ों को लेकर हम अपने अनुभव को बांटते हैं, साझा करते हैं। और यहाँ आपकी चिट्ठी मिली कार्यक्रम भी एक ऐसा कार्यक्रम है जहाँ पर अपने अनुभव के साथ या जीवन पर बीतने वाली कुछ ऐसी घटनाएँ हैं या कुछ ऐसी बात जो आप बीती है, आप पर बीत चुकी है, आप चाहते हैं इस बात को शेयर करना। आज के इस कार्यक्रम में हमारे जितने भी श्रोताओं ने भाग लिया, जितने भी लोगों ने इस वक्त रेडियो के माध्यम से इस कार्यक्रम को सुना, दिल से आपको कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल ये कार्यक्रम आप ही का कार्यक्रम है, आपकी चिट्ठी मिली, जो हर शुक्रवार को शाम को 4 बजे से 5 बजे के बीच चलता है रेडियो मनोरंजन की लहरों पर। तो चलिए इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को तो यहाँ फुल स्टॉप लगाने का समय हो चला है, पर कहीं मत जाइएगा, इस कार्यक्रम के बाद आपका साथ देंगे रोशन हरनाम जी, जो उनकी लाजवाब नटखट बातों के साथ आपका दिल लुभाते हैं और आपके साथ कुछ खेल अंदाज में इस कार्यक्रम को सजाते हैं कलाकार के बात लेकर। अभी थोड़ी ही देर में वे उपस्थित होंगे, तो ज़रूर आप दिल से उनका साथ दीजिएगा। और ये प्यारा सा गीत आज की इस हसीन शाम को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए, और इसी गीत के साथ आज की ये शाम बस यहीं समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह इसी तरह एक और नई चिट्ठी के साथ, कुछ ऐसी ही बातों के साथ। इसी के साथ रत्ना को दीजिए अनुमति, नमस्कार, शुभ संध्या आप सभी को।

0: 94.6, 98.2 आप सुन रहे हैं RM3
1: घड़ी मिलाते चला शाम के 5:12 और अभी अभी आप लोग सुन ले जा बहुत ही सुंदर सा प्रोग्राम आपकी चिट्ठी मिली अपन सखी रत्ना जी द्वारा और रत्ना जी तो दिन ब दिन भोजपुरी की दुनिया में लोकप्रिय होते जाता काहे नहीं बहुत ही मेहनत करेलन और अभी के लिए तो हर खतीर ई कार्यक्रम
2: कलाकार की बात

साथी लोगन भाई बहन लोग कैसे हो अच्छा हम तो आशा करते हैं कि बिल्कुल सुरक्षित व स्वस्थ हो अपन घर बैठे बैठे रेडियो सेट के करीब तो चला हुआ काहे कि आज है शुक्रवार और शुक्रवार के सांझ जब 5 बजेला तो दिल में घंटी बजेला कि चला कलाकार के बात के प्रोग्राम

0: के बखत हो गलबा और कलाकार आज त नहीं आल हूं अंजा तो का करी स ऐसी स्थिति में चला तो लोगे के हमनी कलाकार बना ले रस और तो हर से गो बहुत ही मजेदार सन खेल खेलब स और जोन मजेदार खेल होता तो लोग जाने ला जा प्रश्न उत्तर हमर ओर से कोई सवाल हो और तो और ओर से जवाब देके तू कर बापन कमाल तो चला पहला गाना सुना और एकर उपरांत हमनी पहला प्रश्न तोहर से बेशक पूछब जा और नंबर वन नोट कर ल 402-8070 402-8070-402-8070-402-8070-402-8070-402-8070-402-8070-402-8070-402-8070-402-8070-402-8070-402-8070-402-8070-402-8070-402-8070-402-8070-402-8070-402-8070-402-8070-402-8070-402-8070-402-8070-402-8070-402-8070-402-8070-402-8070-402-8070-402-8070-402-8070-402-8070-402-8070-402-8070-402-8070-402-8070-402-8070-402-8070-402-8070-402-8070-402-8070-402-8070-402-8070-402-8070-402-8070-402-8070-402-8070-402-8070-402-8070-402-8070-402-8070-402-8070-402-8070-402-8070-402-8070-402-8070-402-8070-402-8070-402-8070-402-8070-402-8070-402-8070-402-8070-402-8070-402-8070-402-8070-402-8070-402-8070-402-8070-402-8070-402-8070-402-8070-402-8070-402-8070-402-8070-402-8070-402-8070-402-8070-402-8070
1: Radio.

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: कलाकार के बाद

बोल दे गोरिया तो हर महबूबा हो जा। राधन राम साहा जी के गावल गाना बोल दे गोरिया भोजपुरी बजा बजे बॉयज के एल्बम से निकाला गल। बहुत दिन के बाद ये गाना चलता रेडियो के लहर पर और तोहर एकदम शानदार स्वागत करत हैं जा रेडियो मनोरंजन पर जो है तोहर एकदम बहुत ही खास रेडियो चैनल जो तोहर दिल के एकदम एकदम पास है। चल पहला प्रश्न तोहर खतीर तैयार हो गल बा और बहुत ही आसान सा बा और जब जवाब दे बा तो हमने जानी ला सकी तो लोग भोजपुरी में ही जवाब दे बा। चल भोजपुरी में हमर से बात कर जा। कैसे बात होए प्रश्न तो पहले सुन ल। और आज है 21 अगस्त 2026 यानी 21st of August है आज। और ये जो साल है 2026 एकर 233वां दिन है 223rd day of this year 233rd जू है। तो हमने के जल्दी जल्दी बताओ 4028070 पर 402-8070 पर बहुत ही आसानी से जवाब दो कि 233 के भोजपुरी में कहाँ बोल बजा। बहुत ही आसान सा प्रश्न बा 233 के 233 के भोजपुरी में तू कैसे जवाब दे बा। हमने के जवाब दो जल्दी जल्दी 402-8080-402-8070 पर और ई गाना चला सुना बहुत ही प्रेम पूर्वक।

0: continuous music. RM3.
1: कलाकार की बात।
2: कलाकार के बाद रोशन के साथ रेडियो मनोरंजन पर और एम फ्री पर हमने सवाल कर ले रही सर कि 2233 के भोजपुरी में का बोला जला और सही जवाब दिलन उदय भाई रिवाजीपुर से, विजय भाई क्लाविद सेवास्तोपुर से और रू संध्या जी पॉइंट पिमा से और ये गो बा जो हमने संगे ऑनलाइन व भी नानी ऑन एह बा चला हमने ओके सुनी लजा। हेलो
3: हेलो नमस्ते रोशन जी, कैसे बा समाचार?
2: बिल्कुल ठीक ठाक, जितना तेल उतना आचार।
3: जाना तनी अभी हमरा यही बोली बोल बा, हरे खातिर हर तहर से पूछनी कैसे बा समाचार।
2: का बात बा, बहुत ही चालाक हो है।
3: हमी के पुरखन लोग की अनमोल बोली है, कैसे भुलाब जा
2: सच्चे के है। भोजपुरी में जो बोले में जो मजा है वो और कोनो भाषा में नहीं है ना
3: जी। बस काहे के है, मैं हमी के पुरखन लोग के याद बा, हमी के नाना नानी दादा दादी जिन हमी के सिखैले हवन जा, तो ये हमी के चाहे जीवित रखे खातिर ऐसा निकल कार्यक्रम चलावे ला ना।
2: हाँ बिल्कुल, एक है संस्कृति के हमनी के छा जीवित रखते रहे के ना। तो आशा जी 233 के भोजपुरी में का बोल बजा।
3: आज 21 अगस्त एक हम बोलब सब भोजपुरी में 201 कोरी 13 दिन।
2: 201 कोरी 13 दिन बोल ल। तो चलो हमने देखब सा कंप्यूटर महाशय से पूछी रहा कि है जवाब सभी है कि नहीं। एकदम सही जवाब देला आशा जी, काहे कि एक कोरी जो ना वो कितना रिप्रेजेंट करेला, एक कोरी
3: 20
2: बिल्कुल भोजपुरी में यही तो खासियत है, एक कोरी के बोले जला 20 ना। हाँ तो बहुत ही बढ़िया, ऐसे ही तू खेलते रहिए।
3: एक खातिर हम तो धन्यवाद देव हमारे माता जी के, वो हमारा बोले लन 20 नहीं बोलिया, 20 बोलिया एक कोरी, 40 के बोलिया दू कोरी।

0: बहुत ही बढ़िया था बड़ा जन लोग के हमेशा आदर सत्कार तक करते रहे ला वो लोग संगे सीखला और हमने संगे बांटा हुआ बहुत ही धन्यवाद आशा जी
1: बहुत बहुत धन्यवाद रोशन जी और आप सभी के बोलते
0: शुभ संध्या तोहरो चल ये आशा जी रलन और चल दूसरा जो प्रश्न तोहर खातिर रखा गया बा बहुत ही आसान सा प्रश्न बा और हाल ही में मनावल गर रहल वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे यानी विश्व मानवीय दिवस ई दिवस में जोन लोग मानवीय कार्य करेलन जा जोन लोग मुश्किल में हुआ जा मुसीबत में हुआ सा वो लोग सहायता पहुँचावेलन जा मानवता के नाते वो लोग हौ सब जोन आदमी जोन मुसीबत में हुआ सा मुश्किल में हुआ सा वो लोग के मदद करेलन सा यही खातिर है जोन दिवस है यूनाइटेड नेशंस की ओर से डिक्रीड हो रहा विश्व मानवीय दिवस यानी वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे त इस दिवस पर चला सभी जो मानवीय कार्य करत हुन जा सभी के सप्रेम हमार प्रणाम जो दूसर के सहायता करे खतिर अपन जान के परवाह नहीं करे लंस मानवता की सेवा जो है ना उ त सबसे बड़ा सेवा कहलावल जाला त चला आप लोग हमनी के बतावो कि विश्व मानवता दिवस मानवीय दिवस यानी वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे अगस्त महीने के किस तारीख को मनावल जाला कौन तारीख के कौन तिथि के कौन दात के हाउ जोन विश्व मानवीय दिवस है पूरे विश्व भर में मनावल जाला 4028070092 पर आप लोगन अपन जवाब द बहुत ही ध्यानपूर्वक जवाब दिया बहुत ही सुंदर सा एगो प्रश्न है तो लोग बहुत दिमाग लगा के जवाब द और नहीं तो हम तोहर पोल खोल दे

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: कलाकार के बाद, कार के बाद,
2: कलाकार के बाद हमनी के श्रोता लोगन के साथ जेकर प्यार हमनी पर एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से बरसता आइजा स्टूडियो में तो बहुत ही पावन वातावरण हो गल बा हमनी के श्रोतागण अच्छा अच्छा बात करके हमनी के बहुत ही हर्षित करत हुए जा और हमर सवाल रहल कि जो न विश्व मानवीय दिवस है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे उ कौन सी तारीख के मनावल जला ई महीना में यानी अगस्त महीना में और सही जवाब देलन देवी जी हाईलैंड से शोभा जी वाकवा से अनिता जी रोशनवा से विजय भाई क्लब सेवास्तोपुर से अनिता जी मौदालबिया से और संध्या जी पोइंटुपी मौ से और हमनी के साथ अभी एगो बहिन बा और एगो भाई बा चल हमनी दोनों के स्वागत करी ले जा ऑन एयर और पहले हमनी बहिन से बात करब सर हेलो
3: हेलो
2: नमस्ते अनिता बहन
3: रोशन भाई नमस्ते
2: कैसे बा चलता
3: ठीक बात चलता
2: हाँ कलाकार के बात में तुहर एकदम बढ़िया चौचक स्वागत बा
3: हाँ हाँ ठीक बा बहुत धन्यवाद
2: हमेशा हमनी तुहरा स्वागत करते रही ला सब श्रोतागण के तो चलो हाँ। बोला हमनी के कौन जवाब दे बा
3: हमर जवाब भ ले जिसने उत दे लाने दे मिलतवा
2: हाँ 19 अगस्त यानी 19 अगस्त को हर साल के है विश्व मानवीय दिवस मनावल जाला है ना बहुत धन्यवाद चलो दूसर लाइन पे हमने देखे ना जाके हेलो
4: हेलो नमस्ते रोशन भाई
2: हाँ भाई विजय जी तुहर स्वागत है भाई विजय जी तू एगो प्रोग्राम के बहुत ही फेसफुल लिसनर हो हमेशा आते रहे ला बहुत धन्यवाद
4: बहुत धन्यवाद और अनीता बहन के भी बताए नमस्ते हर आशा आशा जी की भी नमस्ते जितना जाना सुना था और आपके आपके टीम के भी ऐसा जोड़ी जोड़ी प्रोग्राम के आने लगे हमने के घर में हमने के रेडियो में
2: धन्यवाद भाई जी बहुत धन्यवाद तुहरा बोला कौन जवाब दे
4: उन्नीस
2: जैसे अनिता जी बोलन तुहरो जवाब तो चलो विजय भाई के लिए और अनिता जी के लिए हमने तरी थपरी मार ले ल बहुत ही बढ़िया फोन करे ला जा तुहर लाइन लगेला इतना मेहनत करे ला जा थपड़ी छाना बजाए के हमने के ना बहुत धन्यवाद अच्छा धन्यवाद भाई बहन दोनों के
3: धन्यवाद
2: शुभ संध्या
4: धन्यवाद
2: धन्यवाद तहिरलन अनिता जी ओशनवा से और क्रावित से वस्तुपुर से भाई विजय जी चलो अगला प्रश्न तुहर

फिर जरा गौर से सुना जाओ और हम नीता जानी ला सके तो लोग अपन संस्कृति के खूबे मान्यता देवे ला जा तो चल अभी श्रावण मास चलता जो न रक्षाबंधन के पर्व से समाप्त हो जा यानी 28 अगस्त तक हमनी श्रावण मास मनावब जा ई पावन मास में हवन यज्ञ वेद पाठ वेद प्रचार प्रसार त होइते लहेला खूबे होवेला सगरो सगरो और ईश्वर के प्रार्थना हमनी करी ल जा परंतु ईश्वर के जो वंदना है ई खाली श्रावण मास में नहीं चाहना करे की त रोज के रोज प्रतिदिन हमनी के चाहना करे के ईश्वर के आस्था में हमनी विश्वास रखी ल सत ईश्वर के हमनी के मन में हमेशा चाहना बसावे के हमनी के एगो मंत्र ढूंढ के बतावा जा उ मंत्र के भावार्थ हम भोजपुरी में करब और तू मंत्र पहचान अपन बुद्धि से काम ल और जरा बहुत ही श्री राम के नाम लेके हम के जवाब द और मंत्र के जो भावार्थ है उ ई प्रकार है हमनी के तो हमनी के चैना तोहरा मंत्र बोले के संस्कृत में तो कर भोजपुरी में भावार्थ इस प्रकार है हे प्रभु आप हमनी के झूठ से सच की ओर ले चल हमनी के झूठ से सच की ओर ले चल हमनी के अंधार से रोशनी की ओर ले चल हे प्रभु और हमनी के मृत्यु से अमरता की ओर ले चल हे प्रभु ई कौन मंत्र है हमनी के जल्दी जल्दी बताओ और हमनी के गाना सुना पहले और हमनी तुहर इंतजार कर रहे थे सर 4028070 4028070 जिस पर बड़ा ही आसान सा प्रश्न बातें

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan. कलाकार की बात, कार की बात।
1: कलाकार के बाद ये प्रोग्राम चलता तो हर साथ है जाता चलता सितारों की बारात और भोजपुरी के गीतवन के होता बरसात और हमने के प्रश्न ये प्रकार रहल कि हे प्रभु हमने के झूठ से सच की ओर ले चला अंधार से प्रकाश की ओर ले चला और मृत्यु से अमरता की ओर ले चला एकर जो न भावात हम तोहरा भी बतैली एकर जो न मंत्र है वो कौन सा संस्कृत मंत्र है और त्यागूर से बिना जी सही जवाब दिलन मौसम से तंत्र से जया जी भी जवाब दिलन ग्रांड रिव्यानो ओटवेस से प्रीति जी जवाब दिलन और संध्या जी एक बार फिर पॉइंट ओपी मौ से अपन सही जवाब दिलन तो हमनी के संगे दू गो बहिन बा उ दोनों के हमनी आज हैजा स्वागत करत हैं जा सबसे पहले हमनी वीना बहन से बात करब जा ओकर बाद में जया बहन से बात करब जा हेलो वीना बहन
2: हेलो रोशन भाई नमस्ते
1: नमस्ते एक बार फिर वीना बहन हाँ
2: बहुत बहुत नमस्ते और कार्यक्रम तो दिन पर दिन बहुत चकाचक खुल जाता है
1: धन्यवाद बहन तो हर प्यार खातिर
2: हाँ और सब है कार्यक्रम के जो प्रेमी जन हवन जा मिसेस की सब के हम अभिवादन करत हैं और सब के प्रणाम बोलत हैं
1: बहुत धन्यवाद बहन
2: कार्यक्रम में रुचि दिखावे खातिर लोग उमड़ उमड़ के आवेलन जा फोन करेलन जा
1: इतना मीठा मीठा शब्द बोलत हुआ हमारा दिल तक गदगद हो गल
2: तो कोई बात नहीं क्योंकि काम ही ऐसा गलत हुआ ना
1: अच्छा बोला बिना बहन
2: शाबाशी चाहिए देवी की
1: धन्यवाद बोला कौन जवाब देव कौन मंत्र का उच्चारण कर
2: बोला था जो भावार्थ बोल रहा है वो वेद ही के मंत्र है बचपन से हमने बोले आल है जब माता पिता से ये सीख ले जब प्रार्थना के समय संध्या के समय और अभी तक हमने बोली ला जा तो मंत्र है

0: बहुत ही अच्छी तरीके से तो ये मंत्र के उच्चारण कर ला, तुम्हारा जो प्रोनंसिएशन है जैसे शब्द उच्चारण बहुत ही अच्छा रहा वीना बहन जी। चलो हम नी जया बहन जी से बात कर अब सर।
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: धन्यवाद वीना बहन जी। देख अब सर की तुम्हारे जवाब
1: कार्यक्रम करते रहिए, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको।
0: धन्यवाद आपको बहन जी। तुम्हारे कहती जोरदार तालियां हो जाए। चलो जया बहन से बात कर अब सर। जया बहन जी हेलो
2: जी। हाँ
0: हाँ तो हर हाँ, आदमी सुनत है जया बहन जी। नमस्ते मौसम मौसम तो से हमने से बात करत हुआ ना
2: जी। हाँ
0: हाँ बोला जया बहन जी, कैसे लगा था तुम्हारा ये प्रोग्राम हुआ?
2: प्रोग्राम बहुत अच्छा
0: बा। अच्छा बात
2: तो सीखत है सही से।
0: बहुत अच्छा
2: बांटा सही सर। हाँ
0: सीखे के चाहे ना बांटे के चाहे।

0: है ना। सचमुच ज्ञान जो ना अपन सीमित तक अपन तक सीमित नहीं चाह रखे के बौंडबत और ज्ञान बढ़े ला ना। बोला बहन कौन कौन मंत्र है बोला हमने के
1: मंत्र ओम सतो मा तद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतम गमया।
0: बहुत ही बढ़िया
1: शांति शांति शांति ही तो रोज हम बोलते हैं सुबह शाम।
0: बिल्कुल सुबह शाम ये जो वेद मंत्र है उपनिषद में भी है ये और इसी मंत्र को आप हमेशा उच्चारण करते रहें हर हर दम हर पल है ना। बिल्कुल बहुत धन्यवाद जया बहन बीना बहन जी के लिए और जया बहन जी के लिए बधाई हो। ओके धन्यवाद
1: नमस्ते
0: नमस्ते नमस्ते। तो ये रहल जया जी और वीना जी सही जवाब दे रंजा और हमनी के अगला प्रश्न चला थोड़ा हमनी इतिहास के पन्ना तनी उल्टप सा पलटप सा अतीत में जाप सा। आज ही के दिन 1911 में यानी आज तो 21 अगस्त है और 21 अगस्त 1911 में मशहूर चित्रकार लियोनार्डो दा विंची के नहीं जाने लन है इटालियन चित्रकार के महान चित्रकार लन आर्टिस्ट जैसे बोली लस रेनेसांस इटाली जो ना उमें बहुत ही मशहूर कलाकार लन लियोनार्डो दा विंची। तो ओकर एगो विचित्र और बहुत ही प्रसिद्ध चित्र रहल जो लूव्र म्यूजियम में जो पारी में जो मीजे है जेकर नाम लूव्र है जो दुनिया के सबसे प्रसिद्ध आर्ट म्यूजियम है लूव्र दे पारी हो जा हो चित्र के प्रदर्शन करर ग्रह और हो जे है चित्र बाभिले है कोची हो रहल 1911 में 21 अगस्त के है जो चित्र रहल उ बिलागल के एगो जो कर्मचारी रहल इ चित्र के चोरी करके भाग रहल। तब बाद में 2 साल बाद में इ चित्र के पता चलल इताली में। हमनी कौन चित्र के बारे में चर्चा करत हैं जा बहुत ही आसान है जो सबसे ज़्यादा जेकर विजिटेड चित्र है जो बहुत से लोग इ चित्र के माने लन जा और सराहना करे लन जा उ चित्र के नाम हमनी के बताबो जो लियोनार्डो दा विंची ये चित्र के बने ले रलन 4028070 4028070 पर हमनी के जवाब दा

कलाकार के बाद रोशन के साथ एक बहुत ही आसान सा प्रश्न रहल तोहर खातिर जोन लियोनार्डो दा विंची रहल इटालियन पेंटर बहुत ही एगो सुंदर चित्र बने रे रलन जो आज के दिन 1911 में गुम हो गल और उस चित्र के नाम है मोनालिसा। बिल्कुल मोनालिसा बहुत ही आसान सा प्रश्न रहल और सही जवाब दे रन संध्या जी पोंतोपिमो से, प्रीति जी ग्रैंड रिवियन ओडवेस से और वीना जी त्यागूज से। तो चलो यही प्रश्न से आज के कार्यक्रम समाप्त हो गल कलाकार के बाद काहे कि किरण जन की जी चलाल होन है जा अपन कार्यक्रम हमारी धरोहर प्रस्तुत करने के लिए। तो चलो ओके बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिया जा और तो लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक है ये प्रोग्राम सुन ला भाग ले ला और सवाल के जवाब दे ला। ऐसे ही दिमागी कसरत करते रहिए और अपन ख्याल रखिए, सेहत बहुत ही महत्वपूर्ण है। तनाव से अपन सेहत की बिगड़िया कबो नहीं और व्यायाम करते रहिए और हमर ओर से नमस्कार और शुभ रात्रि तोहरा।

0: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।
1: नमस्ते, हमारी धरोहर में आप सबको के स्वागत बा। 19 अगस्त के दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण धरोहर पर आज हमने चर्चा करब जा, और वह वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, मानवतावाद दिवस, जो 19 अगस्त के मनावल जाला। और ये दिवस यूनाइटेड नेशंस के घोषणा पर मनावे के शुरू करल गल बा, और एक उद्देश्य है दुनिया के बेहतर बनावे के। मानवतावाद सबसे बड़ा हमनी के पूंजी है, जेकर माध्यम से सकब जा ई दुनिया के एगो बेहतर जगह बनावे सब कोई खातिर। और ई दिन उ सब लोग के याद करे के और उ लोग के सम्मान देवे के भी मौका है जे लोग मानवतावाद कार्य कर ले हवन जा। मानवता कर्मी हमनी के ई दुनिया में बहुत हवन जा, जे लोग अपन सहयोग दे ले आल हवन जा। सकेला तू नहीं जानत हुई बा कि ई मानवतावाद भी एगो धरोहर है, सबसे कीमती धरोहर। धरोहर के मतलब है पुरखन द्वारा छोड़ल गल मूल्य। यूनाइटेड नेशंस मानवतावाद खातिर चार गो शर्त रखले बा, और ये शर्त में सबसे आगे तो ई बोलल गल बा कि मानवतावाद दिवस एक दिन नहीं बल्कि चाहिए हर दिन मनावे के। और चार गो शर्त ई है, ह्यूमैनिटी मतलब कि मानवतावाद इंसानियत, दूसरा है न्यूट्रलिटी मतलब कि हर स्थिति में चाहिए आपके बराबर रह के, पक्षपात नहीं करे के। इम्पार्शलिटी कोई के गिरावे के नहीं, कोई के पार नहीं लेवे के। और चौथा है इंडिपेंडेंस मतलब कि स्वतंत्र रह के। मानवतावाद के मतलब जहाँ कहूँ कोनो व्यक्ति के आप देखबा मुश्किल में उर जे होई, तो आपके चाहिए अपन ओर से कोनो न कोनो रूप में ओकर सहायता करेगे। मानवतावाद के अर्थ है जान बचावे के, स्वास्थ्य के सुरक्षा करे के, और हर एक व्यक्ति के आदर इज्जत करे के। और जो दूसरा शर्त है न्यूट्रलिटी मतलब कि मानवतावादी इंसान के हिंसात्मक गतिविधि में

भाग नहीं लेवेगी, कोनो ऐसा विवाद में नहीं पड़ेगी जोन चाहे वो राजनीतिक रही, जातीय रही, धार्मिक रही या आदर्शवाद प्रकृति के रही। आपके चाहे हमेशा ऐसा गतिविधि में शामिल होवे के जहाँ पर अहिंसा बा। अब तीसरा है इम्पार्शलिटी, मतलब कि इंसानियत कर्म चाहे जरूरत के हिसाब से करे के, जो इन सबसे अर्जेंट केस बा, आपात स्थिति बा, ऊपर ध्यान देवे के और समय देवे के, और जाति धर्म देश जेंडर और पॉलिटिकल विचार के आधार पर कोनो काम नहीं करे के, कोनो मतलब कि नज़रअंदाज नहीं करे के, दूजा भाव नहीं रखे के। चौथा है स्वतंत्रता, यानी कि मानवतावादी कार्य चाहे एकदम स्वतंत्र होके करे के, आज़ाद जहाँ ह्यूमैनिटेरियन कार्य होवेला हुआ राजनीति इकोनॉमी मिलिट्री पर कोनो ध्यान नहीं चाहे देवे के, और मानवतावादी लोग के चाहे एकदम कटिबद्ध रहे के, संवेदनशील रहे के, आशावादी दृढ़ और सहनशील रहे के, और यही लोग दुनिया के असली हीरो और हीरोइन हवन जा। यूनेस्को ई बात पर जोर देली बा कि औरत और नौजवान लोग के चाहे ह्यूमैनिटेरियन गतिविधि में जस्ती से जस्ती भाग लेवे के। कार्यक्रम के ध्यान से सुनला, बहुत धन्यवाद, नमस्ते।

0: नमस्कार, 6 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। नजर आज की सुर्खियों पर। आज पोटली में जैव ईंधन और रिन्यूएबल ऊर्जा के रणनीतिक ढांचे का की लॉन्चिंग की गई। इससे पहले भारत के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और ऊर्जा मंत्री पैट्रिक आस्यावदन के बीच द्विपक्षीय बैठक। फिकोफ्लक में गाला डिनर के दौरान चाइनीज बिजनेस चैंबर ऑफ मॉरिशस की 28वीं वर्षगांठ मनाई गई। प्रधानमंत्री ने व्यापारिक समुदाय के योगदान की सराहना करते हुए आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए नौकरशाही की बाधाएं कम करने का आह्वान किया। 6 महीने बाद पेनल्टी पॉइंट सिस्टम का असर सामने आया। 31 जनवरी से 31 जुलाई 2026 तक की रिपोर्ट में 5 प्रमुख यातायात उल्लंघन दर्ज किए गए। इनमें तेज गति और सी बेल्ट नहीं पहनने से आम उल्लंघनों में ये शामिल रहे। विदेश में कोलंबिया में एक अवैध सोने की खदान में हुए भूस्खलन में कम से कम 13 लोग मारे गए और 7 अन्य घायल बताए जाते हैं। नमस्कार, इन सुर्खियों को अब देते हैं विस्तार। सबसे पहले बात करते हैं कृषि उद्योग सेक्टर के बारे में। इन दिनों फागे एआई का इस्तेमाल करके नई कृषि पद्धतियों को उभारने की कोशिश कर रहा है। सुनिए रिपोर्ट।
1: जलवायु परिवर्तन, मिट्टी का बहाव, पानी की कमी, ये मॉरिशस में कृषि क्षेत्र के सामने मौजूद कुछ प्रमुख चुनौतियाँ हैं। इनसे निपटने के लिए तत्काल समाधान जरूरी है और प्रिसिजन फार्मिंग एक महत्वपूर्ण समाधान साबित हो सकता है। हम क्यों सही और टिकाऊ तरीके से खेती नहीं कर पा रहे हैं? फागे काम करने के तरीकों और स्कीम्स पर फिर से

0: गौर कर रहा है। ये जान ले कि प्रिसिजन फार्मिंग मॉरिशस में पहले से ही काफी हद तक मौजूद है। हमने सभी पशुपालकों के लिए एक निशुल्क एप्लीकेशन बनाया है। इसके जरिए इनवॉइसिंग से लेकर पैदावार तक सभी प्रणालियों पर नजर रखी जा सकती है। मैं मशरूम को अंगूर के पौधे के साथ संक्रामक वातावरण में उगाने में सफल रहा हूँ। मेरा उद्योग अब आगे बढ़ रहा है। खेतिहरों और पशुपालकों को उपकरणों के इस्तेमाल के लिए प्रेरित करने के वास्ते कृषि उद्योग मंत्रालय और फाहे ने औपचारिक रूप से प्रिसिजन फार्मिंग एंड AI ड्रिवन फूड प्रोडक्शन स्कीम की लॉन्चिंग की है। प्रिसिजन फार्मिंग एंड AI ड्रिवन फूड प्रोडक्शन स्कीम के लिए 2 मिलियन रुपए निर्धारित किए गए हैं। पहले चरण में 40% फाइनेंसिंग, दूसरे चरण में 75% काम पूरा होने के बाद 30% और तीसरे चरण के तहत स्कीम की पूरी रकम मिलेगी। समारोह के मुख्य अतिथि मंत्री अरविंद बुलेल ने कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण पर जोर दिया। उनका कहना है कि कृषि में नवाचार और रचनात्मकता विकसित करना जरूरी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज बहुत सहायक है और खेतीहर तथा पशुपालक इसे अपना रहे हैं। उन्हें AI से भूमि की किस्म, उसकी गुणवत्ता, बीज, फसल, पानी की मात्रा और मंडी के बारे में सभी जानकारियां मिल जाती हैं। हम नौजवानों को आकर्षित करना चाहते हैं क्लीन एग्रीकल्चर की ओर। जूनियर मंत्री फैब्रिस दाविद ने कृषि क्षेत्र में अनुभवों को साझा करने के महत्व पर प्रकाश डाला।
1: L'intelligence artificielle, pas pour remplacer
0: l'expérience. AI मनुष्यों की जगह नहीं लेगा, लेकिन नए उपकरण साथ लाएगा जिससे पैदावार बढ़ेगी, मात्रा, किस्म, गुणवत्ता बढ़ेगी, रासायनिक पदार्थों पर निर्भरता कम होगी, दाम में कमी आएगी, खेतिहर पानी की बचत कर पाएंगे। फाहे द्वारा हाल में किए गए अध्ययन में 365 खेतिहरों में से 80% ने इंटेलिजेंट फार्मिंग के पक्ष में जवाब दिए।
2: तो अभी आप याचना मिश्रा को सुन रहे थे। तो आज पोटली में रिन्यूएबल ऊर्जा के रणनीतिक ढांचे की औपचारिक लॉन्चिंग की गई। हम आपको बता रहे थे कि इससे पहले भारत के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस उद्योग मंत्री हरदीप सिंह पुरी और ऊर्जा मंत्री पैट्रिक अस्यावादन के बीच द्विपक्षीय बैठक लगी। 2024 में मॉरिशस को ग्लोबल बायोफ्यूएल अलायंस के बायोफ्यूएल्स पॉलिसी फ्रेमवर्क के लिए पहला पायलट देश चुना गया था। परियोजनाओं को भारत का समर्थन प्राप्त है। और कल के बुलेटिनों में इसकी चर्चा हमने आपके साथ की थी कि मॉरिशस और भारत के बीच पेट्रोलियम सामानों की खरीद के मुद्दे पर एक समझौता तय हुआ है। सुमेरा अकबर अली।
3: सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम की औपचारिक भारत यात्रा के दौरान पेट्रोलियम पैदावारों की सप्लाई का मुद्दा चर्चा में रहा था। इस साल की शुरुआत में AI इंपैक्ट समिट के दौरान श्री नरेंद्र मोदी के साथ फिर से ये मुद्दा उठाया गया था। कल पोटली में इन सभी बातचीत को सच्चाई का रूप दिया गया जो मध्य पूर्व की जंग से पहले की जाती आ रही है। इस युद्ध की वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी आई है। पोटली में 2 दस्तावेजों का आदान प्रदान किया गया। पहली मर्शन और भारतीय सरकारों की प्रोटोकॉल संधि और दूसरी दस्तावेज इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के बीच एक सेल्स एंड परचेस एग्रीमेंट की रही। डॉक्टर नवीन राम गुलाम बताते हैं,
4: द साइनिंग ऑफ दिस मेमोरेंडम इज ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर मॉरिशस, वन दैट विल अबव एवरीथिंग एल्स।
3: ये प्रोटोकॉल संधि मॉरिशस के लिए रणनीतिक अहमियत रखती है। सबसे पहले हमारी ऊर्जा सुरक्षा, हमारी अर्थनीति और पक्के तरीके से दोनों देशों की सॉलिडारिटी और भरोसेमंद रिश्तों को मजबूत किया गया है। सरकार और मॉरिशन जनता की तरफ से भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बहुत आभारी हैं, जिन्होंने मॉरिशस और भारत की साझेदारी को मजबूत करने में खुद कटिबद्धता दिखाई। मॉरिशस के लिए ये प्रोटोकॉल समझौता एक संगीन वक्त पर तय हुआ है, जब ऊर्जा की वैश्विक मंडियां अभूतपूर्व बदलावों और अस्थिरताओं का सामना कर रही है।
4: Critical juncture when global energy markets are beset by unprecedented volatility.
3: ये G2G समझौता 5 सालों के लिए है। सितंबर के आखिर में इंडियन ऑयल रिफाइनरी से पहली खेप के पहुंचने का इंतजार है। भारतीय पेट्रोल और नेचुरल गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ये तरक्की न सिर्फ एक सादा व्यापारिक ट्रांजैक्शन है बल्कि दोनों

0: देशों का भरोसा दर्शाती हैं। हरदीप सिंह पुरी बताते हैं, अब मॉरिशस में ईंधन की सप्लाई की सुरक्षा टेंडर प्रक्रिया से जुड़ी अनिश्चितता पर निर्भर नहीं रहेगी, बल्कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ से 5 सालों की गारंटीड सप्लाई कमिटमेंट पर आधारित होगी। ये कटिबद्धता मॉरिशस की पूरी आयात जरूरतों को पूरा करेगी। ये वास्तव में अपनी तरह का पहला समझौता है जो किसी भारतीय सरकारी तेल कंपनी ने दक्षिण एशिया के बाहर किसी देश के साथ किया है। भारत सिर्फ ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है, बल्कि दुनिया के बाकी हिस्सों को रिफाइंड पेट्रोली पैदावारों का निर्यातक भी है। हम इस क्षमता को सिर्फ अपना अधिकार नहीं समझते, हम इसे एक जिम्मेदारी के रूप में देखते हैं। दुनिया भर में अपने दोस्तों और साझेदारों के लिए एक भरोसेमंद, पारदर्शी और स्थिर ऊर्जा स्रोत बनना। डॉक्टर नवीन रामगुलाम के मुताबिक, देश की ऊर्जा सुरक्षा की हिफाजत करने में ये रणनीतिक समझौता बड़ी अहमियत रखता है। वे बताते हैं, भारत एक बार फिर मॉरिशस की समृद्धि और मजबूती के प्रति अपनी अटल प्रतिबद्धता का प्रदर्शन कर रहा है। दस्तखत किए गए ये समझौता राजनीतिक इच्छा शक्ति को ठोस और स्पष्ट परिणामों में बदलने के इरादे को दर्शाता है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री की हैसियत से मैं अपनी सरकार की इस प्रतिबद्धता को दोहराता हूँ कि मॉरिशस और भारत के बीच के विशेष और रणनीतिक साझेदारी को और गहरा किया जाएगा। ये साझेदारी हमारे साझा इतिहास, हमारे मूल्यों और आपसी भरोसे जैसे मजबूत स्तंभों पर आधारित है।
1: ट्रस्ट एंड सॉलिडारिटी।
0: भारतीय प्रधानमंत्री के मिशन के दौरान ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने, हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर बात करने तथा ग्रीन ऊर्जा की ओर परिवर्तन पर चर्चाएं हुई।
2: समुद्र की लहरें कितनी ऊंची हैं और समुद्र की स्थिति कैसी है, अब इसकी जानकारी तुरंत मिल सकेगी। भारतीय सरकार की ओर से दिए गए वेव गेज यानी समुद्री लहरों को मापने वाले उपकरण से मिलने वाले आंकड़ों के लिए एक नया डिजिटल मंच तैयार किया गया है। ये उपकरण एक साल से अधिक समय से काम कर रहा है। इससे समुद्री लहरों में होने वाले बदलाव को समझने और समुद्र से जुड़े खतरों के लिए बेहतर तैयारी करने में मदद मिलेगी। देश में खाद्य आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए सरकार स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। इसी के तहत बीज उत्पादन, स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल नई किस्मों के विकास, उनकी बिक्री और किसानों को जानकारी देने पर जोर है। फेरिना या न्यूआ 45 नाम की सेम की किस्म को अच्छी पैदावार और आयरन की अधिक मात्रा के कारण चुना गया है। सरकार इसके बीज पर 75% की सहायता दे रही है। इसके बीज और एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड में 130 रुपए प्रति किलो की दर से उपलब्ध है। और अब रुक करते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल स्लेवरी म्यूजियम की ओर। वहां की मरम्मत कार्य योजना जल्द ही संपन्न की जाएगी। वहां पर कई अर्ध प्रतिमाओं का संरक्षण किया जा रहा है।
3: फोबियाविल की प्रतिमाएं प्लास्टर से बनी हैं, जिन्हें 19वीं सदी में मानव शास्त्री यूजेन डी फोबियाविल ने मॉरिशस के गुलामों के चेहरों के सांचे से तैयार किया था। उस समय के गुलामों के कुल 53 चेहरों में से 3 बस्त पहले से ही इंटरकॉन्टिनेंटल स्लेवरी म्यूजियम में प्रदर्शित हैं। कभी गोदाम के रूप में इस्तेमाल पोर्टवी का पुराना सैन्य अस्पताल निकट भविष्य में इन सभी प्रतिमाओं को प्रदर्शित करेगा। इसके लिए जगह पर्याप्त है, लेकिन पहले पुनर्स्थापना का काम करना जरूरी है। बहुत काम बाकी है, लेकिन पूरा हो सकता है। हम इसे योग्य बनाना चाहते हैं पूरे कलेक्शन को प्रदर्शित करने के लिए। इसके लिए मरम्मत और एयर कंडीशनिंग की जरूरत होगी।
4: Mais pour cela, évidemment, il va falloir travailler sur l'isolation du bâtiment, sur la climatisation.
3: पहले से प्रदर्शित 3 बस्त फिलहाल कांच की सुरक्षा के भीतर रखे गए हैं ताकि उन्हें किसी भी तरह के नुकसान से बचाया जा सके। म्यूजियम की योजना है कि बाकी 50 बस्त को अलग तरीके से प्रदर्शित किया जाए।
4: Ça va être un échange avec les équipes de Blois et les équipes de l'ISM.
3: हम चाहते हैं कि इन प्रतिमाओं को खुले में प्रदर्शित किया जाए और न कि कांच के पीछे, जो कि एक बाधा की तरह है। फ्रांस के शैटो रॉयल दे ब्लुआ में रखे गए बाकी बस्त को मॉरिशस लाने के लिए पूरी तरह की लॉजिस्टिक व्यवस्था की आवश्यकता होगी।

0: préparation d'appels d'offres, etc.
1: Tenders adi jari hone honge jo château de Blois ki mangon ki anurup ho. France aur Mauritius ke beech ki yatra ke adhikari saath mein insurance, customs sab dekhna padega. जायजा लेने के बाद जल्द ही रिनोवेशन शुरू होने की उम्मीद है. म्यूजियम को उम्मीद है कि अगस्त 2027 तक इन सभी प्रतिमाओं को यहां प्रदर्शित किया जा सकेगा.
2: समुद्री की लहरें कितनी ऊंची हैं और समुद्र की स्थिति कैसी है अब इसकी जानकारी तुरंत मिल पाएगी. भारत सरकार की ओर से दिए गए एक वेव गेज यानी समुद्री लहरों को मापने वाले उपकरण से मिलने वाले आंकड़ों के लिए एक नया डिजिटल मंच तैयार किया गया है. ये उपकरण एक साल से अधिक समय से काम कर रहा है. इससे समुद्री लहरों में होने वाले बदलाव को समझने और समुद्र से जुड़े खतरों के लिए बेहतर तैयारी करने में मदद मिलेगी.
3: आज सुबह रिकॉर्ड किए गए आंकड़ों में बंदरगाह क्षेत्र में लहरों की कोई असामान्य गतिविधि नहीं दिखी गई. स्क्रीन पर ये आंकड़े वेव रिकॉर्डर से प्राप्त होते हैं जिसे एक वर्ष पहले समुद्र में स्थापित किया गया था. ये उपकरण पानी की सतह की गतिविधियों को लगातार रिकॉर्ड करता है.
4: Vague, par exemple, cyclonique. Et tout ça a des caractéristiques différentes, mais c'est sa fréquence-là qui permet de nous déterminer quel type de vague.
3: इस यंत्र की एक और खासियत यह हिंद महासागर के कई देशों को जोड़ने वाली प्रणाली से जुड़ा हुआ है.
4: C'est une bouée qui font partie d'un réseau, qui est un réseau régional. Dans plusieurs pays où gagne même type de bouée, donc tout relié. Et comme ça, nous cave. Connaît comment une vague peut propager à travers le bassin océanique.
3: Lekin vastav mein upkaran kaam kaise karta hai?
5: Le bouée li émet un signal par signal radio. Sa signal radio là, li transmet li vin sa l'antenne qui situé le bâtiment ici. Depuis sa l'antenne là, li al de nous un ordinateur, côté un logiciel qui automatise différentes analyses là-dedans, li envoie ça dans le plateforme de Ocean Observatory. C'est une base de données centralisée géospatiale.
3: इस उपकरण की उपयोगिता केवल समुद्र की गतिविधियों पर नजर रखने तक सीमित नहीं. इससे प्राप्त आंकड़ों का इस्तेमाल समुद्री पूर्वानुमान और समुद्र से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों के लिए किया जा सकता है.
4: En hiver, nous gagnons beaucoup anticyclone qui fait que nous gagnons beaucoup la houle depuis le sud. Et justement, ça bouée là, aidé pour constater comment ça man houle là peut propager depuis le sud jusqu'à le nord. Ici, nous recevons la donnée, mais après nous diffusons via tous les stakeholders, y compris le pôle. Et donc le pôle, là, il prend souvent une disposition qui besoin par rapport à l'état de mer qui peut être constaté.
3: इस तरह ये उपकरण महत्वपूर्ण आंकड़ों का एक मूल्यवान स्रोत बन गया है. ये हमारे समुद्री पर्यावरण को
6: Si on veut faire un parallèle, on a le cadastre au niveau de la terre, mais ce qui est différent dans la mer, c'est nous avons l'océan qui est dynamique, qui reste changé. Alors, nous pas capable, comme si dirait, mettre un système figé dans le temps. Alors, nous doit être une approche dynamique et tout le temps par rapport aux changements qui finissent dans un paramètre, nous adapter dans un système pour capable un développement soutenu.
3: बेहतर ढंग से समझने, प्रबंधित करने और उसका सतत उपयोग करने की दिशा में एक और अहम कदम है.
2: देश में खाद्य आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए सरकार स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा दे रही है. इसी के तहत बीज उत्पादन स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल नई किस्मों के विकास उनकी बिक्री और किसानों को जानकारी देने पर जोर है.
3: बासे में उमेश भोला 30 पर्च जमीन पर बीन्स की खेती करते हैं. अब वे पुरानी किस्म रेड पर्ल को छोड़कर पूरी तरह फेगिना की खेती करने का इरादा रखते हैं.
7: Ça c'est un voiture red pearl. Red pearl, les gars maladies un peu vite. Les pas résistants comme maladies. Ça c'est Fegina. Trouver son rapport même, vous mettez une différence avec ça. Ça, les résistants contre maladies.
3: फेगिना के बीजों पर 75% सब्सिडी दी जा रही है और एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड द्वारा इसे 130 रुपये प्रति किलो बेचा जा रहा है. किसानों के अनुसार इसका उत्पादन

0: लाभदायक हैं। बाजार में फिगिना लगभग 150 रुपए आधा किलो बेचा जा रहा है। फेहिना को इसके पोषण तत्वों के लिए भी चुना गया है। इसमें आयरन की मात्रा अधिक है और अनीमिया की रोकथाम के लिए उपयोगी है। फागई फिलहाल स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल नई बीन्स की किस्मों पर प्रयोग और विकास कर रहा है। ये किस्में कोलंबिया से प्राप्त हुई हैं और ट्रॉपिकल कृषि केंद्र के मार्गदर्शन में इन पर काम किया जा रहा है।
1: Nous arrive à 5 variétés prometteuses et ça va une variété là nous peut évaluer ici que le bon planteur. Nous trouver que même s'il n'est pas gagné trop beaucoup la pluie, il n'est pas gagné trop beaucoup fertilisant, mais still il est capable de vivre. Nous pas besoin de dépendre nos importations de bonnes semences des hauts parce que le prix des semences il peut se monter, il peut aller même.
0: बीन्स की खेती में अनुसंधान और विकास का उद्देश्य खाद्य पदार्थों के आयात पर होने वाले लगभग 35 बिलियन रुपए के वार्षिक खर्च को कम करना है। टिकाऊ जमीन प्रबंधन के लिए चीनी विशेषज्ञता की भी मदद ली जा रही है। इस वर्ष AMB 600 किलो बीज बेचने का इरादा रखता है। एक बीघा जमीन के लिए लगभग 100 किलो बीज की आवश्यकता होगी और इससे करीब 3 टन उत्पादन प्राप्त होने का अनुमान है।
2: पेनल्टी पॉइंट सिस्टम को लागू हुए 6 महीने हो चुके हैं। 31 जनवरी से 31 जुलाई 2026 तक के आंकड़ों में तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना और सीट बेल्ट नहीं लगाना आम यातायात उल्लंघनों में शामिल रही है। इन 6 महीनों के आंकड़े सड़कों पर नियमों के पालन और वाहन चालकों के व्यवहार की मौजूदा तस्वीर भी सामने रखते हैं। गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी के दौरान कुछ महिलाओं को डायबिटीज़ हो सकता है। इसे जेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी गर्भावस्था में होने वाली डायबिटीज़ कहा जाता है। इसका पता आमतौर पर 24वें से 28वें सप्ताह के बीच चलता है। बच्चे के जन्म के बाद ये अक्सर ठीक हो जाती है, लेकिन माँ और बच्चे की सेहत पर इसका असर पड़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरों में कैंसर के खिलाफ लड़ाई में एक नई उम्मीद, मर्क एंड को और मोडर्ना की ओर से तैयार इंटिसमेरान नाम के एक खास वैक्सीन ने त्वचा के कैंसर को दोबारा होने से रोकने में अच्छे नतीजे दिए हैं। 1000 से अधिक मरीजों पर इसका परीक्षण किया गया। शरीर के लोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने वाले इलाज के साथ दिए जाने वाले इस टीके ने कैंसर के दूसरे हिस्सों में फैलने के खतरों को भी काफ़ी कम किया है। दुनिया के मौसम पर एलनीनो का बड़ा असर पड़ने के संकेत मिल रहे हैं। प्रशांत महासागर में बन रहा एलनीनो अब तक के सबसे शक्तिशाली एलनीनो में से एक हो सकता है। समुद्र का तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा बढ़ चुका है और आने वाले महीनों में ये अंतर 3 डिग्री तक पहुंच सकता है। इसका असर बारिश, गर्मी और तूफानों पर पड़ सकता है। भारत में मानसून की बारिश सामान्य से कम रही, जबकि अटलांटिक महासागर में तूफानों की गतिविधि भी घटी है। वैज्ञानिकों की चेतावनी है कि एलनीनो और जलवायु परिवर्तन का मिला जुला असर 2027 को दुनिया का अब तक का सबसे गर्म साल बना सकता है। और अब चलिए जानते हैं कि मौसम का हाल कैसा रहेगा। हमारे इलाके पर पूर्व से आ रहे अस्थिर बादलों का असर है। आज रात को और कल सवेरे के दौरान देश के उत्तर और ऊंचाइयों पर रह रहकर बरसात होगी। शाम को पश्चिम और सेंट्रल प्लेटो पर बादल घिरे रहेंगे और बरसात हो सकती है। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। समुद्र में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 16 से 18 और अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम

साहली इलाकों पर 20 से 22 अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। सूर्यास्त होगा 5:58 पर, सूर्योदय 6:27 पर।

0: तो देश विदेश और मौसम संबंधी जानकारियों के साथ हम पहुंच गए हैं इस बुलेटिन के अंत में। तकनीकी सहायक हमारे साथ रहे फैजान, उनको हम धन्यवाद देते हैं। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर।
1: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

शोक समाचार सुनिए। मोहम्मद नूरानी मुदू 51 साल के इंतकाल कर गए हैं। उनका जनाजा आज रात के पौने दस बजे उन्हीं के घर मोगुयाव रोड कौदमास पावे से उठाकर मस्जिद रजा ले जाया जाएगा और फिर दफनाने के लिए इलाके का कब्रिस्तान। फ्यूनरल टुनाइट एट 9:45 PM। मोफियाटिल न्यू ग्रोव में 77 साल की 77 ईयर्स ओल्ड की श्री तिरबोहन टैगोर की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें सूरज के नाम से, सुकराज के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी आज दिन के दौरान उठाई गई। चंबित लेन मैडम लुलू रोजबेल में 49 साल की 49 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती किसुंती शाम की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम कुंती राम, लोग उन्हें आरती के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी कल दिन के ढाई बजे उनके पति संजय शाम के मकान रोजबेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रोजबेल की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 2:30 PM। रॉयल रोड अमोरी में 21 साल की 21 ईयर्स ओल्ड के निमालेन मुनिसोमी की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें निलविन के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी कल दिन के 10 बजे उनके पिता विसालेन मुनिसोमी के मकान अमोरी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए अमोरी ही की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। बेनोंडे दे सेंट पियर वाली दे प्रेत में 60 साल के 60 ईयर्स ओल्ड के चंद्रनाथ बुल्किया की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे उन्हीं के मकान वाली दे प्रेत से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही भूले की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। वाल्मीकि रोड बुआमोंग प्लेंडी पापाई में 30 साल के 30 ईयर्स ओल्ड के चंद्रशेखर रंगलोल की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें किलान के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी कल सुबह के 9 बजे उनके पिता दिवानंद रंगलोल के मकान प्लेंडी पापाई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पितों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 9 AM। मोफ्लेरी सेकोंस्टांस सेंट पियर में 82 ईयर्स ओल्ड की नीलामा नीलादू की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम दलापा, लोग उन्हें सिलिया के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी कल दिन के 10 बजे उनके बेटे कृष्णा नीलादू के मकान सैंपिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेकोंस्टांस की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। डब्लिया लेन बेलव्यू मोरेल में 66 ईयर्स ओल्ड के सत्यदेव सिडोनी की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके बेटे रवि अखिलेश सिडोनी के मकान बेलव्यू मोरेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लामोरी की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। रूट दे पॉम्पलमूस ला क्रोजे वाले दे प्रेत पोर्ट लुई में 60 साल

0: देखिए 60 ईयर्स ओल्ड की श्री दुर्गा लक्ष्मण की मृत्यु हो गई है। श्री दुर्गा लक्ष्मण की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल दिन के दो बजे उनके भाई विक्रम लक्ष्मण के मकान पोटवी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही भूले वाली देवघाट की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 2 PM। रॉयल रोड फोंजी साक में 73 साल के 73 ईयर्स ओल्ड की लक्ष्मी प्रसाद हीरा की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके बेटे श्री अमित हीरा के मकान फोंजी साक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फोंजी साक की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। बेटका रोड यूनियन पार्क में 88 साल के 88 ईयर्स ओल्ड के मोहर लाल सिंह राम खिलावन की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें महेश के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी कल दिन की 11 बजे उनके बेटे कैलाश राम खिलावन के मकान बेटका रोड यूनियन पार्क से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए माही जानी रोज बेल की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: RM3 Radio.
2: नमस्कार, इस समय शाम के 6:30 बज रहे हैं। हमारा आपका साथ रेडियो मनोरंजन पर हो रहा है और हम हैं सुरेखा, आपका साथ दे रहे हैं। बस इसी उम्मीद में कि आज की शाम आपके लिए बहुत शांत होगी, आज का दिन आपके लिए बहुत मंगलमय रहा होगा, बहुत सफल रहा होगा। आगे भी चलकर आपका हर पल सफलता की ओर ले जाए, आपको आपका हर कार्य पूर्ण हो, आपका हर कार्य सफल हो। इस समय 6:30 जो बजे हैं तो लेकर आए हैं हम आपके लिए नई सोच कार्यक्रम। नई सोच कार्यक्रम वो वक्त होता है कि जब हम सोचते हैं अच्छे से कि जो राह चुनी हमने, अगर वो हमें सूट नहीं करता है तो उस राह को हम बदल कर एक नया रास्ता चुनें, एक नई सोच के साथ, एक नई उमंग, नई हिम्मत के साथ बढ़ें। और जब ये रास्ता ठीक है तो इस रास्ते पर चलते हुए हम नए नए बोर्ड पर जहाँ भी कठिनाइयों का सामना करेंगे, बड़ी उम्मीदों के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ इनका सामना करेंगे। बस सोच आपका पॉजिटिव रहे, ये ही हम उम्मीद रखते हैं, तभी हम पेश करते हैं ये कार्यक्रम आपके लिए नई सोच। सो हम सुरेखा लेकर आए हैं ऐसे गाने आपके लिए जो लेकर आए हिम्मत आपके लिए। चलिए आपको हम घर परिवार मूवी का ये गाना सुनवाते हैं। नितिन मुकेश की आवाज़ है ये, और नितिन मुकेश की आवाज़ के साथ

समय की ही तो ये बात है कि हर कोई आता है तो रो कर आता है और जाते हुए उसको उसके होंठों पे हंसी होनी बहुत ज़रूरी होती है। हर कोई हंसता हुआ जाए ऐसी ही उम्मीद करेंगे हम, और इस तरह से कीजिए कि रोते रोते हंसना आप सीख लेंगे।

0: रोना बुरा नहीं होता, पर रोते रोते हंसने का जो जज्बा होता है वो बड़ा अच्छा होता है। चलिए ज़रा हम इस ज़िंदगी की पहेली को सुलझाने की कोशिश करें। ये रोना क्यों आता है, ये हंसना क्यों आता है? बस ये ज़िंदगी की पहेली अगर सुलझ जाए, इस बात को हम समझ लें, तो हमारी ज़िंदगी पहेली नहीं रह जाएगी, हमारी ज़िंदगी हमेशा सुलझी सुलझी सी रहेगी।
1: कैसी है पहेली हाय, कभी तो

0: कभी तो हंसाए।
1: चलिए कुछ ऐसा कर जाएं कि हर किसी के जीवन में, हर किसी की जिंदगी में खुशियाँ, मुस्कुराहट, प्यार और अपनापन आ जाए। और अगर ऐसा हुआ तो आपकी ज़िंदगी बहुत प्यारी रहेगी। और ऐसा करना सिर्फ हम अपनी ज़िंदगी के लिए नहीं करेंगे, वैसे खुशियाँ हम जो अपने लिए ढूंढते हैं, अगर वो खुशियाँ हम औरों में बांटें, उनकी ज़िंदगी को भी बहुत प्यारा बना दें, तो बेशक ये ज़िंदगी ज़िंदगी नज़र आएगी, ये ज़िंदगी बड़ी प्यारी नज़र आएगी।

कदम पे कोई ना कोई बहाना आपको मिलेगा इस जिंदगी को संवारने के लिए. छूट जाता है कोई भी साथ, कोई भी लम्हा, तो आगे कोई लम्हा प्यार

चलिए जरा जिंदगी को गाते चलिए। हाँ जी बेशक, जिंदगी को गीत बना के गाते चले, जिंदगी को प्यार का एक गीत बना के गाते चले, और जो गाते चलेंगे इस गीत को इसको और प्यारा प्यारा बनाते चलेंगे तो जिंदगी हमें बहुत सारी दुआएं देंगी, और जिंदगी जो दुआएं देगी तो हमारा जीवन बहुत ही खुशमय, बहुत ही शांतिमय रहेगा।

सौतन मूवी के इस गाने के साथ ही समाप्त हो जाएगा हमारा नई सोच कार्यक्रम। नई सोच कार्यक्रम में आपने साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस 7 बजे हम पेश करने वाले हैं आप लोगों के लिए दिलों की आवाज़।

0: दिलों की आवाज, की आवाज, दिलों की आवाज।
1: दिल जो भी कहेगा भाई हम तो मानेंगे, ये जो दिल है इस दिल को बहलाना हम जानते हैं। इस दिल को आप ज़रूर इतना बता दीजिएगा, दिलों की आवाज़ प्रोग्राम चल रहा है रेडियो मनोरंजन पर और हम सुरेखा हैं। हम आपके दिल को ज़रूर बहलाएंगे आपके मनपसंद गानों के साथ। तो ये आवाज़ दिल तक ज़रूर पहुंचा दीजिएगा हमारी, ताकि आपके दिल की आवाज़ हम तक पहुँच जाए। आप फरमाइशें कर सकते हैं, आप अपनी पसंद के गानों की के बारे में बता सकते हैं। अगर आप मैसेजेस द्वारा बताना चाहेंगे तो 5250-6200 नंबर होगा, और जो कॉल करना चाहते हैं तो 4028070 हमारा नंबर है। आप किसी भी माध्यम से हमें बताइए, पर बताइए ज़रूर कि कौन सा गाना आप सुनना चाह रहे हैं। फिलहाल तो आपके जीवन में सब कुछ ठीक ठाक रहे, आपके जीवन में कुछ भी गड़बड़ ना हो, आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ रहे, तरक्की ही तरक्की रहे, सफलता ही सफलता रहे, ऐसी उम्मीद करते हुए हम थ्री इडियट्स का ये गाना आपके नाम करते हैं।

ऑल इज वेल बाबा, ऑल इज वेल, ये है वो मंत्र जिससे आपका हर गम कम हो जाएगा, आपका हर दर्द कम हो जाएगा। बस इसे गाते रहिएगा। इस समय 7:06 हुए हैं और खुशी बांट रही है हमारे साथ कल्याणी जी। कल्याणी जी ने अपने पूरे परिवार के लिए, हमारे सभी सुनने वालों के लिए, हमारी पूरी टीम के लिए मांगा है 7 आसमां मूवी का गाना। बहुत बहुत शुक्रिया कल्याणी जी। और ये गाना आप जो सुनिएगा, ये होगा लता मंगेशकर की आवाज़ में और साथ देंगे उदित नारायण।

और चले हम जरा गिरीश हरलोल जी की पसंद की ओर। गिरीश हरलोल जी का कहना है कि वे सुनना चाह रहे हैं बंदिश मूवी का गाना, और बंदिश मूवी का ये गीत हम उनके नाम जरूर करेंगे।

और चलिए जरा हम गायत्री जी की पसंद की ओर बढ़ते हैं। पिच वैसे पहुंचा रहे हैं हम ये गाना, पिच वैसे स्वयं ऐसी गायत्री जी ने मांगा है फिल्म रजनीगंधा का ये गाना मुकेश की आवाज़ में, और उन्होंने ये गाना सभी सुनने वालों के लिए मांगा है। बस उम्मीद यही की है कि हर किसी के मन को भा जाए ये गाना। और गायत्री जी ने इस गाने की फरमाइश की है अपनी बहन अमृता के लिए, उनके बच्चों के लिए नेहा, क्षिति, दिव्या, सुधीर, कमलेश और सुधा के लिए, अपनी भाभी मीरा के लिए और उनकी बेटियों के लिए गिरिशा और मेधा के लिए।

0: और चलिए हम बढ़ते हैं श्वेनल जी की पसंद की ओर। श्वेनल जी श्रावण मास के अवसर पर हर भक्त को मंगल कामनाएं दे रही हैं और उनका कहना है कि नवयुवक संघ के सदस्य यानी कि ब्रह्मस्थान से निकल रहे सभी सदस्यों को मंगल कामनाएं दे रही हैं। वे एक कांवर लेकर श्रावण मास के अवसर पर गंगा तालाब की ओर जा रहे हैं और कुछ लोग तो लौट भी रहे हैं। तो भाई श्रवण, भाभी कृति, अभिनव, कियान, नाविया और तिलक फैमिली की तरफ से सभी को ओम नमः शिवाय, सभी को हर हर महादेव, सभी को मिले मंगल कामनाएं शिव जी की, सभी को मिले कैलाश पर्वत से सीधा शिव जी का आशीर्वाद, यही प्रार्थना कर रही हैं श्वेनल जी ब्रह्मस्थान के नवयुवक संघ के सभी सदस्यों के लिए और सभी भक्तों के लिए। श्वेनल जी की तरफ से ये गाना आप लोगों के नाम करते हैं हम सोनू निगम सुखविंदर सिंह की आवाज़ों में शिव जी का नाम लेते हुए। ये गाना हम अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों का है।
1: शिव शिवम शिव शिवम

ये है भूपिंदर सिंह की आवाज और ये आवाज आप आहिस्ता आहिस्ता मूवी में सुनिएगा, इसकी गहराई तो देखिएगा, इसकी गहराई तो मापिएगा। ये बस दो बातें नहीं हैं, तो बहुत गहरी बातें हैं। ये गाना हम पेश कर रहे हैं हमारे श्रोता फुलवंती जी के लिए, जो वाकवा की रहने वाली हैं। उन्होंने गाना अपनी बहन पूनम के लिए मांगा है और पूरे परिवार के लिए मांगा है।

Center 94 North South 95.6 East West 98.2 You are listening to RM3 Radio.

0: दिलों की आवाज, की आवाज, की आवाज,
1: दिलों की आवाज़ जहां होती है, दिल लेने दिल देने की बातें में छिड़ जाती है। 100 डेज मूवी का ये गाना है लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज़ों में, पॉपुलर म्यूजिक के सचिन जी की पसंद पर।

रक्षाबंधन पर्व आ रहा है, धागे तैयार हो रहे हैं, रेशम के तार तैयार हो रहे हैं। गिफ्ट तो एक बहाना है अपने भैया को या फिर अपनी बहना को थोड़ा सा पैम्पर करने का, थोड़ा उनका ख्याल रख लेने का। अपने बिजी शेड्यूल में हम टाइम कहाँ निकाल पाते हैं। ये रक्षाबंधन है जो आता है हमें अपने भैया और अपनी बहना को थोड़ा वक्त देने के लिए, अपना समय निकाल कर उनको देने के लिए। वाह, कितना प्यारा सा ये पर्व है। और इसी पर्व के अवसर पर हर कोई बड़ी खुशी मना रहा है, हर कोई तैयारी कर रहा है। पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने भैया की याद में हैं, और इनमें शामिल हैं संध्या जी। संध्या जी अपने लेट भैया मनंतर गोवर्धन जी को प्रणाम कर रही हैं, उन्हें याद कर रही हैं अपनी दो बहनों के साथ मिलकर, अनीता और कविता के साथ मिलकर। और ये गाना अपने भैया के नाम करना चाह रही हैं तीनों बहनें। चलिए ज़रा ये गाना सुने हम, और इस गाने को सुनकर हर किसी को प्रेम, हर किसी को एहसास दिलाएं कि भैया का आशीर्वाद हमेशा हमेशा बहन के साथ रहता।

चलिए जरा हम ब्रिटानिया की ओर चलते हैं। चांदनी पुरुषोत्तम जी, आप हमें सुन रही हैं। हमें उम्मीद है कि इस वक्त भी आप का रेडियो आपके साथ है, क्योंकि अब वक्त हुआ है कि हम आपकी पसंद का गाना पेश करें। जी हाँ, दिल मूवी का ये गाना है। बेशक दिलों की आवाज़ में दिल मूवी का ये गाना तो गूंजेगा ही गूंजेगा, अगर आप फरमाइश करेंगी तो। चलिए आपके नाम करते हैं ये गाना। उदित नारायण, साधना सरगम की आवाज़ें हैं।

इस समय रात्रि के 7:52 हुए हैं और अभी जो शिवमय वातावरण है, शिव भक्ति से जो पावन वातावरण है, उस वातावरण में रहकर हर भक्त का मन बड़ा ही गदगद है। आकाश जी पिछले हफ्ते से निकले हुए हैं अपनी टोली के साथ, गंगा तालाब की ओर बढ़ रहे हैं। हर हर महादेव आकाश जी और आपकी टोली को, हर हर महादेव हर भक्त को। और पिछले हफ्ते से निकले हुए हैं वे आकाश जी अपनी टोली के साथ ग्लेन पार्क तक पहुँचे हैं, थोड़ा आराम कर रहे हैं और उन्होंने अपनी टोली के लिए घूंघट मूवी का ये गाना सुनवाना चाहा है। तो वे वहाँ वे ग्लेन पार्क में हैं, अपने रास्ते में अलग अलग इलाकों से बहुत सारे कांवर्थियों को देख रहे हैं, बहुत सारे कांवर देख रहे हैं और सभी कांवर्थियों को, सभी भक्तों को, सभी पैदल यात्रियों को वो को आश गए

रहे हैं, तो आप लोगों को ये मास श्रावण मास मंगलमय हो, आप लोगों के लिए सफलता की राह बने ये मास।

और चलिए राम तेरी गंगा मैली का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज में हम सुनते हैं और ये गाना हम पेश कर रहे हैं दागन के लिए श्वेता रवीश प्रिशा लवेशा और आपाडू परिवार के लिए जो

0: दिलों की आवाज, की आवाज,
1: दिलों की आवाज, दिलों की आवाज में गुलशन जी के दिल की आवाज बहुत ही शुरुआत से हमारा साथ दे रही है। तो गुलशन जी की आवाज ये है कि वे सभी शिव भक्तों को गंगा तालाब की ओर जाने की मंगल कामनाएं दे रहे हैं। चाहे आप गंगा तालाब की ओर जा रहे हैं या गंगा तालाब से लौट रहे हैं, आप सबों को मंगल कामनाएं दे रहे हैं। गुलशन जी, शिव जी आप लोगों पर कृपा बरसाएं, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। और गुलशन जी, ये गाना फिल्म गंगा गंगा तेरी सौगंध से लिया गया, आप लोगों के लिए पेश करना चाह रहे हैं, और ख़ास तौर पर मामा प्रभा के लिए, बहन दीक्षिता के लिए, आयशा के लिए और पूरे भोला परिवार के लिए, और आप सबों को मंगल कामनाएं एक मंगल श्रावण मास के लिए।

तो बस चलिए जरा हम नजराना मूवी के गाने की ओर चलते हैं. देखिए हम फोन लेकर पढ़ने वाले हैं मैसेज सूरज शर्मा सजादा जी का. सूरज शर्मा सजादा जी हमारा साथ दे रहे हैं त्रियोले से और उन्होंने अपने बेटे निशाल के लिए और बिसेसर परिवार के लिए हमारी सखी नितुषा के लिए और हमारी पूरी टीम के लिए मांगा है एक प्यारा सा पुराना सा गाना जो है नजराना मूवी से लिया गया. लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों का ये गाना है. सूरज शर्मा सजादा जी गंगा तालाब की ओर जाने वाले सभी यात्रियों को मंगल कामनाएं दे रहे हैं श्रावण मास की और साथ ही साथ जो लोग जाने वाले हैं जो लोग शिव जी की भक्ति में डूबे हुए हैं उनके नाम कर रहे हैं ये गाना. और ये इधर हमारे साथ है देवी जी जो क्यूपिप के रहने वाली है उनके लिए हम पेश कर रहे हैं नजराना मूवी का ये गीत. चलिए जरा देखते सुनते हैं ये गाना एंजॉय करते हैं मुकेश की आवाज़. ये गाना हम पेश कर रहे हैं ब्रह्मस्थान की उषा जी के लिए भी. उषा जी ये गाना आपकी ओर भी जाता है.

वो जो अपनी हर खुशी भुला के हमें खुश रखना चाहती है, वो जो अपनी हर प्रगति भुला के हमें प्रगति की राह पर चलाती है, वो जो अपना हर सुख भुला के हमारे लिए सब कुछ सब सुख बटोरती है, वो कहलाती है माँ। और माँ पर आधारित ये अगला गाना होगा जिसकी फरमाइश अब्बू जी ने की है। अब्बू जी ने ये गाना मांगा है आफेज असलम आयाज जायान साहिरा और रईस के लिए, काला छुट्टी के लिए, अपने दोस्त अप्पी के लिए और उनकी पत्नी के लिए। और मामू अबू जी ने यही गाना मांगा है अपनी भगिनी रकीबा जी के लिए, जिनकी सेहत तो आजकल थोड़ी कम अच्छी है और अबू जी दुआएं कर रहे हैं कि उनकी सेहत जल्दी जल्दी ठीक हो जाए और उनको राहत मिले अपनी बीमारी से। सो अबू जी की तरफ से ये गाना रकीबा जी के नाम भी।

मंजिलों की तलाश में जाता है हर कोई, मंजिलें अपनी जगह होती हैं, रास्ते भी अपनी जगह होते हैं, बस हमें वो हिम्मत होती है, हमें वो ताकत होती है कि हम ले चले अपने आप को अपनी मंजिल की ओर और इस रास्ते पे हम बड़ी आसानी के साथ हम चलें। तो मंजिलों की तलाश में हर कोई जो है उनके नाम करते हैं हम शराबी मूवी का ये गाना। धानी जी वाशिकी से मांग रहे हैं ये गीत और उन्होंने ये गाना यशर हेमेश के नाम किया है।

यादें हमारे जीवन में बहुत ही अहमियत रखती हैं। यादों के सहारे ही तो हम बहुत सारे पल फिर से जी लेते हैं। चलिए, यादों का ये मौसम हम वो दिन याद करो मूवी में भी महसूस करते हैं। इस फिल्म के गाने की फरमाइश करने वाले हैं पोर्ट लुइस के इब्राहिम जी। तो चलिए सुनते हैं तलत महमूद की आवाज़ और साथ में लता मंगेशकर की आवाज़।

मोहब्बत की कहानियों की तो है गहराइयाँ, आप क्या बात करिएगा। मोहब्बत दिल की गहराई में होती है और दिल की धड़कन ऊंचाई तक पहुंचती है। चलिए जरा एक गाना हम आशा भोसले की आवाज़ में पेश करते हैं। ये है तेरी बाहों में मूवी का ये गाना। ये है आशा भोसले के एक बहुत बड़े फ़ैन के लिए, बस सिर्फ फ़ैन नहीं है, फंटास्टिक फ़ैन है। ये है नवीन जी, मोत है ब्लॉश के। तो चलिए नवीन जी के नाम करते हैं ये गाना।

और चलिए जरा हलाकू मूवी का ये गाना हम मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सुनते हैं और मोहम्मद रफ़ी जी का साथ लता मंगेशकर जी दे रही हैं। पुरानी आवाज़ें, पुराना संगीत, पुराना अंदाज, बहुत ही प्यार से हम सुनते हैं और ऐसे में प्यार से सुनते सुनते हम इन गानों में डूब चलते हैं। चलिए यादों का ये सफ़र हम तय करते हैं फिनिक्स की रेहाना जी की पसंद के हिसाब से। रेहाना जी ने पसंद किया है हलाकू मूवी का ये गाना और यही गीत हम तो योली की ललिता जी के लिए पेश करते हैं। ललिता जी की तरफ से उनकी बहनों के लिए, सुदेवी, देवीना, ज्ञानी के लिए और नीता के लिए और साथ में छोटी जी, प्रभावती जी और आत्माराम जी के लिए, माला राम जवन के लिए, सुखलाल मौसी के लिए और उषा लुकाना के लिए।

0: continuous music.
1: राजीव जी ने प्लेन मानियों से मांगा है ये गाना कुमार सानुअल का याग्निक की आवाज़ों में। मुलाकातों का ये समा है, मुलाकातों का ये सफ़र है, इन मुलाकातों में बहुत ही मोहब्बत हो, बहुत ही प्यार हो, यही दुआ है हमारी। राजीव जी ने ये गाना मांगा है अपने फैन से वीना के लिए।

गाना पेश करते हैं। नंदलाल जी ने मांगा है फिल्म प्रेम रोग का ये गाना, और प्रेम रोग का ये गाना आप लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज़ों में सुनिएगा। इस गाने की फरमाइश नंदलाल जी ने की है पृथ्वीराज भाई के लिए।

0: RM3 Radio. Radio.
1: दिलों की आवाज कार्यक्रम है ये। अभी 9:03 बाकी है और आज 9 बजे के बाद भी हम दिलों की आवाज कार्यक्रम थोड़ा सा जारी रखेंगे, यानी कि लगभग 9:07 तक हम ये प्रोग्राम पेश करेंगे। सो चलिए बढ़ाते हैं आगे और फिल्मों के नामों की लिस्ट आप तक पहुंचाते हैं। हाँ जी, एक दूजे के लिए मूवी का ये गाना है जिनमें एक लंबी सी लिस्ट है फिल्मों की, और ये गाना सुनना चाह रहे हैं मोहित रफीक जी। रफीक मोहित जी की तरफ से ये गाना हमारे सभी सुनने वालों के नाम, और ताया के रफीक मोहित जी की तरफ से ये गाना हम आप सबों के नाम बड़े प्यार से पेश करते हैं।
2: ये क्या लिफ्ट बीच में क्यों रोक दी?
3: तुम्हारा साथ ज्यादा ज्यादा बहुत ज्यादा देर रहने के लिए।
2: Oh my God, मेरी तो हिंदी कविता की क्लास है।
3: हिंदी कविता है ना?
2: हाँ।
3: वो मैं तुमको टीच करता हूँ।
2: तुम और हिंदी कविता?
3: तुम समझता मैं हिंदी कविता नहीं जानता? मेरे जीवन साथी प्यार किए जा, जवानी दीवानी खूबसूरत जिद्दी पड़ोसन सत्यम शिवम सुंदरम बेनहर। वो इंग्लिश

0: शोर
1: भूल गए
2: जान मेरा नाम
1: अच्छा
2: चोरी मेरा काम जान मेरा नाम और चोरी मेरा काम राम और श्याम
1: बंडल बाज
2: लड़के मिलन गीत गाता चल
1: बेशरम
2: चार का मौसम
1: बेशरम

और चलिए हम अंतिम गाना पेश करते हैं शंकर जी के नाम का। शंकर जी के नाम का ये गाना हम बैराग मूवी से पेश कर रहे हैं महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में, और ये गाना हम फ्रीक ऑन फ्लैग की अनीता जी की तरफ से सभी उनके सब पूरे परिवार के

लिए और उनके सभी दोस्तों के लिए पेश कर रहे हैं और सभी भक्तों के नाम करते हैं ये गाना और श्रावण मास की मंगल कामनाएं दे रही है अनीता जी फ्लिकॉन फ्लैग से और हम भी हमारे सभी श्रोताओं को सभी भक्तों को शिव भक्तों को दे रहे हैं मंगल कामनाएं श्रावण मास की और हम हमारे सभी श्रोताओं को ये बताते हैं कि इस गाने के साथ ही समाप्त हो जाएगा हमारा आज का ये कार्यक्रम दिलों की आवाज़ आपके दिल की आवाज़ हम तक जो पहुंची हमारे दिल को बड़ी खुशी हुई बस तसल्ली ये है कि आप लोगों की पसंद के गाने हम आप तक पहुंचा पाए और बस दिलों की आवाज़ कार्यक्रम के बाद हम पेश करेंगे आप लोगों के लिए भोजपुरी तड़का साथ देते रहिएगा और हमारे इस कार्यक्रम में भाग लेते रहिएगा

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का।

तड़का में तो हर स्वागत करत हैं जा अभी 9:08 होल बा और ही तो हर खातिर लेके आल हैं जा हमने उ कार्यक्रम जन के इंतजार तो लग के हर रोज रहेला रोज रात के 9 से शुरू होला आज थोड़ा सा देरी हो गल और फिर भी तोहर खातिर तोहर पसंद के गाना हम जरूर चलाव जा चला शुरू करी जा हमने मुकेश चंडी जी के गावली गाना संगे कसम खाई होला गाना है चला शुरू

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का
0: तड़का
2: चला तड़का लगावा जाता नहीं भोजपुरी में हमने के कार्यक्रम में भाग ले जा और हमने के बोला जा कौन गाना सुने खोजा था वह 5251700005 हमने के नंबर है मैसेज भेजे के और जिस टेलीफोन करे खोजवा जा तो टेलीफोन कर लिया जा दो गपशप भी कर ले अब जा 4028085 पर और हमने के कार्यक्रम में भाग लेके बोला जा हमें के कौन गीत सुने खोजा था वह और सुने खोजा था वह किरा सुनाई खोजा था वह सुनवाई खोजा था बल्कि और साथ साथ थोड़ी ये थोड़ा गुनगुना भी लिया जा हमने के भोजपुरी के कार्यक्रम है एक में तड़का जब बोली ला जाता तड़का तोहर आवाज़ से भी लगे रहता संगे संगे मिल के एक कार्यक्रम प्रस्तुत करी जा।

और ये अभी संजय हरिचरण जी के गावल गाना सुनी जा। विश्वानी जी के पसीन के गाना है ही विश्वानी जी रहेलन बॉम्बू और ये गाना मंगले हवन अपन भाई शिखर के नाम। अपन भाई शिखर के ई गाना सुनवाई खोजत हवन और ये भोजपुरी के भोजपुरी बोले के खुशी रहलन उनकर भाई और उनकर भाई खुशी रहलन भोजपुरी सिखाई के भी ई खातिर गाना मंगले हवन संजय हरिचरण जी के गावल।

अभी चला संजय हरिचरण जी के गाइला गवल गाना सुन लीजा। संजय जी के तो बड़ी फरमाइश हुआ था। अभी कुछ संजय सिगुलाम जी के गावल गाना सुना जा और ये बड़ा रोमांटिक सन गाना वा। चलो हमने सुनी जाई गीत विद्या जी के पसंद पर सैंपल से। विद्या जी गाना मंगले हमन भाई मानव खातिर।

दिल तो चलिए जला जी कोई के पसंद कर लेवेला तो कर संगे ही चल जला ही दिल के हमने कितना दिन से अपन संगे रखी ला जा बस बेवफा हो जाला कबो कबो जब अपन अपन अंदर प्यार महसूस करेला चला ये दिल होला गाना के बाद प्यार होला गाना के बाद चला हमने सुनी जा मित्रो एक्सप्रेस के बारे में मित्रो एक्सप्रेस के गीतवा हमने के महेश विश्वजीत जी सुनाई हन और ये गाना मंगले हवन शांति जी त्याहूर से शांति जी गाना मंगले हवन दागुचिया के अपन पूरा मराठी परिवार खातिर अप्पा दागुचिया के अपन भगीना ओम खातिर और अपन भाई बलराम जी खातिर अपन लापुलिस भाई बलराम जी खातिर तो चला हमने गाना पूरा परिवार के नाम करी राजा

चहल पहल भी मचेला और संगे संगे हमने के चेला अनुशासन के भी पालन करे के जहां भर चली ला जा सड़क सुरक्षा हमने खातिर बहुत आवश्यक है और सड़क सुरक्षा खाली हमने गाड़ी लोग से गाड़ी चालक लोग से नहीं स्प्रे करी ला जा हमने ई एक्सपेक्ट करी ला जा कि जो पदयात्री

भवन जा जिन पद यात्री लोग भवन जा उन लोग भी करियन से खूब तरह से बहुत तरह से सड़क सुरक्षा के पालन और ऐसे में चला हमने आगे बढ़ते बढ़ते जाए ला जा ज्ञान महीपतलाल जी की आवाज़ के संगे उम्दा आवाज़ बहुत ही प्रोफेशनल आवाज़ ज्ञान महीपतलाल जी के गावरी गाना हमने आत्माराम जी के नाम करे थे जा बेरिया से आत्माराम जी गाना मंगले हवन अपन बहन लोग खातिर सुदेवी ललिता छोटी जी और प्रभावती जी खातिर और बेलिया के स्नो परिवार खातिर।

दादा दादी की कहानी चला सुनी जा हमनी और दादा दादी के ई कहानी बड़ा पीड़ा देवेला कितना पीड़ा सहले रहलन जा अपन देश छोड़ के आ रहलन जा अपन देश परिवार अपन सब कुछ छोड़ के आ रहलन जा इतना समय बीत गलन कर यात्रा में और यात्रा के बाद आके है जा पर अपन तरफ से कड़ी मेहनत कर लन जा कड़ी मेहनत भी ऐसा जहाँ पर उनका कोनो सुविधा नहीं मिला तहल बड़ी पीड़ा होला उन लोग के जीवन रहल बड़ा ही दुख भरा जीवन रहल लोग के चला ये कहानी हमने सुनी जा गासन सिंगारों जी के गावल नोवेल फ्रांस के गायत्री जी के फरमाइश पर अपन बेटा अजय खातिर मंगलवन गायत्री जी गाना और मायबू के मामी कल्याणी मोहन जी खातिर फिर मोतायलों के बाबी शकुंतला जी खातिर नोवेल फ्रांस के अपन सखी गीता बाई जी खातिर

दादा की कहानी दादी की कहानी मन के बड़ा दर्द देते वेला चल अभी कुछ सुनी जाओ हमने विश्वानी दुमन जी के पास इनके गाना और ही गाना है सुनानो यन जी के गावल विश्वानी जी गाना मंगल हवन अपन बहिन लोग खातिर उनकर बहिन हवन इंदिरा और शारदा और ये अपन सहेली लोग खातिर भी मंगल हवन गाना नीला और प्रतिभा खातिर फिर शोभा जी खातिर और गीता गजाधर जी खातिर

सुना नयन जी के गावल गाना के बाद चला गीत गवाई में चले के बाद चला हो चंदा गायला जा संगे संगे भिजमावती संपत जी के आवाज के और फुलवंती जी गाना मंगले हवन वाकवा से अपन पूरा परिवार खातिर और संगे संगे सब लोग के गाना नजर करत हवन जिनकर घर में शादी बा इस सप्ताहांत के।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी तड़का में चला सुनी जा हमनी कोन फुलवा फुलेला तो रंगदवाई सनाने यंज के गावल गाना आई तो जाने ले जा। अब ये गाना हमने से मंगले हवन श्रीमती जी सुयाग से और ये पूरा परिवार खातिर मोहेश परिवार और चंद्रमुनी परिवार खातिर मंगले हवन गाना, तो चला सुनी जा कोन फुलवा फुलेला।

जब बत्ती से धुआं निकलने लगी तो तेल डालने से क्या होगा। जब असर के भूत सर से उतर गया तो अरे गुनी बुलाने से क्या होगा। जब देवता देवी आसन छोड़ दिया तो खीर पूरी चढ़ाने से क्या होगा। आ भर पेट जब भात खा लिया तो अब खुदी चुनने से क्या होगा। अरे गंदे पानी पीकर प्या

अरे रिश्ता जोड़ने से क्या होगा, अपने घर के कुत्ता जब काट दिया तो पुलिस को बताने से क्या होगा। अरे सफेद चादर में दाग लग गई तो अरे नदी में जाकर धोने से क्या होगा, जब घर की चौखट साफ किया नहीं तो आंगन झलकाने से क्या होगा। जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने से क्या होगा, जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने से क्या

अभी श्रावण मास चलता ही पावन समय है और ये पावन समय में हम इसे फ्लिक ऑन फ्लैग के अनमृत अनिता जी मंगले होवानी को गाना गहल बहल गौरी जी के आवाज़ में और यही गाना हमने बजवाया था जब मोदाल बेया के अनिता जी के पसीन पर। अनिता जी भी बहुत बहुत मंगल कामना देवत हवन अनिता जी के संगे संगे मतलब दुगो अनिता जी मंगले होवानी को मोदाल बेया के और एक गो फ्री ऑफ फ्लैग से दोनों जना मंगले हवन जा गाना और सब को के जन जन महीना बा श्रावण मास के करके एकर खातिर मंगल कामना देवत हवन जा। अनिता लाल जी जी गाना लाल जी परिवार खातिर गोगा परिवार खातिर और ईतू परिवार खातिर मंगत हवन और अनिता फ्लिकॉन फ्लैग से मंगत हवनी गाना अपन सब परिवार लोग खातिर अपन सब संगतिया लोग खातिर और हमने के सब श्रोता लोग खातिर।

चरा पूर्णिमा फकीरा जी के गावल गाना सुनी जा गंगा मैया होला। अभी श्रावण मास के अवसर पर गंगा मैया के दर्शन शिव जी के दर्शन करे के सब भक्त लोग बढ़त हवन जा गंगा तालाब बगल। तो चला ही गाना हमने बजावत है जा कल्याणी जी खातिर बॉस्टिया से कल्याणी जी गाना मंगले हवन। गीता राधे की सुन खातिर अंजू खातिर सत्यानंद सारिक जी खातिर बड़की मुनोवा खातिर और खुद पूर्णिमा फकीरा जी खातिर।

चल अब गांगुप के सुनीता जी के बगल से, ये उनकर बगल से हमने उनकर बहिन कुंगुमा रहलन, उनकर बहिन विमान

0: लाल जी खातिर बजावा था जाई गाना यानी कि घोंगब से सुनीता जी कुंगुमा के अपन बहन विमाला के नाम करा था वन कृष्ण उखड़ जी के गावल इगी चला सुनी जा
1: राधा के शोभेला भरमान सिंदूरुआ

और एगो गाना हमनी कृष्ण उखद जी के ही गावल सुनब जा और ही गाना बजवाई ला जा हमनी विवेक जी खातिर प्रणी पापा से विवेक जी गाना मंगले होवन उनकर शादी के आज सालगिरह बा तो ई शादी होला गाना मंगले होवन अपन पत्नी अनुषा खातिर

पूर्णिमा फकीरा जी गावन पलना में झूले श्री राम इलालना चला सुनी जा हमने फकीरा परिवार खातिर कालिया चेती परिवार खातिर दीपी दयाल परिवार और दसोई परिवार खातिर और पूर्णिमा जी गाना मंगले हवन नखोशनों के अपन सब छात्रा लोग खातिर और एस एस ओ एन के अपन सब संगतिया लोग खातिर

उमा जी की तरफ से विनोद सिवदत्त जी के गावल गाना हमने प्रस्तुत करे थे, जहाँ उमा जी सब भक्तगण के मंगल कामना देवत हवन श्रावण मास के, और परी तालाब की ओर जात हुआ जा त परी तालाब की ओर जाते जाते तो हर मन बहुत बहुत ही शांत और बहुत ही हिम

सुनी जा अब हमने विजय राव जी के गावेली गाना नारी प्रगति परी गाना गाया था वन विजय राव जी ये गाना हमने बजाया था जा अनुषा जी खातिर

और चल अपन बचपन याद करी जा हमने गांव के लाफों तेनमा गाना सुनी जा राजकमल चिंतामणि जी गैले हवानी गाना और ई गाना हमने सुभाष जी खातिर बजवाओ थे जा प्लेंडे बापाई के सुभाष जी गाना मंगले हो वन और ये अपन सब संगतियालो के नाम करत हवन बल्कि बचपन के संगतियालो के नाम करत हवन

और हमने के कार्यक्रम में अभी कुत्ता लग के सुनवाई ला जब बेतरती बालमा संगेतनी सन सिकवा शिकायत चला सुनी जा लीलो माथुर सुगन जी के गावली गाना और ये गाना हमने बजाया था जा संदेश जी के पसंद पर अपन पत्नी के नाम करत हवानी गाना

चल सुनवाई ला जा तो हलक के हमने ई गाना चट्टनिया मीरा मोहन जी के गावल गाना और मीरा मोहन जी के गावल ई गीत हमने बजाओ थे जा प्रियोले के ललिता चाची खातिर ललिता चाची मंगले वनी गाना अपन बहन सुदेवी देवी ना ज्ञानी और अनीता खातिर छोटी जी प्रभावती जी आत्मा राम जी खातिर माला राम जवन जी खातिर सुखलाल मौसी और उषा लुकाना जी खातिर।

0: भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी के स्वाद संगीत के खुशबू सुरेखा संगीत भोजपुरी तड़का।
2: चला हमने माँ के प्रणाम करी जा, माँ के आदर करी जा और माँ पर आधारित ही गाना सुनी जा। यह मेवानंद ठाकुर जी के गावल गाना यानी कि किशोर ठाकुर जी के गावल गाना।

और अब चला सुनी जा हमने रोशनी नो बिंजके का वाली गाना और ये हमने के इतिहास पर थोड़ा सा बातचीत रही थोड़ा हमने के डेवलपमेंट पर बातचीत रही तो नोबिन रोशनी जी के गावाली गाना के संगे संगे हमने के भोजपुरी तड़का कार्यक्रम भी समाप्त हो जाए। ये कार्यक्रम के बाद सुनिया जा आज के हमने के सुनहरे पल कार्यक्रम लेके आई हनकी निशा और पुराना गीत के कार्यक्रम सुनते रहिए। आवतला फिर मिलब जा। शुभ रात्रि। नमस्ते।

सुनहरे पल सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ। पुरानी फिल्मों के गीत आज भी इसलिए अमर हैं क्योंकि उनमें सिर्फ सुर नहीं, दिल की सच्चाई बसी हुई है। आइए उन अनमोल नगमों का स्वागत करें। जी हाँ दोस्त, आप सभी लोगों का भी स्वागत करना चाहेंगे इस खूबसूरत से शो में जिसका नाम है सुनहरे पल ऑन रेडियो मॉरिशस। गुड इवनिंग, नमस्कार और गिनी

शाम एक नई कहानी लिखी है और हर पुराना गीत उस कहानी को और भी खूबसूरत बना देता है। तो चलिए आज की शाम, आज की रात को यादों के नाम करते हैं और उन्हीं खूबसूरत यादों को दोबारा फिर से जीने के लिए आप तैयार हो जाइए ऑन रेडियो मॉरिशस।

जिंदगी चाहे कितनी भी तेज क्यों ना चल रही हो, पुराने गीत हमें वो दो पल रुक कर जीना सिखा देते हैं। इसी सुकून के साथ बने रहे, हमारा साथ यूं ही देते रहे। ये गीत सिर्फ रेडियो पर नहीं बज रहे हैं, ये हर उस दिल में गूंज रहे हैं जहां प्यार, यादें और एहसास आज भी जिंदा है। और ये है आपका सुनहरे पल।

वैसे हर लफ्ज, हर धुन और हर आवाज में एक जादू है मेरी जान, जो सिर्फ पुराने बॉलीवुड के गीतों में ही मिलता है। आज उसी जादू का आनंद लीजिए और आराम से बैठ जाइए और इन खूबसूरत खूबसूरत नगमों में खो जाने के लिए तैयार हो जाइए।

बहुत हो चुकी है लेकिन फिर भी अगर चाय पीने का इरादा है तो हम तो कहेंगे कि एक कप चाय, ठंडी हवा और रेडियो मॉरिशस पर बजते पुराने गीत, जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों का असली मजा इसी में है। बिल्कुल जी, अगला नगमा हमारी तरफ से उन तमाम सुनने वालों के नाम जो प्यार से शिद्दत से बैठे हुए हैं और जो हमारा साथ गुनगुना रहे हैं।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: हर जेनरेशन का अपना म्यूजिक होता है, लेकिन एवरग्रीन गाने सबके दिलों को एक एक साथ जोड़ देते हैं। आज हम वही दिलों का रिश्ता लेकर आए हैं। कभी अपने माँ बाप के साथ बैठकर ये गीत सुनिए और समझ जाएंगे कि असली संगीत किसे कहते हैं। ये है आपका सुनहरे पल ऑन रेडियो मॉरिशस, दिल से आपके लिए।

कुछ गीत वक्त के साथ और भी खूबसूरत हो जाते हैं और आज हम उन्हीं गीतों का खजाना लेकर आपके बीच हाजिर हैं। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हर एक गीत को आप दिल से एंजॉय कर रहे हो और बस हर इन

0: बड़ी बात हो गई।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो